श्री भगवान तिन गलता तिन कर ब्रह्मण पूरा नाद उन पे आवे ओई साद कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्मा धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे अपूर मथे टिका तेर तोती खाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पैर हुए प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण का कुठा बकरा खाना चौंके पर किसे ना जान दे के चौंका कटी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटाए वे मत पिटाए एहो अन्न साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन तन फिटे फेड़ करेन मन झूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सच होवे ता सच पाई है कोड़ी तेरे अंदर सब।

0: विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदो से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते इन आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

जोरो वाट निहारा सावल मोड़ मुहारा बी एस नारंग गाए गुलाम फरीद इस कलाम के नाल ही नेबरहुड सर्विस की पंजाबी सेवा की पहली सभा हम इथे खत्म होंगी है। FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी दे अमृतसर केंद्र तो बोल रहे हैं। सभी अगले ऐलान का इंतजार करो।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से इन्हें हसाले तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते बुझ सकना प्रोग्राम शुरू थी चुको है डिटेल्स कुछ नहीं तरह थोड़ी देर में तमा हमें जिया बगैर कॉलम साहब के बुधना तय खा पोए तफसरो ऐप वाले प्रोग्राम नशर के वेंदो सजन तो कई खबर कैडी खास खास खबरों प्रोग्राम जे आखिर में नशर के वेंदियो या वाले प्रोग्राम जी तफसील तो वहां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा यह रचो तो भगत कलाम साहब जन जे सदाबार आवास में कलाम बुधूं।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशा प्रोग्राम सैन तोखे खबर कहिड़ी।

0: जो।
1: अगर पेश है सिंध एक्सप्रेस में शायद हेल्थ सिस्टम में सूबा एडिटोरियल जो बाकी बचल हिसो जंहिंमें कुझु अर्से खां हाणे सियासतदाननि पारां सिंध में ऐं मुल्क भर में ॿिया नवां सूबा ठाहिण जी ॻाल्हि पई हले त हिन सिलसिले में अॻिते लिखियलु आहे की हिन वॾी तब्दीली खे आणण खां पहिरीं असां जेको करप्ट ऐं तबाह थियल निज़ाम आहे तंहिंखे ठीकु करणु खपे। जेकॾहिं इहो ई ख़राबु हूंदो जेकॾहिं ॿिया नओं निज़ाम अची विया ॿिया सूबा ठही विया त पोइ उनखे कहिड़े नमूने ठीकु कयो वेंदो। हिन वक़्तु मुल्क जी सूरत हाल कई वञे त बलूचिस्तान में अॻु में बाहि भरी रही आहे, केपीके अलॻि सां काबड़ियल आहे ऐं होॾां पाकिस्तान पारां बेक़ाइदे खयल कश्मीर जो हालतूं पिणु ख़राबु आहिनि, जो हुते अवाम खे संदनि बुनियादी हक़नि खां महरूम रखियो वियो आहे। हिन आलमी सौत जेके बि रिपोर्टूं आहिनि तिन में पाकिस्तान करप्शन में ॾेखारियल आहे की नंबर वन आहे। सवाल इहो आहे त हिन करप्शन जे ख़ात्मे लाइ अॼु ताईं मुल्क भर में छा कयो वियो आहे? छा हिकु प्रधानमंत्री खे जेल अंदरि मोकिलण सां सिस्टम सही थी वेंदो? जेकॾहिं ईअं त ॿिए हंधे ते जेके कारवायूं आहिनि जिन जा नाला आहिनि तिन खे बि अंदरि विझणु खपे। अॼुकल्ह को हिकिड़ो अॻवान जेको आहे काक्रोचनि जो भउ पियो ॾे पब्लिक खे हेठो ॾकाए, पर इहो छो नथो सोचनि त जॾहिं इहो सिस्टम ठीकु न थियो त सननि सुभाणे कहिड़ी हालति हूंदी? गुड गवर्नेंस अॼु ॾींहुं अची न सघी आहे, अञा वधीक सूबा ठाहे वधीक यूनिट ठाहे तव्हां छा कंदा? तव्हां जेके मौजूदा ज़िला आहिनि, डिवीज़न आहिनि, तालुका आहिनि, इहे यूनिट न आहिनि त ॿियो छा आहे? हर इलाइक़े में अलॻि अलॻि ब्यूरोक्रेसी मौजूदु आहे, डीसीस, कमिश्नर, मुख्तियारकार वग़ैरह वग़ैरह। जेकॾहिं हिननि खां कमु नथो वरितो वञे त ॿिया जेके नवां सूबा ठहंदा उन्हनि मां कमु कीअं वरितो वेंदो? ऐं जेकॾहिं कमु न वठी सघिया त पोइ कहिड़ी तब्दीली आई, हुनजो फ़ाइदो कहिड़ो पियो? छो त इहे नवां सूबा ठहण सां, नवां इंतिज़ामी अचण सां इन जो ख़र्च कंहिं ते वेंदो? सुवाल वरी वापसि उहो थो अचे त इहो ख़र्च वापसि आवाम ते ई वेंदो? हिनखां ॿियनि बिलनि ज़रिए वसूली कई वेंदी, तेल, बिजली, गैस महांगो करे सदन ख़र्च कढिया वेंदा ऐं सरकार पंहिंजा शाही ख़र्च हलाईंदी रहंदी ऐं क़ौम जेका अॼु बि अज़ाब में आहे अॻिते पिणु अज़ाब में रहंदी। तव्हां सिंध एक्सप्रेस में शायदि एडिटोरियल जो बाक़ी हिसो ॿुधी रहिया, जंहिंजो टाइटल हो सिस्टम ऐं सूबा।

आकाशवाणी जी संगीत सर्विस उधरा मेरा असंजय प्रोग्राम जो वक्त पुरोसी रहा है वही वहां से मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 तेजी तीन इजाजत सदाई कर

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्यसमूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क ये आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिलों चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाहाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर में 380 गांव जलमग्न हैं। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रीता स्वामी चौधरी के गाए हुए भजन।

अभी आप संगीति का कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:30 और 13 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा। ये खूबसूरत सा गीत आपने इम्तिहान मूवी से सुना और उम्मीद करती हूं कि ये सुबह का सॉन्ग आपको बहुत पसंद आया होगा और चाय की एक चुस्की के साथ आपको ये गाने की शुरुआत आपका दिन बना दिया होगा, क्योंकि यह एक एवरग्रीन गीत है जो सुबह के शांत वातावरण में पक्षियों के चहचहाने की तरह सुकून देता है। इसके बोल जीवन में आगे बढ़ने और आशावादी रहने का संदेश देते हैं। सुबह के समय हल्का और मधुर संगीत मन को शांत करता है और पूरे दिन के लिए सकारात्मकता प्रदान करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून के ये गीत जो होते हैं वो सुकून के हमें बहुत पल देते हैं। सुबह की खूबसूरती ताजी हवा, खिलते फूल और सूरज की पहली किरणों में है, जो अवसरों व उम्मीदों के साथ जीवन को रोशन करती है। मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करना ही सबसे बड़ा सुख है। हर नई सुबह खुद को एक नई ताकत और सकारात्मक ऊर्जा देने का और अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है।

फूल प्रकृति के सबसे खूबसूरत उपहार है जो निस्वार्थ प्रेम, खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक है। ये हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में कैसे खिलना है और प्रतिकूलता के बावजूद सुगंध कैसी फैलानी है। फूल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और तनाव को कम करने में भी मदद करते हैं। फूल में सिखाते हैं कि सुंदरता का अर्थ है निस्वार्थ भाव से खुद को समर्पित कर देना और खुशियां बांटना।

श्रोताओं, हर फूल की अपनी एक जुबान होती है और सबसे खास बात सावन में जो बेला और जूही के फूल खिलते हैं ना, उनकी खुशबू सीधे दिल तक जाती है। सावन और फूल, ये रिश्ता बहुत पुराना है। बारिश की बूंदें जब पत्तों पे गिरती हैं और मिट्टी की खुशबू के साथ बेला महके, उफ। एक छोटी सी शायरी आपको सुनाते हैं। सावन की रिमझिम और हाथ में गुलाब, सावन की रिमझिम और हाथ में गुलाब, तुम पास हो तो लगता है खिला है हर ख्वाब।

दोस्तों, हमारे यहाँ फूल सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि मंदिर में भी चढ़ाए जाते हैं, शादी में भी काम आते हैं और मेहमानों के स्वागत में भी। और कहते हैं कि घर में ताजे गेंदे के फूल रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? हमें जरूर बताइएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। प्रातः के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरानी बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे।

0: और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मीडिया के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
2: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि इसकी अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान यह बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: Deeply appreciate that the government and people of
3: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब देश एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस

0: एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
2: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुरमुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। ओडिशा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलीथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
4: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश धोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क जगरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। इंडिया पार्लियामानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज से नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इत्तलात को गलत बताया है। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। मुवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो आर्जी तौर पर हटाए जाने के मामले पर नई दिल्ली में मेटा के ओहदेदारों से बात की। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने वजीर आजम की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा इंडिया की नुक्ताचीनी की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब दुबे ने कहा कि कमेटी ने इस हरकत के लिए मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दफा 79 के तहत उन्हें हासिल कानूनी तहफ्फुज वापस लिया जाना चाहिए।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार की नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी
0: चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सलाहियतें मुसलसल

0: बारिश का जोर कम होने का इम्कान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पनरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: मौसमियात के महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद हिस्सों में भी औसत से लेकर तेज बारिश होने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमरीका के साथ मुआहदा करने के लिए एक आखिरी मौका दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान पर एक मंसूबा बंद हमला उस वक्त मौखर कर दिया गया जब ईरान और खलीजी मुल्कों ने सिफारतकारी जारी रखने की अपील की। जनूबी कोरिया के शहर आसन में सरकर्दा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में आज अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। यह टूर्नामेंट इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। सबकी निगाहें 17 साल तन्वी शर्मा पर होंगी जो ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीतने के बाद इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
0: शुक्रिया सदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने तीन रियासतों गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में हुए जिमनी चुनाव के नतायज के ऐलान को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि बिहार में बांकीपुर से प्रशांत किशोर, मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस जबकि गुजरात की मांजल सीट से बीजेपी उम्मीदवार कामयाब। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान को सफे अव्वल पर शाये किया है कि उभरते हुए चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मजबूत दिफाई निजाम में फौजी और सिविलियन अहलकारों के दरमियान ताउन बेहद जरूरी है। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने वाले बिल को मंजूरी दी। ये बिल कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और CEO मार्क जकरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। NDA पार्लियामानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई FIR बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इत्तला को गलत बताया है और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे अमीन खान का गायन, राग है मियां की टोडी।

Sare ga ma da ni ga ni da ni re da ni re da.

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुन रहे थे स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाया अमीन खान का गायन, राग था मियां की टोडी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
1: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह उन तक नई नई जानकारियां पहुंचाते रहते हैं नए नए विशेषज्ञों द्वारा, ताकि वो उन जानकारियों का लाभ उठा सकें और अपने चाहने वालों को भी उससे लाभान्वित कर सकें। विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए ही नहीं बल्कि आम नागरिकों ने भी ये जरूर सुना होगा कि रमन प्रभाव और सीवी रमन के बारे में। सर सीवी रमन ने जो अपनी ऐतिहासिक खोज की थी रमन प्रभाव की, उस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। उस इंस्टीट्यूट ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं 29 जुलाई 2026 को। इस इंस्टीट्यूट का क्या महत्व है, खास करके विज्ञान के विकास में, वैज्ञानिक संचार के विकास में और एक वैज्ञानिक विचारधारा के विकास में। और इसके साथ ही हम बात करेंगे इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की, कि वो किस तरह की संस्था है, क्या कार्य कर रही है, नवाचार उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसे संस्थानों की क्या भूमिका और महत्व है। इन सब जानकारियों पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकेडमी के अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR के सचिव भी रह चुके हैं। भारत की विज्ञान नीति, अनुसंधान प्रणाली और वैज्ञानिक संस्थानों के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करते हैं इस संस्था से जिसने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसका क्या महत्व है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस किस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ से उत्पन्न हुए और वैज्ञानिक यहाँ से जुड़े रहे, और अभी जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ साइंस की, तो भारत में ये क्यों जरूरी हो जाता है, खास करके हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए।
2: तो जैसा कि आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में हमारे देश पर प्रदूषणों का राज था, और उसी वक्त ये भी हुआ था पूरे विश्व में कि विज्ञान और तंत्रज्ञान के माध्यम से हर जगह एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति हम जिसे कहते हैं, वो उसी सदियों में उसी समय पे आई थी। लेकिन जो कि हम लोगों पर अंग्रेजों का राज था, हमारे देश को ज्यादातर बड़े स्तर पे विज्ञान और तंत्रज्ञान की प्रगति में वंचित किया गया था। और ये जानते हुए हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रमुख व्यक्तियां जो थी उन्हें काफी दुख हो रहा था कि भारत ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया से पिछड़ जाए, क्योंकि हमें वंचित किया गया है विज्ञान की प्रगति से। तो उस समय जैसे कि आप शायद जानते हो कि बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन जैसे हुआ था जिसे रिनायंस शाह कहते हैं बंगाल का, उसमें काफी सारी प्रमुख व्यक्तियों को उभर कर आई थी हमारे देश के सामने में, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्तियों का उसमें उल्लेख किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, सब लोग एक बंगाल रिनायंस जो था उसके प्रमुख व्यक्ति थे। उसमें एक अग्रेसर नाम जो है वो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी का है, और महेंद्रलाल सरकार जी रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे।
1: अच्छा।
2: तो मेडिकल डॉक्टर थे और रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे, और महेंद्रलाल सरकार जी के मन में भावना थी कि हमारे देश में भी विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी संस्थाएं होना जरूरी है जहां पे कोई भी आके अपने मन में जो कोई प्रश्न है अपने सृष्टि के बारे में या कुछ भी, और उसके लिए विज्ञान का सहारा लेते उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहे तो वहां पे काम कर सकते हैं। तो इसी भावना से, एक बहुत स्वदेशी भावना से, महेंद्रलाल सरकार जी ने 29 जुलाई 1876 में एक संस्थान का स्थापन किया जिसे हम लोग इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि 1876 और आज 1926 है, तो 150 वर्ष हाल ही में इस संस्थान के पूरे हुए हैं, और बहुत ही गौरवशाली समय यह रहा है भारत के इतिहास में 150 वर्षों का। और इस संस्थान के साथ काफी बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा हुआ है, जैसे कि जगदीश चंद्र बसु जी है, सत्येंद्रनाथ बसु जी है, मेघनाथ सहा जी है, और जैसे कि आपने कहा कि सीवी रामन जी है, उन्होंने भी इसी संस्थान में काम करके हम लोग जिसे रामन इफेक्ट कहते हैं, रामन प्रभाव, उसकी खोज की थी 1928 में, और वो इसी संस्थान में से की थी, जिस संस्थान को एक बहुत स्वदेशी भाव से बनाया गया था कि हमारे देश के वैज्ञानिक यहाँ के काम कर सके। ये जो महेंद्रलाल सरकार जी का जो सपना था वो सीवी रामन जी और मेघनाथ सहा जी ने सभी ने मिलकर उस सपने को पूरा करने में अपना योगदान दिया। और जैसे कि मैंने कहा कि 150 वर्ष का बहुत ही गौरवशाली समय रहा है इस संस्थान का, और आज भी इस संस्थान में काफी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, काफी अच्छा विज्ञान हो रहा है।
1: निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये संस्थान बनाया गया था तो इसे कहा गया था कि ये भारतीयों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा शोध संस्थान है जो आधुनिक विज्ञान की खेती यानी कि संवर्धन एवं मौलिक अनुसंधान के लिए बनाया गया है और उसके प्रतिफल में रमन प्रभाव दिखाई दिया दुनिया को, और जिसके लिए भारत के प्रथम वैज्ञानिक सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
2: भारत के ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि पूरे एशिया के पहले वैज्ञानिक जो थे जिन्हें नोबेल पारितोषिक प्राप्त हुआ यहाँ पे काम करते हुए, और उसके पीछे कहानी आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही रोचक कहानी है। आपने सुना होगा कि सीवी रमन जी ब्रिटिश सरकार के अकाउंट ऑफिस में थे, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में काम किया करते थे। तो उन्होंने जब मास्टर्स किया अपना मद्रास में, तो उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और उन्हें नौकरी मिल गई थी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में। बल्कि उनकी रुचि विज्ञान में थी, पूरी रुचि, उनका मन और पूरे हृदय से वो विज्ञान से जुड़े थे, लेकिन काम करने के लिए तो कहने के लिए तो वो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में काम करते थे। और उस वक्त रमन जी की पोस्टिंग हुई कलकत्ता में, और ऑफिस जाते वक्त एक दिन उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा बोर्ड देखा और बोर्ड पे लिखा हुआ था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और ये देखते हुए रमन जी के मन में बहुत उत्सुकता उभरकर आई, तो रमन जी पधारे इस इंस्टीट्यूट में और उनका स्वागत किया। उस वक्त वहां पे अमृतलाल सरकार जी थे जो महेंद्रलाल सरकार जी के बेटे थे।
1: अच्छा,
2: महेंद्रलाल सरकार जी उस वक्त नहीं रहे, लेकिन अमृतलाल सरकार जी इंस्टीट्यूट का काम देखते थे। और रमन जी ने उनसे पूछा कि क्या मेरे जैसे लोग आके यहाँ पे काम कर सकते हैं, और अमृतलाल सरकार जी ने कहा कि जरूर काम कर सकते हैं, आप जरूर रहिएगा और आपको जो कुछ सुविधाएं चाहिए हम उसे आपको उपलब्ध कराएंगे इंस्टीट्यूट में। और उस तरह से 1907 में रमन जी का इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस से जो नाता जुड़ा, वो काफी लंबे समय तक 1933 तक कलकत्ता में रहे, तब तक वो लगातार यहाँ पे काम करते रहे। 1907 से 1917 तक 10 साल सीवी रमन जी का पूरा दैनिक शैली जो थी एक बहुत ही अजीब जैसी शैली हम मानते हैं, क्योंकि इनमें तो अपने दफ्तर में काम करते थे, लेकिन दफ्तर जाने से पहले सुबह उठकर सबसे पहले वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस हम IACS कहते हैं वहां पे आते थे, वहां पे कुछ अपने प्रयोग वगैरह करने वहां पे करते थे, कुछ पढ़ाई करने करते थे, फिर दफ्तर में काम खत्म होने के बाद शाम को फिर IACS आते थे और अपना काम करते थे। 1917 के करीब कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलगुरु आशुतोष मुखर्जी थे, आपने नाम सुना होगा, आशुतोष मुखर्जी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फादर थे, तो उन्होंने रमन जी को देखा और उन्होंने सीवी रमन को कलकत्ता विश्वविद्यालय में पलित प्रोफेसरशिप की ऑफर दी कि आप यहाँ पे आके पलित प्रोफेसरशिप बनो। लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सीनेट में लोगों ने काफी विरोध किया इस बात का, इसलिए कि सीवी रमन के पास PhD डिग्री नहीं थी, वो केवल MSc थे, तो इसलिए फिर आशुतोष मुखर्जी ने सीवी रमन जी को एक ऑनररी डिलीट प्रदान की।
1: अच्छा,
2: और डिलीट प्रदान करने के बाद फिर सीनेट ने मंजूरी दी कि वो यहाँ पर पलित प्रोफेसर करके आ सकते हैं। तो दो पलित प्रोफेसर फिर वहां पे उन्होंने काम किया कलकत्ता विश्वविद्यालय में, एक थे प्रफुल्ल चंद्र राय जी और दूसरे थे सीवी रमन जी। उस वक्त बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था कि लाइट या पार्टिकल है या लाइट या वेव है, दोनों की काफी चर्चा हो रही थी पूरे विश्व में। तो रमन जी ने अपने मन में एक सोचा कि अगर ये एक पार्टिकल है तो पार्टिकल की अपनी एक ऊर्जा होती है, और ये लाइट किसी अगर मीडियम के थ्रू जाता है, मीडियम के गुजरता है, तो मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स है जैसे कि लिक्विड है, कोई द्रव है, उसमें से अगर लाइट का फोटोन जाए तो जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड में उसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा और फोटोन अपनी एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स को देगा या उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अपने पास भी लेगा, और ये दोनों हो सकता है। और ये सोचकर रमन जी ने फिर अपने वहां पे प्रयोग किए और इसका फलस्वरूप 28 फरवरी 1928 में रमन जी को एक बहुत बड़ा उनका शोध का कारण मिला उसका। तो इसे बताया गया कि सही में जो फोटोन है वो एनर्जी दे भी सकता है और ले भी सकता है अपने लिक्विड के मॉलिक्यूल से, जिसे कि आज हम लोग रमन इफेक्ट से जानते हैं। तो 28 फरवरी 1928 में सीवी रमन ने पूरी दुनिया के सामने में ये घोषणा की कि मुझे एक ये नया शोध मिला है जिसे हम आज के दिन में रमन इफेक्ट से जानते हैं, और इसी शोध की वजह सीवी रमन जी को 1930 का नोबेल पारितोषिक प्राप्त हुआ।
1: और उस दिवस को 28 फरवरी को जो है प्रत्येक साल हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है सेलिब्रेट करने के लिए।
2: बिल्कुल,
1: ऐसा कहा जाता है कि जो रमन इफेक्ट का जब उन्होंने पता किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो उस समय बहुत कम संसाधनों से इस पर खोज की गई थी विश्व के अन्य देशों की जो लेबोरेटरी थी उसकी अपेक्षा।
2: जैसे कि आपने सही कहा, साइंस का जो सपोर्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतना सपोर्ट भारत में नहीं था, लेकिन रमन जी ने GD बिरला जी को एक पत्र लिखा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो उसमें से मैं ये इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा मैं भारत के लिए नोबेल पारितोषिक ले आऊंगा। और GD बिरला जी ने रमन पे विश्वास किया और सीवी रमन जी को उन्होंने वो पैसा दिया, रमन जी ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर रमन जी को नोबेल पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्गामी परिणाम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रमन इफेक्ट आजकल अगर अगर देखे तो उसके उपरांत जो टेक्नोलॉजी बनी है रामन इफेक्ट को लेके काफी सारी है। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारा सामान जो स्क्रीन होता है सिक्योरिटी में, वहां पे रामन इफेक्ट से देखते हैं कि सामान में क्या सही में असली चीज है या कुछ गलत चीज हम तो लेने जा रहे हैं साथ में,
1: स्कैटरिंग।
2: तो वो रामन इफेक्ट का काफी हर जगह उसका उपयोग होता है, लेकिन वो रामन के प्रभाव के आधारित है सब कुछ।
1: हिंसा के बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताइए कि किस तरह की संस्था है और किस तरह के महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ी है।
2: ऐसा है कि 1934 में देश के जो मुख्य वैज्ञानिक थे उनके मन में ये भावना आई कि क्यों ना देश में एक ऐसी अकादमी हो जहां पे सभी वैज्ञानिक आके खुली तरह से चर्चा कर पाए, विचार विमर्श कर पाए अलग अलग चीजों पर, अगर पॉलिसी हो तो पॉलिसी का विचार करें, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा एक अकादमी होना चाहिए जो बाकी अकादमियों के साथ उसका संबंध हो, या हमारे देश में जो विज्ञान चल रहा है वो सामान्य लोग तक किस तरह एक प्रभावी तरफ से ले जाए। तो ये सब चीजें लोगों के मन में आई, जैसे कि मेघनाथ सहार जी थे, होमी भाभा जी थे, इन लोगों ने मिलकर फिर ये सोचा कि ऐसी एक अकादमी बनाई जाए जिसे आज हम लोग इंडियन नेशनल साइंस अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है इसकी स्थापना की गई 1934 में और वो आज तक लगातार चलती आ रही है। अभी 92 साल इसे हाल ही में पूरे हुए हैं और अकादमी में आज के दिन हम करीबन 1100 वैज्ञानिक इससे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी फेलोशिप होती है वो इलेक्शन से होती है, बाकी फेलोशिप बाकी जो फेलोज है इसके वो अलग नए फेलोज को इलेक्ट करते हैं और इसमें काफी सारे विदेशी वैज्ञानिक भी हम लोगों के साथ जुड़े हैं और मुख्यतः कई सारे नोबेल परिषद विजेता या फिर कई फील्ड्स मेडल्स के लोग भी हमारे साथ इस अकादमी में जुड़े हुए हैं।
1: क्योंकि आप भी संक्रामक रोगों खास करके टीबी के अनुसंधान कार्यों से जुड़े हुए थे, विज्ञान अनुसंधान किस तरह से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है?
2: तो काफी सारे ऐसे रोग महामारी हमारे सामने में है जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो पहुंच सकती है, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं जो ऐसी फैलती नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती नहीं है, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये फैलती नहीं है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या फ्लू हो, अगर एक आदमी पीड़ित हो तो उसके अगल बगल में बाकी लोगों को भी वो हो सकता है। और भारत में गए कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि भारत ने काफी बड़े स्तर पर काम करके कई सारे ऐसे रोगों को बिल्कुल यहां से हटा दिया है। जैसे कि आपने सुने होगा कि अब पोलियो भारत में नहीं रहा, 2014 में भारत ने अपने आप को पोलियो मुक्त देश कहलवाया था, वैसे ही आज के दिन हम लोग करीबन बहुत पास आए हुए हैं जिसे हम लोग काला आजार से हम लोग मुक्त हो गए ऐसा मानते हैं। एक हमारे आंखों में

0: देंगे आकाशवाणी के माध्यम से, आकाशवाणी के महत्व को बताते हुए।
1: सर, कि आकाशवाणी के माध्यम से आप तो भारत की पूरी जनता के साथ जुड़े हुए हो और मेरे लिए अपने आप में बहुत अभिमान की बात है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा युवाओं को कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज तक हम लोग हमारे प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में, सृष्टि के बारे में जो जानते नहीं है, ऐसे कोई प्रिंसिपल हो, लॉ हो, और अगर उसकी खोज करने की हमारे मन में अगर जिज्ञासा हो और अगर हम विज्ञान के मार्फत उस जिज्ञासा को उसका उत्तर खोजने की अगर कोशिश करे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इससे बड़ा आनंद किसी को नहीं होगा कि आज के दिन पूरे विश्व में किसी चीज का ज्ञान ना हो लेकिन मेरे अनुसंधान की वजह से वो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अपने आप में बहुत अपने आप को बहुत गर्व महसूस होता है, अपने आप में बहुत अभिमान हम लोग मानते हैं। समझना चाहोगे तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि आप जरूर विज्ञान में आइए और आप भी देश के अनुसंधान में और विज्ञान को सामने मिले जन में जुड़िएगा।
0: जरूर, ये बहुत बड़ी बात होगी मानवता के लिए और देश के विकास के लिए भी। प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने एक महत्वपूर्ण संस्थान जहाँ के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्र में अपने योगदान दिए हैं, सर सीवी रमन के रमन इफेक्ट के बारे में बताया कि किस तरह उस संस्थान में कार्य करके उन्होंने किया, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस जिसने अपने स्थापना के गौरवशाली 150 वर्ष पूरे किए हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारियां दी आपने, इंसा के महत्व के कार्य के बारे में बताया और युवाओं के लिए आपके प्रेरक प्रसंग, इन सब के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाई का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

0: उमा गर्ग की आवाज में अभी आपने भजन सुना। प्रोग्राम था सुबगाही, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप हमारे नशरियात सुन रहे हैं। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे, और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करने का। 1935 में आज ही के दिन ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पारित किया, जिसने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और 1923 में आज ही के दिन नागपुर विश्वविद्यालय ने आधिकारिक रूप से अपना शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया था। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय राष्ट्र संत तुक डोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद 1956 को मुंबई के चौम्बे में भारत और पूरे एशिया के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा ने काम करना शुरू किया था। और 1997 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट निलेश कुलकर्णी ने कोलंबो में श्रीलंका के विरुद्ध खेले गए टेस्ट मैच में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेकर इतिहास रच दिया, और वह टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। और इसके कुछ सालों बाद 2007 में आज ही के दिन अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने और के उद्देश्य से और फिनिक्स अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया था। इस मिशन का उद्देश्य था कि मंगल ग्रह की सतह पर बर्फ, जल और जीवन की संभावनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सके। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे आज के सबसे पसंदीदा और आखिरी सेगमेंट का, जिसका हमने शुरुआत में ही आपसे वादा किया था, जिसका हम जिक्र करने वाले हैं।
1: This is what we've all been waiting for.
0: या तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं हमारी माटी के उस महानायक को जो माटी की खातिर जिए, जिसने

ने आदिवासियों की अस्मिता की लड़ाई लड़ी, जिसने शोषितों और वंचितों के हक के लिए अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी। मैं बात कर रही हूं झारखंड आंदोलन के जनक करोड़ों आदिवासियों के मसीहा और दिशोम गुरु के नाम से मशहूर बाबा शिबू सोरेन जी को। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन का जीवन संघर्षों की एक जलती हुई मशाल रहा है। जब जल जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को कुचला जा रहा था, तब उन्होंने एक ऐतिहासिक जन आंदोलन की शुरुआत की। दशकों लंबे संघर्ष के बाद साल 2000 में जब बिहार से अलग होकर नए झारखंड राज्य का सपना सच हुआ, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका इसी महानायक की थी। राष्ट्र के प्रति उनकी इसी अतुलनीय सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया था। पिछले साल आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन उनके विचार और जल जंगल जमीन की रक्षा का संकल्प आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आज ही के दिन साल 2020 में भारतीय आधुनिक रंगमंच के असली वास्तुकार और पितामह इब्राहिम अलकाजी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। पुणे महाराष्ट्र में जन्मे अलकाजी साहब भारतीय रंगमंच के प्रसिद्ध निर्देशक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक थे। अगर आज हम नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर और रोहिणी हटगंडी जैसे दिग्गज कलाकारों के अभिनय के कई कारण हैं, तो इन सबको तराशने वाले जौहरी खुद इब्राहिम अलकाजी साहब ही थे। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वे सिर्फ एक डायरेक्टर या टीचर नहीं थे, वे अनुशासन की एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। साल 1962 से 1977 तक जब वे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी के डायरेक्टर रहे, तो उन्होंने थिएटर को फर्स्ट से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। अलकाजी साहब सिर्फ बंद थिएटर्स तक नहीं रहे, बल्कि तुगलक, आषाढ़ एक दिन और अंधा युग जैसे नाटकों को दिल्ली के ऐतिहासिक ओपन एयर स्टेज पर लाकर उन्होंने नया इतिहास रचा। और जब अंधा युग का जिक्र होता है, तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला संवाद जहन में आता है। कल्पना कीजिए महाभारत के युद्ध के बाद वो भयानक सन्नाटा, चारों तरफ तबाही और खामोशी है। उस माहौल में गूंजते हैं ये शब्द, युद्धोपरांत यह कैसा अंधा युग आया, जिसमें मर्यादाएं टूट गई, विवेक हार गया, विजय जिसकी हुई वह भी अंधा था, और जो पराजित हुआ वह तो अंधा था ही।

कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इब्राहिम अलगाजी को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से अलंकृत किया जा चुका है। आज जयंती है हिंदी के एक ऐसे महान लेखक, आलोचक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान का, जिन्होंने सात समंदर पार जर्मनी और हॉलैंड जैसी जगहों पर भी हिंदी की महक बिखेरी। मैं बात कर रही हूं डॉक्टर इंदु प्रकाश पांडे जी की। रायबरेली के एक छोटे से गांव से निकलकर प्रयाग विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले इंदु प्रकाश जी ने हिन्दी उपन्यासों पर ऐसा काम किया कि हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीलिट की उपाधि से नवाजा। विदेशों में रहकर भी उनके सैकड़ों लेख, कहानियां और कविताएं भारतीय संस्कृति का झंडा बुलंद करती रही। और आज ही जयंती है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, भारतीय सिनेमा के वर्सटाइल और जादुई फनकार किशोर कुमार की।

0: 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे आभास कुमार गांगुली कब पूरे देश के लिए प्यारे किशोरदा बन गए पता ही नहीं चला। कोई उन्हें एक्टर कहता है, कोई डायरेक्टर, कोई संगीतकार तो कोई सिंगर, लेकिन सच कहूं तो वो एक ऐसी जादूगर थे या फिर उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो जज्बात बदल देते थे।
1: ट्रू टाइमलेस आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा।
0: बिल्कुल। तो राजेश खन्ना की स्क्रीन पर मस्ती हो, अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन लुक हो या देवानंद का चुलबुलापन, किशोर दा की आवाज हर किसी पर बिल्कुल फिट बैठती थी।

0: दा जितने बेमिसाल सिंगर थे उतने ही बड़े सतरंगी और मनमौजे इंसान भी थे। तो चलिए किशोर धा के उस फनी और बेहद नटखट अंदाज को याद करते हैं और सुनते हैं ये एनर्जेटिक गाना।
1: यह कच्चा तो

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असदुल्ला। पहले खास खास खबरों की सुर्खियां। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क जकरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इतलात को गलत बताया है और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। मवासलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो आर्जी तौर पर हटाए जाने के मामले पर नई दिल्ली में मेटा के उहदेदारों से बातचीत की। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने वजीर आजम की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा इंडिया की नुक्ताचीनी की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब दुबे ने कहा कि कमेटी ने इस हरकत के लिए मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दफा 79 के तहत उन्हें हासिल कानूनी तहफ्फुज वापस लिया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सलाहियतें मुसलसल मेहनत लगन और मुस्तकिल कोशिश के जरिए निखरती और परवान चढ़ती हैं। एक संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क के नौजवान इन्हीं औसाफ को अपना रहे हैं और अपनी सलाहियतों के जरिए दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। गुज़श्ता मीटिंग 28 जुलाई को हुई थी। तृणमूल कांग्रेस से अलहदा होने वाले ग्रुप नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के अरकान पार्लियामेंट ने भी एनडीए की इस मीटिंग में शिरकत की थी। ब्रिक्स मुल्कों के बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप और असासों की बाजियाबी से मुतालिक ब्रिक्स के माहरीन के नेटवर्क की दूसरी मीटिंग आज तेलंगाना में हैदराबाद में शुरू हो रही है। अमले और तरबियत महकमे की सेक्रेटरी रचना शाह इस मीटिंग का इफ्तिताह करेंगी। जून में वर्चुअल वसीले से मुनाकिदा ब्रिक्स की बदउनवान मुखालिफ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के नतीजों के तनाजुर में आगे इकदाम करने के लिए

आज की ये मीटिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि दिल्ली सरकार और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दीगर मकामात पर मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज की गई FIR को वापस लेने या बंद करने के लिए आजाद हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने वजाहत की है कि 28 जुलाई के हुक्मनामे जिसमें मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत दी गई थी का इतलाक सिर्फ उन अफराद पर होगा जिन पर संगीन और घिनौने जराइम के इल्जाम हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अदालत ऐसे हालात और तरीकेकार के लिए एक जाब्ता मुरतब करेगी जिसके तहत पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सके। बेंच ने मजीद कहा है कि पुलिस की मुबैना ज्यादतियों के तहकीकात के लिए पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक खसूसी जांच टीम SIT तश्कील देने या मुतबादिल के तौर पर एक रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकती कमेटी कायम करने की तजवीज पर गौर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मजीद समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट की वजारत ने मोटर गाड़ियों से मुतालिक मरकजी जवाबित 1979 में तरमीम के लिए एक मुसविदा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए 2 पहियों वाली रोड एम्बुलेंस मुतारिफ कराने की तजवीज पेश की गई है। वजारत ने कहा है कि इस मुजवजा हंगामी एम्बुलेंस सर्विस से इमरजेंसी की सूरत में फौरी रसाई मुमकिन होगी और दूर दराज इलाकों में तिब्बी इमदाद की फराहमी को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा। खुराक से मुतालिक इंजिबाती इदारे FSSAI ने डाबर इंडिया को 100% दावे का इस्तेमाल करते हुए शहद गाय का घी और खुर्दनी तेल जैसी कई अशिया फरोख्त करने से रोक दिया है और कहा है कि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI ने बताया कि उसने 100% का गुमराह कुन दावा करने वाली गजाई अशिया की फरोख्त के मामले पर डाबर इंडिया लिमिटेड को ममानियत से मुतालिक हुक्म जारी किया है। इन अशिया में शहद सेब का सिरका वर्जिन कोकोनट ऑयल तिल का तेल नारियल पानी कोकोनट मिल्क और इस तरह की दीगर अशिया शामिल हैं। माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेन्द्र यादव ने अरुणाचल प्रदेश की गलव झील को भारत का 101वां रामसर मकाम करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने इस पेशरफ्त को हयातियाती तनहु के तहफ़ आदमी वसाई और मौसमियाती तहफ़ नीज पायदार जरिए माश के फरोग की जानब एक अहम कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि मशरकी हिमालय में वाकई ये साफ शफाफ मीठे पानी की झील हयातियाती तनवु का एक अहम मरकज है और ये कमलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वाकई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत के दौरान अहम मादनियात कानकनी तिजारत तवानाई बुनियादी ढांचे दिफा और तालीम के शोबों में तआवुन को मजबूत बनाकर अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक किया। ये बातचीत उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा बख्तियार सऊदूव के भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे के दौरान हुई जिन्होंने वजीर खारजा डॉ जयशंकर से मुलाकात की। उज्बेकिस्तान के वफद का खैर मकदम करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि उज्बेकिस्तान भारत के वसी हमसाया खित्ते का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील अरसे से कायम तारीखी सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात को उजागर करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में बाहमी ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हुए हैं और इनका दायरा तामीरात डिजिटल टेक्नोलॉजी तवानाई सेहत और तालीम समेत मुतादी शोबों तक फैल चुका है। वजीर खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक अब कानकनी के शोबे बिलखसूस अहम मादनियात और नायाब जमीनी मादनियात में बाहमी तआवुन को मजीद वसअत देने के ख्वाह हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन $1 अरब की 2 तरफा तजारत का जिक्र करते हुए उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आने वाले बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान इकतसादी तबादले में नुमाया इजाफा होगा। डॉ जयशंकर ने 2026 में भारत की ब्रिक्स सदारत के दौरान भारत के इकदाम की हिमायत पर उज्बेकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने 2027 से 2029 की मुद्दत के लिए गैर वाबस्ता तहरीक की सरबराही के लिए उज्बेकिस्तान की उम्मीदवारी की हिमायत का भी इजहार किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आज और कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसकी वजह से आसाम के कई जिले खासतौर पर वे इलाके जो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से मुतासिल हैं मुतासिर हो सकते हैं।

0: ओडिशा में बड़े दरियाओं और महावीर नदियों में पानी उतरने के साथ ही सैलाब की सूरत हाल में लगातार बेहतरी आ रही है। रियासत के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने सैलाब से मुतासर लोगों के लिए 110 करोड़ रुपए की इब्तदाई इमदादी पैकेज का ऐलान किया। इधर केरला में 14 में से 12 जिलों में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद हिस्सों में भी औसत से लेकर तेज बारिश होने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमरीका के साथ मुआहदा करने के लिए एक आखिरी मौका दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान पर एक मंसूबाबंद हमला उस वक्त मुअख्खर कर दिया गया जब ईरान और खलीजी मुल्कों ने सफारतकारी जारी रखने की अपील की। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान पर एक बड़ा हमला करने के लिए तैयार था, तमाम सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की जानिब से मुज़ाकरात जारी रहने की दरख्वास्त मौसूल होने के बाद यह कार्रवाई मुअख्खर कर दी गई। जनूबी कोरिया के शहर आसान में सरकर्दा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में आज अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। यह टूर्नामेंट इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। सबकी महिलाएं 17 साल तन्वी शर्मा पर होंगी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क जुकरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। इंडिया पार्लियामानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इत्तला को गलत बताया है। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश है अकबाले जरी का प्रोग्राम शम्मे फरोजा। आज का मौजू है आदिल हुक्मरान।
2: आदिल अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना बराबर करने के हैं। मीजान या तराजू भी इसीलिए कहा जाता है कि इसके दोनों पलड़े बराबर होते हैं। जरा सी ऊंच नीच भी आदिल के मुनाफी है। अरबी के एक माने ये भी है कि किसी बोझ को दो बराबर हिस्सों में इस अंदाज से तकसीम किया जाए कि इनमें किसी किस्म की कमी बेशी न हो। इस एतबार से हम जो भी काम करें और जो भी बात करें उसमें मीजान अदल किसी जानिब झुकने न पाए, बल्कि सिर्फ वही बात कही जाए और वही काम किया जाए जो अदल की कसौटी पर पूरा उतरता हो। अदल के दूसरे और असल माना इंसाफ करने के हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इंसाफ से काम ले, किसी के भी साथ दुश्मनी, अनाद, मोहब्बत या करामत की वजह से इंसाफ के तकाजे मजरूह न हों। इसी अदल से निकला है लफ्ज आदिल यानी इंसाफ करने वाला। यूं तो अदल हयात इंसानी के हर शोबे में मतलूब है। जिंदगी के हर मोड़ पर कारामत नतीजा खेज और जरूरी है। जैसे कि इंसान का अपनी जात के साथ अदल, अपने दोस्त अहबाब, मिलने जुलने वाले और घर वालों के साथ अदल, अपने कारोबार, मुलाजमत और अपने मातहतों के साथ अदल। लेकिन जब हम इस अदल को हाकिम, काजी, जज, फरमारवा और हुकूमत और सल्तनत के साथ जोड़कर देखते हैं तब तो हमारे जहनों में एक खाका उभरता है और वो खाका होता है आदिल हुक्मरान का। यानी एक ऐसा हाकिम, काजी, जज और फरमारवा जो इंसाफ परवर हो, जिसके निजाम हुकूमत और सल्तनत में अदल व इंसाफ का अंसर गालिब हो, जो अपनी रियाया के दरमियान इंसाफ के फैसले करता हो, जो हर सियासी और समाजी मसलहत को पसे पुष्ट डालकर कमजोरों, मजबूरों, लाचारों, बेकसों और बेसहारा लोगों को इंसाफ दिलाता हो। अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि अदल व इंसाफ पर मबनी हुकूमत और आदिल हुक्मरान किसी तख्तोताज के साथ मुख्तस नहीं है। चूंकि दुनिया का हर मजहब अपने पैरोकारों और मानने वालों को अदल इंसाफ को तरक्की देने और अदल इंसाफ पर मबनी हुकूमत चलाने का हुक्म देता है, इसलिए अदल इंसाफ पर मबनी हुकूमत का चलन हर माशरे, समाज, मुल्क और कौम में सदियों से जारी है। दुनिया का हर मजहब और हर माशरा अदल इंसाफ को न सिर्फ ये के पसंद करता है बल्कि एक सेहतमंद, मिसाली, तरक्की याफ्ता, जराइम कुश और जराइम से पाक माशरे की तश्कील और तामीर का जामिन भी समझता है। हकीकत यह है कि अदल انصاف کا قیام اور قوانین کا نفاذ ہر معاشرے میں اسی وقت ممکن ہے کہ جب حاکم وقت سماج میں طاقتور اور کمزور ترین کے درمیان کوئی امتیاز روانہ رکھے اور حاکم وقت معاشرے میں رنگ و نسل، زبان، علاقہ، گروہ، قبیلہ، خاندان اور برادری کے تعصب سے اوپر اٹھ کر فیصلے صادر کرے، اور یہ اس لیے کہ حاکم کے عدل و انصاف کے بغیر کسی بھی مملکت، سلطنت اور حکومت کے استحکام کا تصور بھی بیجا ہے۔ انسانی معاشرے میں شروع ہی دن سے عدل و انصاف کو محبوب رکھا ہے اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنے ہی درمیان سے ایک ایسے حاکم کو مقرر کیا ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور سیاسی شعور بھی ہو، اور جو اپنے علم اور سیاسی شعور کی روشنی میں معاملات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر قوانین کو احسن طریقے سے نافذ کر سکے۔ زمانہ قدیم میں بہت سے ایسے عادل حکمراں گزرے ہیں جن کے عدل اور انصاف کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے، اور جو ہمیں یہ دست دیتی ہیں کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر عدل و انصاف سے کام لیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہی حکمراں جن میں علم، سیاسی شعور اور طاقت و قوت کے ساتھ عدل و انصاف کا جوہر بھی موجود ہو، عادل حکمراں کہلاتے ہیں۔
1: ابھی آپ نے سنا پروگرام شمع فروزہ، آج کا موضوع تھا عادل حکمراں۔ تحریر تھی جناب محمد نوید کی اور راوی تھے ایس ایم نعمان۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز۔ اس کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر بھی اردو سروس دستیاب ہے، اور ڈی ڈی فری ڈش پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ آج کے پروگرام کی پہلی پیشکش جتیندر سنگھ کی آواز میں اشک امبالوی اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کا کلام۔

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको लिए चलते हैं नागालैंड। नागालैंड का जियोलॉजिकल पार्क 2008 में स्थापित हुआ था और आज ये राज्य का एक सबसे बड़ा जियोलॉजिकल पार्क है और इस पार्क की पर्यावरण संरक्षण के मामले में बहुत बड़ी भूमिका है। साथ ही इको टूरिज्म के लिहाज से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके साथ ही पर्यावरण से जुड़ी हुई शिक्षा के मामले में भी ये एक अहम केंद्र है। पूर्वोत्तर भारत के जो अभयारण्य है जियोलॉजिकल पार्क है वो यहाँ की जैव विविधता को कायम रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा रही है। इसी मामले में नागालैंड का भी ये पार्क बहुत महत्वपूर्ण है और देश दुनिया से पर्यटक और प्रकृति प्रेमी इस पार्क में विभिन्न जीव जंतुओं को देखने के लिए आते हैं। तो आइए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट इस विषय पर सुनते हैं।
3: जिले के रंगा पहाड़ में स्थित नागालैंड जूलॉजिकल पार्क राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। वर्ष 2008 में अपनी स्थापना के बाद से ये पार्क वन्य जीव संरक्षण पर्यावरण शिक्षा और इको टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। ये वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ नागालैंड की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के लिए समर्पित है। 176 हेक्टेयर में फैला नागालैंड जूलॉजिकल पार्क स्तनधारी पशुओं पक्षियों और सरीसृपों की 47 प्रजातियों के लगभग 400 जीवों का घर है। सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा मीडियम जू के रूप में मान्यता प्राप्त ये पार्क नागालैंड और पूर्वोत्तर के घायल अनाथ और बेघर हुए वन्य जीवों के लिए एक रेस्क्यू और पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक संकट ग्रस्त एशियाई विशालकाय कछुए का सफल प्रजनन है। इस प्रजाति की भारत में सबसे बड़ी संख्या इसी चिड़ियाघर में है। नागालैंड जूलॉजिकल पार्क के डायरेक्टर एनी वेखा विजय ने बताया।

0: द्वारा ये चिड़ियाघर राज्य के स्थानीय वन्य जीवों की रक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता है।
1: Our Nagaland zoological bird serves as a safe haven specifically to protect and conserve wildlife species that are native and endemic to our state Nagaland. Our zoo also rehabilitates species that are facing population decline, providing them with a secure environment for recovery. Our zoo also functions as a dedicated ex situ conservation center, focusing on the preservation of fauna of our state and as a whole of Northeast India region. Our zoo initiates and manages captive breeding programs for endangered species to help boost their populations and prevent extinction. Apart from the point mentioned, our zoo focuses to educate the public through conservation awareness and education programs, helping to enhance the people of Nagaland understanding of wildlife protection. As per the latest inventory, that is March 2026, the Nagaland Zoological Park houses over a total population of 400 numbers of fauna with 47 different species of mammals, birds and reptiles. This represents significant growth from its initial collection of just 64 animals and 10 species when it opened in 2008.
0: पार्क ने पर्यावरण की सुरक्षा और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कई हरित पहल भी शुरू की हैं, जिसके तहत पूरे चिड़ियाघर को पॉलिथीन फ्री जोन घोषित किया गया है।
1: टू प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड मेक नागालैंड जूलॉजिकल पार्क मोर इको फ्रेंडली, सेवरल ग्रीन इनिशिएटिव्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड। A complete ban on single-use plastics have been enforced within the zoo premises, and visitors are required to deposit disposable plastic items, including food packages, at the entrance gate before entering the park. The zoo has also been declared a pollution-free zone to encourage responsible waste management and reduce plastic pollution. To support the use of renewable energy, solar power street lights have been installed at strategic locations throughout the zoo. For convenient and environment-friendly transportation, battery-operated e-rickshaws are provided for visitors, reducing the need for conventional fuel-powered vehicles within the premises. Our zoo also regularly organizes plantation and cleanliness drives involving students, teachers, volunteers and local communities. These initiatives include tree plantation and cleanliness drive and at promoting environmental awareness and fostering a sense of responsibility towards nature conservation among participants.
0: मंगलवार से रविवार तक खुलने वाले इस चिड़ियाघर में आने वाले पर्यटकों के लिए इस विशाल परिसर का भ्रमण करने के लिए ई रिक्शा और साइकिल की सुविधा उपलब्ध है। अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां आने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जब सुहावने मौसम के कारण पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। नागालैंड जूलॉजिकल पार्क केवल एक पर्यटक स्थल न होकर संरक्षण, अनुसंधान और पर्यावरण शिक्षा का ऐसा केंद्र है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य के अनूठे वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर कार्यरत है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से असुनो की रिपोर्ट के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: अब हमारा सफर चल पड़ा है नागालैंड से त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा इन दिनों निवेश के मामले में एक उभरता हुआ राज्य बन रहा है और बीते दिनों दो दिवसीय डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव की सफल समाप्ति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस कॉन्क्लेव में उद्योगपति, नीति निर्माता और विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से त्रिपुरा निवेश को आकर्षित कर रहा है और उद्योगों को आकर्षित करके राज्य में न सिर्फ रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित कर रहा है बल्कि इससे वहाँ के उद्यमियों और युवाओं के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। तो आइए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
1: निवेश गंतव्यों में से एक बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा अगरतला में आयोजित दो दिवसीय डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 देश भर के निवेशकों, उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं की व्यापक भागीदारी के साथ संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में 1000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया और पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा

0: सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, रबड़, बांस, अगरवुड, कृषि तथा कई अन्य उभरते क्षेत्रों में संभावनाओं की तलाश की। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने किया। उन्होंने पारदर्शी शासन, नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
1: नाउ द टाइम इज राइट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू टेक बेनिफिट ऑफ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दैट इज व्हाई वी हैव ऑर्गेनाइज दिस इन्वेस्टमेंट समिट ऑन ए लार्ज स्केल विद द पार्टिसिपेशन बाय मोर देन 45 डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। I am thankful to the donor minister, Sri Sindhia ji, for gracing this business conclave. The business conclave has brought together about 1200 business leaders, promoters, industrialists and entrepreneurs to build Ek Tripura, Shrestha Tripura.
0: सम्मेलन में क्षेत्र विशिष्ट चर्चाएं, उद्योगपतियों और सरकार के बीच बैठकें तथा निवेशकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत आयोजित की गई। इन सत्रों में त्रिपुरा के निवेश अनुकूल नीतियों, सरलीकृत व्यापार प्रक्रियाओं और एक पारदर्शी एवं कुशल व्यवसायिक वातावरण बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया गया। इस सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण नियमों के सरलीकरण और अनुपालन बोझ को कम करने पर जोर देना रहा। भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने रेखांकित किया कि आसान प्रक्रियाओं, डिजिटल शासन और त्वरित स्वीकृतियों से अधिक निजी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान लगभग 300 सहमति पत्रों और निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए या उन्हें प्रस्तुत किया गया, जिनका अनुमानित मूल्य 90,000 करोड़ रुपए से अधिक है। देश विदेश की कई प्रमुख कंपनियों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में त्रिपुरा में निवेश करने में रुचि व्यक्त की है। व्यापारिक सुधारों को लागू करने और व्यापार सुगमता में सुधार के लिए राज्य की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए त्रिपुरा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संताना चकमा ने कहा कि यह आयोजन साझेदारी के माध्यम से एक उज्जवल भविष्य के निर्माण और विश्वास का प्रतीक है।
2: Our government has made doing business easier through the Swagat Single Window System, faster approvals, business friendly policies and transparent governance. We are creating a strong and investor friendly environment. Tripura is blessed with rich natural resources such as rubber, bamboo, tree, agar, natural gas and our famous queen pineapple. We also offer excellent opportunities in tourism, healthcare, IT, logistics, manufacturing, renewable energy and food processing. With a strong government support, attractive incentives and a strategic location, Tripura is ready to establish itself as the इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन गेटवे इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया।
0: सम्मेलन में बुनियादी ढांचे, कुशल जनशक्ति और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ त्रिपुरा के रणनीतिक कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बढ़ती क्षमताओं को भी प्रदर्शित किया गया। निवेशकों ने औद्योगिक विकास, नवाचार और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभकामनाएं दी और इस सम्मेलन के परिणामों के प्रति आशा व्यक्त की।
3: आई ब्रिंग विद मी द इमोशंस एंड द वॉइस ऑफ आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इट्स अ प्रिविलेज टुडे टू पार्टनर त्रिपुरा इन दिस रिमार्केबल ग्रोथ जर्नी दैट त्रिपुरा हैज एम्बार्क्ड अपॉन ओवर द लास्ट डेकेड। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस व्हिच त्रिपुरा हैज टुडे बिकम ए स्ट्रेटेजिक पिलर फॉर नॉट only the north but a strategic pillar in India's journey towards viksit bharat।
0: निवेशकों और उद्योगपतियों की यह उत्साही भागीदारी त्रिपुरा की आर्थिक क्षमताओं और पूर्वोत्तर में एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में इसके उभरने के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। निवेशकों की मजबूत भागीदारी, बड़े निवेश प्रस्तावों और राज्य के व्यवसायिक वातावरण में बढ़े विश्वास के साथ डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 ने औद्योगिक विकास और आर्थिक बदलाव की एक मजबूत नींव रखी है। त्रिपुरा सरकार ने सतत विकास, नवाचार और निवेश आधारित प्रगति के माध्यम से उन्नत त्रिपुरा के संकल्प को साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। एलडी के लिए अगरतला से सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ मैं करिश्मा राय।
4: खास पहल की शुरुआत की गई, ये पहल है मिशन गोल्डन स्पाइस। आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि ये मसालों से जुड़ी हुई कोई योजना है। निश्चित तौर पर मेघालय में ये लाकाडोम हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण योजना है और दिल्ली में ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से मिशन गोल्डन स्पाइस की शुरुआत की और इसमें लाकाडोम हल्दी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की इस पहल में एक विशेष योजना है। और इस योजना का मकसद ये भी है कि मेघालय के किसानों और विशेष रूप से महिला किसानों को प्रोत्साहन मिले, उनकी आय बढ़े, उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा हो, साथ ही मेघालय में प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो और वहां पर खेती के दायरे को भी बढ़ाया जा सके। तो ये मिशन गोल्डन स्पाइस क्या है और किस तरह से मेघालय में ये खेती को प्रोत्साहन देगा और कैसे मेघालय की लाकाडोम हल्दी को एक विशेष पहचान दिलाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है, आइए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट सुनते हैं। मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। इस पहल को परिवर्तनकारी बताते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ये मिशन मेघालय को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त प्रीमियम लाकाडोम हल्दी के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना, खेती का विस्तार करना और राज्य के इस प्रमुख उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इससे लाभान्वित होने वाले लगभग 17,500 किसानों में से करीब 99% महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि ये मिशन केवल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक पूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला बनाने की सरकार की नीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये पहल प्रौद्योगिकी, वित्त और बाजारों तक पहुंच को मजबूत करेगी, साथ ही राज्य के भीतर अधिक मूल्य संवर्धन का निर्माण करेगी और हजारों किसान परिवारों की आजीविका में सुधार लाएगी। मिशन लाकाडोम के परियोजना अधिकारी डिमांडसन लिंगदो ने बताया कि मिशन के लिए जमीनी स्तर पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। केंद्रीय कृत जैविक प्रसंस्करण इकाई के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, जबकि खेती के क्षेत्र विस्तार के लिए किसानों का पंजीकरण और किसान उत्पादक संगठनों की पहचान का काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक लाकाडोम हल्दी की खेती को 2,500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7,000 हेक्टेयर किया जाएगा। इसके तहत किसानों को रोपण सामग्री, जैविक खाद और कीटनाशक, जैविक प्रमाणीकरण में सहायता तथा उन्नत खेती के तरीकों का प्रशिक्षण निशुल्क प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रसंस्करण सुविधाओं, कर्क्यूमिन निष्कर्षण और मजबूत निर्यात संपर्कों से मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे ताजा लाकाडोम हल्दी के लिए 80 रूपए प्रति किलोग्राम का लक्ष्य मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और लाकाडोम हल्दी की अगुवा ट्रेटी साइयो ने इस मिशन का स्वागत करते हुए कहा कि निशुल्क रोपण सामग्री, आधुनिक मशीनरी और उन्नत प्रसंस्करण सुविधाएं मिलने से अधिक किसान खेती के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रसंस्करण और कर्क्यूमिन निष्कर्षण इकाइयां बेहतर बाजार अवसर पैदा करेंगी, हाथ से पैदा किए जाने वाले प्रसंस्करण पर निर्भरता कम होगी और उद्यमियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए मेघालय का अपना लाकाडोम हल्दी ब्रांड विकसित करने में सक्षम बनाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिशन उन महिला किसानों को और अधिक सशक्त बनाएगा जो लंबे समय से लाकाडोम हल्दी की खेती में सबसे आगे रही हैं। खेती, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात में निवेश के साथ मिशन गोल्डन स्पाइस से प्रीमियम लाकाडोम हल्दी के केंद्र के रूप में मेघालय की स्थिति और मजबूत होने की संभावना है। इसके साथ ही ये पहल राज्य भर के हजारों किसानों के लिए टिकाऊ आजीविका का निर्माण करेगी और उनके अवसरों का विस्तार करेगी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा। श्रोताओं, अब हम रुख करते हैं सिक्किम का।
5: आप सभी जानते हैं कि कला प्रतिभा प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है, लेकिन कला से किसी के अंदर आत्मविश्वास को भी जगाया जा सकता है। इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है सिक्किम के पाक्योंग जिला प्रशासन ने। दरअसल पाक्योंग जिला प्रशासन ने वहां के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स यानी पुनर्वास केंद्रों में रह रहे लोगों के लिए एक विशेष पहल की है, जिससे उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके और साथ ही साथ उनकी मानसिक मजबूती भी सुनिश्चित की जा सके। इस पहल के तहत ऐसे लोगों को मंगा आर्ट से जोड़ा जा रहा है और इस कला से जुड़ने के बाद वहां रह रहे लोगों के बीच नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। तो आइए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट सुनते हैं।

0: जिला प्रशासन ने एशियन एनिमे एंड मंगा अकादमी के सहयोग से यह कार्यशाला शुरू की है। इसका पहला चरण भास्मे के जीवन मार्ग सोसाइटी और चालाम थांग के समैरिटन काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में चल रहा है। इसमें 36 प्रतिभागी मंगा आर्ट सीख रहे हैं, साथ ही उन्हें रचनात्मक क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं से भी परिचित कराया जा रहा है।
1: I think one of the aspects that we are very clear is in terms of how we can also value add the society. And we believe that there are a lot of talented artists who are there in rehabilitation centers, and many of them would want art as a therapy as well as a vocation. So the two things that we're looking at it, number one is we are looking at art as a therapy where people who are there in rehabilitation centers, beyond our training also would like to look at this as a gateway for their own peace and happiness. And the other is if we see talented people who are there in rehabilitation centers post their recovery, we would invite them to be a part of Studio AMA, either through projects or through full time. So this is our small way of contributing towards the betterment of the society also.
0: यह कार्यशाला 22 जुलाई से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलेगी। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कार्यक्रम लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने, नई कला सिखाने और आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ाने का प्रयास है। मैं नाग चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं अनिकेत, आकाशवाणी समाचार।
2: अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
3: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के टी पानायक रिटायर ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों, स्वास्थ्य कर्मियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा नागरिक समाज ने नशा मुक्त युवा के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे के विरुद्ध लड़ाई की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति से होनी चाहिए और इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। इस सम्मेलन में सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल एवं युवा मामले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा जनजातीय मामलों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा रेड क्रॉस के स्वयंसेवक शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा है कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा, उत्पादकता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र विकास के लिए भी गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा है कि नशा मुक्त भारत का अर्थ केवल नशीले पदार्थों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली, जागरूक निर्णय, सहयोगी परिवारों और सशक्त समुदाय को बढ़ावा देना भी है। राज्यपाल ने नशे की समस्या से निपटने के लिए व्यापक रणनीति अपनाने पर बल दिया, जिसमें रोकथाम एवं जन जागरूकता, प्रभावी निगरानी और जनसंपर्क के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा नशा मुक्त हो चुके लोगों के लिए कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
2: श्रोताओं, अब हम वापस आपको त्रिपुरा लिए चल रहे हैं। त्रिपुरा में एक और विशेष पहल की आज हम बात करने जा रहे हैं। वहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस आजीविका मिशन पहल से ग्रामीण महिलाओं और विशेष तौर पर स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। और ऐसे में एक विशेष पहल है जिसमें महिलाओं को जूट शिल्प के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उनके लिए आजीविका के अवसर खोले जा रहे हैं। तो विस्तार से हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में सुनते हैं।
4: जिले के चरीलाम की कई महिलाओं के लिए अब घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने सपनों को पूरा करना भी संभव हो रहा है। सपा दत्ता भौमिक और स्वयं सहायता समूह की अन्य महिलाएं TRLM की ओर से आयोजित जूट शिल्प प्रशिक्षण में हिस्सा ले रही हैं। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में जूट से बने पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। महिलाओं का कहना है कि यह प्रशिक्षण उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और भविष्य में रोजगार के नए अवसर भी देगा।
5: सबसे ज्यादा हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे ये जो जूट बैग का काम है, अगर हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बहुत सारा होगा। और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हर कोई महिला अपने अवसर में स्वनिर्भर हो, तो अगर हर कोई ऐसे जूट बैग बनाए और जो डोरमैट है वो बनाए तो उन लोगों का भी बहुत प्रॉफिट होगा।
4: मास्टर ट्रेनर अनामिका विश्वास के मार्गदर्शन में महिलाओं जूट से बैग, पाउच, फूलदान, सजावटी सामान और घर की सजावट की कई वस्तुएं बनाना सीख रही हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को बाजार की जरूरत के अनुसार तैयार करना है। योजना है कि इन उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री की जाए और चरीलाम में एक उत्पादन केंद्र भी स्थापित किया जाए। यह जानकारी TRLM के समन्वयक पिंटू भौमिक ने दी।
6: जूट के जो तैयार होता है, जो विभिन्न अलग अलग प्रोडक्ट, उसका ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट था, तो उसके हिसाब से हम लोग एक ट्रेनिंग कंडक्ट किया है यहाँ पर, और इसमें 30 SET मेंबर है, इसके अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, इसको जूट बैग, फाइल कवर, पापोश, ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो उसका करने का मकसद है कि एक्चुअली जो दीदी लोग इसके अंदर आकर वो लोग आत्मनिर्भर बने, स्वनिर्भर बने। और हमारा जो ETLM की तरफ से एक जो क्लीनिंग है, जो हमने आगे कर ट्रेनिंग के बाद हम लोग एक यूनिट बनाएंगे, यूनिट के अंदर हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार करेंगे, जो प्रोडक्ट हम बाहर सेल करेंगे और दीदी लोगों का स्वावलंबन बनाएंगे।
4: जूट का हर धागा यहाँ सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की कहानी भी बुन रहा है। सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ पूर्व उत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू, आकाशवाणी समाचार।

0: कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। हमसे जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में। अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 गोल्ड पर।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। आज होगी बात किशोरदा के हवाले से। दुनिया मना रही है आज उनका यौम पैदाइश और आकाशवाणी की उर्दू सर्विस पेश कर रही है इस अजीम फनकार को खराज अकीदत।

ये उनका है।

हिंदुस्तानी फिल्म सनत का एक ऐसा फनकार जिसकी आवाज ने करोड़ों दिलों को मसहूर कर दिया, जिसकी अदाकारी ने लोगों को हंसाया भी रुलाया भी और जिसकी शख्सियत आज भी एक मुअम्मा समझी जाती है। किशोर कुमार, जिनका असल नाम था आभास कुमार गांगुली, आज के दिन यानी 4 अगस्त सन 1929 को मध्य प्रदेश के शहर खंडवा में पैदा हुए थे और उनके वालिद साहब एक मारूफ वकील थे जबकि वालिदा बेहद सादा और मजहबी खातून थी। किशोर कुमार अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे जनाब और उनके बड़े भाई अशोक कुमार पहले ही से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार थे।

बचपन से ही किशोर कुमार को मौसमी का बेहद शौक था। सामीन, वो अजीम गुरुकार केएल सहगल के मद्दाह थे और उन्हीं की नकल भी किया करते थे। अगरचे उन्होंने बाकायदा मौसीकी की तालीम हासिल तो नहीं की, लेकिन कुदरत ने उन्हें एक ऐसी खूबसूरत मुनफरिद आवाज अता की थी जिसने आगे चलकर तारीख रकम कर दी थी।

किशोर दा की जनाब, कभी बादल तो कभी बिजली की कड़क, जी हाँ कभी मधुर सी गुनगुनाहट सी आवाज गुंजन जैसे के बबरू की, और कहीं कुछ ऐसा तासु जैसे हौले हौले से कहीं हवा चलती है और हमारे दिलों को गुदगुदा जाती है। जहाँ तक उनके फिल्मी करियर की बात है तो फिल्मी दुनिया में उनके सफर की शुरुआत अदाकार के तौर पर हुई थी सामयिक, लेकिन उनकी असल पहचान बतौर प्ले बैक सिंगर बनी। और इब्तदा में तो जाहिर सी बात है सभी को काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी संघर्ष हिस्से में आता है, लेकिन एसडी बर्मन साहब ने किशोरदा की सलाहियतों को पहचान लिया था और उन्हें बहुत सारे मौके भी दिए। यही वो मोड़ था जिसने किशोर कुमार साहब को कामयाबी की राह पर गामजन कर दिया था। साल था 1969 और फिल्म थी आराधना, नगमा था रूप तेरा मस्ताना। यहीं से किशोर कुमार की जिंदगी ने नया मोड़ लिया और उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसके बाद वो सुपरस्टार राजेश खन्ना की गोया आवाज बन गए थे।

फिल्म यानी कि आराधना फिल्म जो है किशोर दा के लिए टर्निंग प्वाइंट थी, उसके बाद तो फिल्म इंडस्ट्री में गोया उनका सिक्का चलने लगा था। उनकी आवाज को खुदा ने बड़ी खूबी से नवाजा था, उनकी आवाज में रोमांस भी था यानी रोमानवियत भी थी, दर्द भी थी, दर्द भी था, शोखी भी थी, जिंदगी की खुशियां भी थी, तो कहीं कुछ चुलबुलाहट भी थी। वो सिर्फ एक गुलकार ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे अदाकार, मौसीकार, हिदायतकार, प्रोड्यूसर, नगमा निगार, स्क्रीन राइटर भी थे।

0: कहना चाहिए कि एक शख्सियत में इतनी सारी चीजें थी, गोया एक पूरा इंस्टीट्यूशन था, वो हर चीज में यानी फिल्म से रिलेटेड हर चीज में मुहारत रखते थे। उन्होंने फिल्मों में कॉमेडी के ऐसे किरदार अदा किए सामीन जो आज भी याद किए जाते हैं। उनकी फिल्म आपको याद होगी चलती का नाम गाड़ी, आज भी क्लासिक कॉमेडी फिल्मों में शुमार की जाती है।
1: वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हन्ने हन्ने हन्ने प्यार हो गया हमसे। वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हन्ने हन्ने हन्ने प्यार हो गया।

0: ने प्यार हो गया ओ मनु तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा मनु तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।
1: सभी नाम सुन रही हैं प्रोग्राम मेरी पसंद और आज है किशोर दा का यौम पैदाइश और उसी के हवाले से हमारा आज का ये प्रोग्राम जारी है। कुछ 16 नगमे हमने मुंतखब किए हैं मेरी पसंद प्रोग्राम के लिए और यहां आपको ये भी बता दें सामीन कि अब से थोड़ी ही देर के बाद यानी जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा आपने जाना नहीं है, हमारे साथ बने रहना है क्योंकि हम आपको सुनवाएंगे किशोर दा के हवाले से एक फीचर 11:30 पर जिसका उनवान है हर फन मौला। किशोर कुमार साहब ने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, आसामी, उड़िया और उर्दू समेत कई जबानों में हजारों गीत गाए। उनकी आवाज ने जबानों और सरहदों की गोया हदें मिटा दी थी और उनकी गायकी की जो सबसे मुनफरिद पहचान थी वो थी यूडलिंग यानी आवाज को खास अंदाज में उतार चढ़ाव के साथ गाना किसी भी खूबसूरत नगमे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देना। ये सलाहियत कम कम लोगों को ही मयसर आती है और ये अंदाज उन्होंने अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लिया था और उनकी ये शनाख्त भी बन गया था। एक ऐसी ही नगमा सुनवाते हैं आपको जिसमें आपको खूबसूरत अंदाज की यर्डलिंग नजर आएगी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना

नेहा आपने सुना कितने खूबसूरत अंदाज में यूडलिंग की गई और नगमे में चार चांद लग गए हैं। वैसे अगर उनकी जाती जिंदगी की बात करें तो किशोर कुमार अपनी मुनफरिद आदत की वजह से भी मशहूर थे। मिजाहिया तबीयत रखते थे, कभी कभी इंतहाई संजीदा भी दिखाई देते थे और कभी कभी बच्चों की तरह शरारते भी किया करते थे। जहां तक बात है उनके अवार्ड की तो किशोर कुमार ने 8 फिल्मफेयर अवार्ड बताए, बनाए बेहतरीन मर्द प्लेबैक सिंगर हासिल किए, यानी मेल सिंगर के तौर पर जो एक तवील अरसे तक रिकॉर्ड रहे। और आपको बता दें 1970 में थी फिल्म आराधना जो नगमा हम आपको सुना चुके, रोक तेरा मस्ताना। उसके बाद 1976 में अमानुष फिल्म का नगमा दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, इस फिल्म के लिए भी उन्हें अवार्ड मिला। सन 1979 में डॉन फिल्म का नगमा खई के पान बनारस वाला। उसके बाद 1981 में थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का नगमा हजार राहें मुड़के देखी। फिर 1983 में नमक हलाल के लिए नगमा था पग घुंघरू बांध मीरा नाचती। उसके बाद 1984 में अगर तुम ना होते फिल्म का टाइटल ट्रैक, इसके लिए भी आपको अवार्ड दा किया गया। 1985 में आई थी फिल्म शराबी और नगमा था मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। और 1986 में फिल्म थी सागर और सागर फिल्म का था टाइटल ट्रैक सागर किनारे दिल ये पुकारे। तो ये लंबी फहरिस्त है और आज तक ये रिकॉर्ड बरकरार है। आज भी उन्हें भारतीय फिल्मी मौसिकी के अजीम तरीन गुलकारों में शुमार किया जाता है।

हरफन वाला और आवाज का ये जादूगर 13 अक्टूबर सन 1987 को इस दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन आज भी सामईन उनकी आवाज जिंदा है। उनके नगमे आज भी रेडियो, टेलीविजन, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और लोगों के दिलों में उसी मोहब्बत के साथ गूंजते हैं जैसे कई दहाइयों पहले गूंजा करते थे। किशोर कुमार साहब सिर्फ एक गुलकार नहीं थे, वो एक मुकम्मल फनकार थे, एक इदारा थे। उन्होंने अपनी आवाज से मोहब्बत को जिंदा जाविदा कर दिया तो कहीं गम को बेहद दिलनशीं बना दिया और जिंदगी को गोया एक नया नगमा अता किया। समीन बाज आवाजें वक्त के साथ मध्यम पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ आवाजें वक्त के साथ साथ चलती हैं, बल्कि वक्त से आगे निकल जाती हैं। किशोर कुमार साहब उन्हीं चंद खुशनसीब फनकारों में से एक थे जिनकी आवाज आज भी दिलों पर राज करती है और आने वाली नस्लों तक राज करती रहेगी। इस अजीम फनकार को आकाशवाणी की उर्दू सर्विस की जानिब से बेहतरीन खराज अकीदत।

सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब सुनिए किशोर कुमार के हवाले से एक फीचर, उनवान है हरफन मौला, तहरीर जनाब अनीस अमरोहवी की है, पेशकश है अली मुतशिम रजा की और सदाकार हैं अली मुतशिम रजा और दानिश इकबाल।

0: कितने लोगों को किशोर कुमार का गाया हुआ ये गाना याद होगा। उन्होंने महसूस किया होगा कि किशोर कुमार की आवाज में कितना दर्द कर्द छुपा हुआ था। हालांकि किशोर कुमार को फिल्मी ज्यादातर एक लापरवाह और खलिंदे नौजवान के तौर पर ही पहचानते थे। उस जमाने में किशोर कुमार का ये गाना हिंदुस्तान के गली कूचों में खूब गूंजता था। चार अगस्त सन 1929 को खंडवा के एक बंगाली गांगुली खानदान में आभास कुमार उर्फ किशोर कुमार का जन्म हुआ। किशोर कुमार के वालिद जनाब कुच बिहारी गांगुली खंडवा मध्य प्रदेश के मकबूल बैरिस्टर थे। किशोर कुमार की वालदा गौरी देवी का ताल्लुक बंगाल के एक मुतवस्सित खानदान से था। सबसे बड़े भाई अशोक कुमार के बाद एक बड़ी बहन सती देवी और तीसरे नंबर पर अनूप कुमार के बाद आभास कुमार चौथे नंबर पर सब बहन भाइयों में सबसे छोटे थे।
1: प्यार करे और रहे।
0: आभास कुमार ने इंदौर शहर के क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किया। सबसे पहले आभास कुमार के सबसे बड़े भाई अशोक कुमार को हिंदुस्तानी सिनेमा में दाखिल होने का मौका मिला। अशोक कुमार के बहनोई एस मुखर्जी दोनों बॉम्बे टॉकीज के कर्ताधर्ताओं में से एक थे, लिहाजा उन दोनों की कोशिशों से ही आभास कुमार को भी फिल्मों में आने का मौका मिला। अशोक कुमार के हीरो बनने के बाद गांगुली खानदान अक्सर बम्बई आता रहता था। उन्हीं दिनों आभास कुमार को फिल्मों में जाने और फिल्मी मौसीकी से दिलचस्पी पैदा हो गई और वो बाथरूम सिंगर बन गए। आभास कुमार उर्फ किशोर कुमार को बचपन से ही गाने का शौक था और वो सहगल को दीवानगी की हद तक पसंद करते थे। यही दीवानापन उनको आखिरकार मुंबई ले आया था। उन दिनों हर तरफ सहगल के ही चर्चे थे। मुंबई आकर सबसे पहले किशोर कुमार ने सहगल से मुलाकात की और उनको अपनी आवाज में एक गाना सुनाया और सहगल से कहा कि मैं भी आप ही की तरह एक मशहूर गुलूकार बनना चाहता हूँ। सहगल इस नौजवान की लगन और जादू भरी आवाज से मुतासिर हुए और उन्होंने आभास कुमार को मशवरा दिया कि एक तो वो गाते वक्त अपने जिस्म को बेहरकत रखा करें, इस तरह सामाइन का ध्यान गाने पर ही रहेगा। दूसरी बात यह कि गाते वक्त चेहरे पर हमेशा सुकून बनाए रखें। सहगल का ये मशवरा उस वक्त आभास कुमार ने गिरा में बांध लिया। आभास कुमार ने अपना नाम बदलकर यानी अपना फिल्मी नाम किशोर कुमार कर लिया और बॉम्बे टॉकीज में कोरस सिंगर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। बॉम्बे टॉकीज में उनके बड़े भाई अशोक कुमार पहले ही हीरो के तौर पर एक कामयाब अदाकार बन चुके थे। मकबूल मौसीकार खेमचंद प्रकाश ने सबसे पहले किशोर को मुकम्मल तौर पर एक गुलूकार की हैसियत से फिल्म जिद्दी में एक गाना रिकॉर्ड कराने का मौका दिया। सन 1948 में बनी फिल्म जिद्दी के हिदायतकार शाहिद लतीफ थे। इस फिल्म में किशोर कुमार का गाया हुआ गाना मरने की दुआएं क्यों मांगू बहुत मकबूल हुआ। इस फिल्म में अशोक कुमार हीरो थे और मौसीकार खेमचंद प्रकाश ने उनकी सिफारिश पर ही किशोर कुमार को ये पहला मौका दिया था। फिर वक्त के साथ साथ फिल्मी दुनिया में किशोर कुमार के कदम जमने लगे। किशोर कुमार ने बतौर अदाकार और गुलूकार बहुत कामयाबी हासिल की।

0: ख्वाहिश दुनिया कौन करे।
1: 1949 में मुंबई में मुस्तकिल सुपरहिट हासिल करने के बाद मुंबई टॉकीज की फिल्म आंदोलन में हीरो के तौर पर किशोर कुमार को पहली मरतबा लिया गया। ये फिल्म 1951 में रिलीज हुई। इसके हिदायतकार थे फनी मजूमदार। उसके बाद किशोर कुमार ने निर्मल रॉय की फिल्म नौकरी में काम किया जो 1954 में रिलीज हुई। उसके खान सलील चौधरी ने किशोर कुमार से गाने गवाने के लिए साफ इनकार कर दिया था क्योंकि उस फिल्म में उनका कहना था किशोर कुमार की कोई बाकायदा तालीम नहीं हुई है। लेकिन जब उन्होंने किशोर कुमार को अपने सामने बिठाकर उनकी आवाज सुनी तो उन्होंने किशोर कुमार से एक गाना छोटा सा घर होगा रिकॉर्ड कराया। सन 1953 में नुमाइश के लिए पेश की गई फिल्म लड़की किशोर कुमार की बतौर हीरो पहली हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के हिदायतकार M.V. रमन थे। किशोर कुमार ने बतौर हिदायतकार सबसे पहले सन 1964 में फिल्म दूर गगन की छांव में बनाई।

किशोर कुमार ने चंद फिल्मों की फिल्म साजी भी की। दूर गगन की छाव में, दूर कराही, झुमरू, चलती का नाम गाड़ी, हम सब डाकू और बाटी का नाम दाढ़ी जैसी फिल्मों में किशोर कुमार ने जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की। फिल्म चलती का नाम गाड़ी में अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार इन तीनों सगे भाइयों ने अच्छी कॉमेडी पेश की। किशोर कुमार ने अपनी फिल्मों को कभी भी संजीदगी से रिलीज करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। शायद किशोर कुमार के माली मुशीरों ने खसारा दिखाने और टैक्स बचाने के मकसद से ही उनसे फिल्में बनवाई हो। किशोर कुमार ने अपने गाने खुद गाने वाले हीरो के तौर पर जो मकान बना लिया था वो उस दौर में शायद ही किसी दूसरे अदाकार को कभी नसीब हुआ। नई दिल्ली, बंदी, भाई भाई, शरारत, मुसाफिर और आशा जैसी फिल्में आज भी किशोर कुमार की वजह से ही याद की जाती हैं। फिल्म साज एनवी रमन की फिल्म लड़की और बाहर खुद किशोर कुमार को बेहद पसंद थी।

0: उसके बाद टैक्सी ड्राइवर हाउस नंबर 44, संतोष 9211, पेन गेस्ट गाइड ज्वेल थीफ प्रेम पुजारी और तेरे मेरे सपने में किशोर कुमार ने बर्मन दा के लिए बेहतरीन नगमे गाए। मुसिकार आईडी बर्मन के लिए किशोर कुमार ने सबसे ज्यादा और बेहतरीन नगमे रिकॉर्ड कराए। आपकी कसम, कटी पतंग, अनामिका, महबूबा, पड़ोसन वगैरह फिल्मों के नगमे काफी मकबूल हुए। सन 1958 में एसडी बर्मन ने खुद किशोर कुमार की बतौर फिल्म साज फिल्म चलते का नाम गाने के नगमे कंपोज किए।
1: हम थे वो थी हम थे
2: और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हन्ने हन्ने हन्ने प्यार हो गए।

0: आखिरकार उसके बर्मन ने किशोर कुमार की गायकी की सलाहियत को पहचान लिया था और उन्होंने किशोर कुमार की आवाज को अदाकार देवानंद के लिए 1954 में फिल्म मुनीम जी में पहली बार इस्तेमाल किया। फिल्मसाज और हिदायतकार शक्ति सामंत की 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना की बेपनाह कामयाबी के बाद किशोर कुमार मुंबई की फिल्मी नगरी में गायकी की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए।
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब।

तुम लोग ही जानते होंगे कि ऋषिकेश मुखर्जी की हिदायत में बनने वाली फिल्म मुसाफिर में किशोर कुमार के साथ दिलीप कुमार ने भी मेहमान अदाकार के तौर पर काम किया था। ये फिल्म सन 1957 में नुमाइश के लिए पेश की गई। किशोर कुमार ने चार शादियां की। उनकी पहली शादी 1950 में बंगाली अदाकारा रूमा देवी से हुई। रूमा देवी से उनके एक बेटे अमित कुमार है, जो खुद भी एक अच्छे गुरुकार है। 1958 में रूमा देवी से तलाक के बाद किशोर कुमार ने सिल्वर स्क्रीन की मीनस यानी मधुबाला से 1960 में शादी की, लेकिन मधुबाला ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकी। 1969 में मधुबाला की मौत के बाद किशोर कुमार ने 1975 में अदाकारा रुबिता बाली से शादी की, लेकिन दोनों में ज्यादा दिनों तक बन नहीं पाई और जल्द ही यानी 1978 में उनका तलाक हो गया। किशोर कुमार की चौथी शादी अदाकारा रीना चंद्रवरकर से हुई और ये शादी 1980 में हुई। रीना चंद्रवरकर से भी किशोर कुमार के एक बेटे हैं, जिनका नाम सुमित कुमार है। इस बात का फैसला करना बहुत मुश्किल है कि किशोर कुमार को अदाकारी में ज्यादा महारत थी या मौसीकी में, लेकिन ये कबूल करना पड़ेगा कि किशोर कुमार में बेशुमार सलाहियतें थी। अदाकार, मौसीकार, हिमायतकार, स्क्रिप्ट राइटर, डांस डायरेक्टर, फोटोग्राफर, नगमा निगार और फिल्म सास के अलावा उन्होंने गुलकार के तौर पर सबसे ज्यादा कामयाबी और मकबूलियत हासिल की। फिल्म साजी का कोई भी शोबा ऐसा न था जिससे किशोर कुमार को दिलचस्पी न हो या जिससे उनका कोई ताल्लुक न रहा हो। किशोर कुमार के हम आसर गुलकारों में मोहम्मद रफी और मुकेश सबसे ज्यादा मकबूल थे। जिंदगी ने इन दोनों गुलकारों के साथ वफाने की और मौत के बेरहम हाथों ने इन दोनों अजीम गुलकारों को समयों से छीन लिया। ये अजीब इत्तेफाक है कि मोहम्मद रफी और मुकेश की तरह किशोर कुमार की मौत भी दिल का दौरा पड़ने से हुई। किशोर कुमार की जिंदा दिली, सच बोलने की आदत और हंसी मजाक में डूबी शख्सियत की दास्तानों के साथ ही कई दिलचस्प वाकयात भी मशहूर है। किशोर कुमार ने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू वगैरह समेत कई जबानों में काफी नगमे गाए। जब कभी किशोर कुमार को उनकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया गया तो दिमाग से ज्यादा दिल की बात मानने वाले किशोर कुमार ने किसी भी दबाव में आने से इनकार कर दिया। इमरजेंसी के जमाने की बात है कि उस वक्त के वजीर इत्तलात ने नाराज होकर रेडियो और टेलीविजन पर किशोर कुमार के गानों पर पाबंदी लगा दी, मगर इस पाबंदी के बावजूद किशोर कुमार की शोहरत पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

0: ही नहीं, इस तरह के और बहुत से गाने हैं जो आज भी दिल की गहराइयों में उतरे हुए हैं। हालांकि बहुत कम मौसीकार ऐसे होंगे जिनकी बनाई धुनों पर किशोर कुमार ने अपनी शीर्ण आवाज का जादू ना बिखेरा हो।
1: और दे जाते हैं
0: मौसीकार नौशाद अली ने एक या दो गाने ही किशोर कुमार से गवाए हैं। इसी तरह मौसीकार ओपी नैयर ने भी शायद ही कभी किशोर कुमार की शीर्ण आवाज का फायदा उठाया हो। किशोर कुमार ने तकरीबन तमाम मकबूल और मशहूर प्लेबैक गुरुकारों के साथ दो गाने गाए हैं, उनमें शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर और सुलक्षणा पंडित वगैरह के साथ किशोर कुमार के दो गाने बहुत मकबूल हुआ करते थे।

किशोर कुमार ने तकरीबन 4 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया में अपना एक खास मकाम बनाए रखा। किशोर कुमार के चले जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे फिल्मी मौसीकी की एक सदी का खात्मा हो गया। मोहम्मद रफी और मुकेश की मौत के बाद फिल्मी दुनिया में जो एक खला पैदा हो गया था, किशोर कुमार ने अपनी जादू भरी आवाज से उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किशोर कुमार की मौत से जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया। मौत के संगीन हाथों से कोई नहीं बच पाता, और किशोर कुमार को तो मौत का जाती तजुर्बा था, क्योंकि किशोर कुमार ने मौत को बड़े नजदीक से देखा था।

0: कुमार ने मधुबाला को आहिस्ता आहिस्ता मौत की आगोश में जाते हुए देखा था। वैसे किशोर कुमार को दो बातें सताती रहती थी, एक तो मौत का एहसास और दूसरे तन्हाई और अकेलापन। इतनी ज्यादा शोहरत, एक भरपूर खानदान और मौसीकी से भरे हुए माहौल के बावजूद किशोर कुमार ने खुद को हमेशा अकेला ही महसूस किया। इसी अकेलेपन की झलक किशोर कुमार के कई गीतों में भी हमको मिलती है। ये मौत का ही एहसास था जिसे किशोर कुमार ने अपने अकेलेपन का इलाज समझ लिया था। कहते हैं कि मौत से बेहद लगाव था किशोर कुमार को, इसलिए ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि किशोर कुमार को मौत पर जितना एतबार था उतना शायद जिंदगी पर भी नहीं था।
1: दुनिया कहती मुझको पागल, अरे मैं कहता दुनिया को पागल। हाय हाय मेरा दिल।

0: फिल्म फेयर अवार्ड सन 1969 में फिल्म आराधना के नगमे रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना के लिए दिया गया। किशोर कुमार ने अपनी फिल्मी जिंदगी के सफर में तकरीबन 600 से ज्यादा फिल्मों में गाने गाए और तकरीबन 81 फिल्मों में अदाकारी की। अपने पूरे फिल्मी सफर में किशोर कुमार को 8 मरतबा बेहतरीन प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा 19 मरतबा किशोर कुमार को इसी अवार्ड के लिए नामजद किया गया। मध्य प्रदेश हुकूमत की तरफ से किशोर कुमार को लता मंगेशकर अवार्ड से भी नवाजा गया। उसी बरस हुकूमत मध्य प्रदेश ने किशोर कुमार अवार्ड शुरू करने का भी ऐलान किया था।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना।

0: बोली हम उसे ना।
1: किशोर कुमार अपने आखिरी दिनों में बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहे। अपने वतन खंडवा जाकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारना चाहते थे, मगर मुंबई शहर की मसरूफ जिंदगी ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी न होने दी और न ही जिंदगी ने उनका ज्यादा साथ दिया। गुलकार आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मौसीकी को और खासतौर पर हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी को किशोर कुमार ने जो कुछ दिया है वो शायद ही कोई दूसरा गुलकार कभी दे पाए। किशोर कुमार की मौत से फिल्मी मौसीकी के एक सुनहरे दौर का खात्मा हो गया। सिर्फ 58 बरस की छोटी सी उम्र में दिल का दौरा पड़ने के सबब 13 अक्टूबर 1987 को फिल्मी मौसीकी की ये शम्मा हमेशा के लिए खामोश हो गई। आखिरी सुमात उनकी वसीयत के मुताबिक उनके आबाई वतन खंडवा में अदा की गई।
2: जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में।

आंधी फिल्म का नगमा आपने सुना किशोर दा और लता मंगेशकर का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

जन्म जन्म तेरे लिए।

0: बापरे बाप फिल्म का नगमा भी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ, और ये है किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है गाइड।
1: एसके वर्मा बॉस वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन, ज्यादा पिक्चर लेता नहीं था, मिक्सी में बैठ के कंपोज करता था, सुबह 8 बजे फोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, मैं शाम को आ रहा हूँ। और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं।

0: निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फे, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: तेरी जुल्फे हैं?

0: इसी तरफ कुछ गांव में बैठकर हमारे सूफी संतों ने अपने पाइप की आवाज को सुना और अपने वाशी का वो दर्श दुनिया को दिया जो आज भी हिंदुस्तानी मिजाज और हिंदुस्तान के रसूलों का अहमतरीन हिस्सा है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था बरगद का दरख्त। तहरीर थी महमूद हाशमी की, रावी थे एस एम शफीक। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام سرخیوں میں۔ ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: जी राजा रमन, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच, हमेशा अच्छा लगता है आकाशवाणी में।
1: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पदक तालिका में चौथे नंबर पर अपना कैंपेन खत्म किया है। 122 खिलाड़ी गए थे और 39 मेडल लेकर घर लौटे हैं, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज शामिल है। तो कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में आप कैसे रेट करेंगे?
2: उम्मीद के अनुसार ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। गेम से पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं 30 मेडल का शायद टारगेट लगा था भारतीय टीम के लिए, लेकिन 39 मेडल से वापस आना, ये दिस इज अबाउट माय एक्सपेक्टेशन। और मैं सराहना करूंगा पूरी टीम की, चाहे वो एथलेटिक्स की टीम हो या फिर वेटलिफ्टिंग हो या फिर बॉक्सिंग हो या जूडो हो, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है और ये देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा ये कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रदर्शन।
1: राजा, आपने कहा कि खेलों से पहले आप 30 का टारगेट देते, लेकिन अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो 2002 से अब तक ज्यादातर 50 से ज्यादा मेडल्स लाए। बर्मिंघम की बात करें तो 61 मेडल थे। तो जब हम खेलों की बात करते हैं, ये सब आंकड़ों की बातें होती हैं और स्टेटिस्टिक्स के बाद, जैसे मैंने भी कहा कि 2002 के बाद ये पहली बार है कि 50 से कम मेडल लेकर आए हैं, पर इसके साथ ये बात भी है कि अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स के जो पिछला इतिहास या हाल का भी जो रिसेंट हिस्ट्री उसको देखें तो ये पहली बार है कि जो खेल है काफी कम हो गए। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, शूटिंग, ये ऐसे खेल हैं जहां पारंपरिक तौर पर भारत जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करता रहा है और ये खेल इस बार नहीं थे। तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है उनको सिर्फ नंबरों से, आंकड़ों से आंकना सही नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में?
2: नहीं, ये नंबर तो हमेशा नंबर का खेल है और मेडल तालिका में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के भी मेडल कम हो गए क्योंकि खेल कम हो गए थे। इधर शूटिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ऐसे खेल में हमारे लिए हमेशा बहुत ज्यादा मेडल मिलते थे, लेकिन ऐसा खेल का ना होना दुख वाली बात है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये गेम्स विक्टोरिया में होने थे ऑस्ट्रेलिया में और फिर उन्होंने मना कर दिया था और लास्ट मिनट में ग्लासगो आगे आए और फिर वो आयोजन किए हैं, तो तारीख के काबिल है ग्लासगो। लेकिन क्योंकि सिर्फ 10 डिसिप्लिन थे यहाँ पर जहां हम हिस्सा लिए थे, ये मेडल नंबर कम दिखेंगे लेकिन ओवरऑल परसेंटेज मेरे को लगता है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मेडल कम हुए, कनाडा के मेडल कम हुए, इंग्लैंड के मेडल कम हुए, हमारे भी कम हुए। और मैंने इसको खराब प्रदर्शन नहीं मानूंगा। अगर आप 60 और 70 मेडल देखते हैं और फिर वहां से 39 देखेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि यहाँ पे खेल कम थे, फ्यूअर डिसिप्लिन, इसीलिए शायद नंबर्स कम है।
1: जी, अब हम अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो बॉक्सिंग भारत के कैंपेन का स्टार रहा। हमने रिकॉर्ड 10 मेडल जीते हैं जिसमें से 7 गोल्ड भी हैं। ये किसी भी देश द्वारा किसी एक कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा मेडल है। तो ये कामयाबी बेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बॉक्सिंग की बढ़ती ताकत को दिखाती है, तो इसके बारे में आप क्या करेंगे और कौन से वो बॉक्सर्स हैं जो आपको लगता है जो इसमें उभर कर आए हैं इन गेम्स में?
2: टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, जिस तरीके का कंपटीशन का स्तर रहा उस हिसाब से भारतीय टीम ने अपने 10 मेडल लाए, वहां पे 7 गोल्ड मेडल और फिर 3 सिल्वर मेडल है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि एशियन गेम्स जो महीने दो महीने में होना है, वहां पे अगर ऐसा प्रदर्शन होता तो बहुत ज्यादा उत्साह का जगह बन जाता है। कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग और फिर वेटलिफ्टिंग, इनके स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं है और इसीलिए शायद आपको समझना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि 10 मेडल खराब मेडल है, 10 बहुत बेहतरीन मेडल है। जो कॉम्पिटिशन है उसमें हम बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं, ये हमारी गलती नहीं है कि कॉम्पिटिशन कमजोर रहा
1: जी, क्योंकि ये भी एक बात हो रही थी कि जी बॉक्सिंग में हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं मिला है इन गेम्स में।
2: हकीकत तो यही है, सच ये है कि कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी जाना पड़ेगा, रिंग में उतरना पड़ेगा और बॉट जीतने पड़ेंगे और वो जीत के आए हैं तो दे डिजर्व प्रेस, तारीफ तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि कुछ खेल ऐसे हैं जहां पे एशियाई खेल में हमको मेडल्स कम मिलते हैं। वेटलिफ्टिंग में वहां पे गोल्ड आ गया था, उसमें भी आपका प्रदर्शन आप देखेंगे तो 190 में गोल्ड मेडल

0: कराई है, सिल्वर मेडल जिसके पास था उनसे 20 किलो ज्यादा उठाई, तो दिखाता है कि कंपटीशन कमजोर ही रहा है, लेकिन आपको मैदान में फिर भी उतरना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मेडल्स बॉक्सिंग में और वेटलिफ्टिंग में आए मैं उनको कम नहीं आंकूंगा, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसा ही प्रदर्शन एशियन गेम में जब करेंगे तो बहुत खुशी वाली बात हो जाएगी।
1: जी, आप क्योंकि वेट लिफ्टिंग की बात करें, जैसे भी आपने कहा कि जब वेट लिफ्टिंग की बात हो और मीराबाई चानू की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो भारत की सबसे महान एथलीट्स में क्यों शुमार है, और उन्होंने इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की जो हैट्रिक है टाइटल्स की वो पूरी की है। तो इसके अलावा उनकी तो ऑफकोर्स हमने भी बात की, पर बाकी और कौन से वो वेट लिफ्टर्स हैं जिन्होंने इन खेलों में, ग्लास्गो खेलों में, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है वेट लिफ्टिंग की बात करें?
0: विद्या रानी देवी का प्रदर्शन सही रहा है, मुझे लगता है। मुत्तु पांडे राजा जो मेन सेक्शन में मेडल जीते हैं, बहुत अच्छे लिफ्टर्स हैं, लेकिन एशियन स्टैंडर्ड अभी शायद नहीं आया इनका, लेकिन क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया है कईयों ने। अगर वहां पे हमें इतने सारे मेडल्स मिलते हैं, 8 मेडल लेकर आए हैं, अफसोस वाली बात है कि 1 या 2 हम यहाँ पे घर पे रखना पड़ा उनको, हमारे लिफ्टर्स जा नहीं पाए, अफसोस वाली बात है, लेकिन 8 मेडल के साथ वापस आना कॉमनवेल्थ गेम्स से ये अच्छी बात है, इट इज अ पॉजिटिव साइन। जो वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है उनके सामने एक चैलेंज है कि जो खिलाड़ी वहां गए उनको और उठाए उनका स्टैंडर्ड और फिर एशियन गेम्स में कुछ अच्छा कर दिखाए।
1: एथलेटिक्स की बात करें तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें भारत की मेडल्स की गिनती में कई बड़े अचीवमेंट्स हमको मिले हैं। बेशक ऑफकोर्स स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने तो जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर जो देश को उन पर भरोसा था एक बार उसको फिर से पूरा किया है, पर उनके अलावा अगर हम बात करें कई ऐसी अचीवमेंट से कई ऐसी सफलताएं मिली जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, तो वो मैं आपसे वो सक्सेस स्टोरीज जानना चाहूंगी कि एथलेटिक्स में वो कौन सी ऐसी सफलताएं थी जो इन खेलों में उभर कर आई है जिनके बारे में, जैसे मैंने भी कहा कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहाँ पर मेडल्स मिलेंगे।
0: सच बताऊं तो मेरी उम्मीद सिर्फ 3 मेडल की थी, नीरज चोपड़ा जैवलिन में, मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप में और फिर तेजस्वी शंकर डिकैथलॉन में, ये 3 मेडल की उम्मीद थी, तीनों मेडल लाए वहां से। बट मुझे लगता है कि तेजस्वी शंकर वाला डिकैथलॉन मेडल बहुत ही अहम मेडल है, क्योंकि 4 दिन पहले ही वो हाई जंप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए थे, चोट लग गया था उन्हें, उनके नी में प्रॉब्लम था और फिर वो खेल नहीं पाए थे हाई जंप, लेकिन वहां से आना और फिर डिकैथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतना, और पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी डिकैथलॉन में मेडल जीत रहा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मेडल है। और फिर सर्वेश कुशारे हाई जंप में, और कैसे हम बोले गुरवीर सिंह को,
1: बिल्कुल,
0: जिनके पास 10,000 मीटर में सिल्वर और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज, 2 मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने एथलेटिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर कहे तो इज द फर्स्ट एथलीट जो जिनको 2 मेडल मिले। और फिर सीमा जो पीएचडी की स्टूडेंट भी है और डिस्कस थ्रो चैंपियन भी रही है, तो उनका ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत बड़ा मेडल है हमारे लिए। 10 मेडल ट्रैक एंड फील्ड से आना, एथलेटिक्स से आना, और फिर 6 मेडल पैरा एथलीट्स के पास से आना, 16 मेडल एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स ने कंट्रीब्यूट किए, इट इज मैसिव। और मुझे लगता है कि वेटलिफ्टिंग और फिर बॉक्सिंग से ज्यादा अगर मैं इम्प्रेस होता हूँ तो एथलेटिक्स से होता हूँ।
1: आपने पैरा एथलीट्स की बात की, तो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जो भारत के पैरा एथलीट्स हैं वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, इवेंट्स में भारत का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं, और ग्लास्गो में भी उन्होंने देश को निराश नहीं किया, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ओवरऑल भारत में पैरा स्पोर्ट्स की प्रोग्रेस को कैसे देखते हैं, और अभी भी कौन से वो खेल हैं पैरा स्पोर्ट्स में जिसमें है तो भारत की काफी अच्छी सफलता मिली और हम उसमें और बेहतर कर सकते हैं?
0: बहुत सारे खेल हैं पैरा स्विमिंग में अच्छा कर सकते हैं, हालांकि हम स्विमिंग में भी अच्छा कर सकते हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग में हमारे मेडल्स कम है वहां और मेडल्स आ सकते हैं, पैरा एथलेटिक्स में हम लगातार अच्छा करते आए हैं,
1: बिल्कुल,
0: पैरा साइकिलिंग में बेहतरी हो सकती है, तो बहुत सारे खेल है, व्हील चेयर बास्केटबॉल हुआ है उसमें भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन एक मुहिम चला है पैरा स्पोर्ट को सपोर्ट करने का जो भारत सरकार करता है, नॉट ओनली फॉर पैरा स्पोर्ट, एबल बॉडीड स्पोर्ट के लिए भी। अगर आज ओलंपिक स्पोर्ट अच्छे स्तर पर है, भारतीय सरकार को क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो जितना पैसा वो लगाते हैं मार्केट से उतना बनता नहीं है, प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी नहीं लगा पाते, तो भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है इन प्रमोटिंग पैरा स्पोर्ट, और मुझे लगता है कि उसी के नतीजे उसी के अंजाम हमको देखने मिल रहे हैं कि अच्छे अच्छे मेडल्स आए हैं। और सबको ये बताना भी होगा कि हमारा जो स्ट्रेंथ है पैरा एथलेटिक का, चाहे वो जैवलिन हो या फिर हाई जंप हो जहां हम लगातार मेडल जीते हैं, वैसे इवेंट नहीं थे इधर ग्लास्गो में, वुमेन शॉट पुट में शर्मिला मेडल लेकर आई, गोल्ड लेकर आई, ऐसे मेडल्स हमारे लिए संकेत देते हैं कि पैरा स्पोर्ट सही दिशा में चल रहे हैं।
1: एक और स्पोर्ट्स जहां से हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है वो है जूडो। जूडो में ऑफकोर्स एक बार फिर हमारे जूडो का जो है उन्होंने इतिहास रचा है, हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने भारत के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो गोल्ड मेडलिस्ट वो दोनों दोनों बने, जबकि यामिनी मौर्य ने सिल्वर जीता और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण कदम है जूडो जैसे एक खेल में, जो एक गैर पारंपरिक खेल हम कहेंगे भारत की दृष्टि से, कि इस तरह मेडल्स जीतना कितना महत्वपूर्ण है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर हम ओवरऑल बात करें, देश की जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं वो युवा खिलाड़ियों को किस तरह प्रोत्साहित कर सकती हैं कि वो हॉकी, शूटिंग और ट्रैक एंड फील्ड जैसे खेलों से बाहर निकलकर इन गैर पारंपरिक खेलों में ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करें।
0: जूडो के 4 मेडल बहुत अहम है, क्योंकि आप देखिए तो जूडो में हमारे मेडल्स एशियन गेम्स में भी कम मिलते हैं, उससे एक लेवल नीचे है कॉमनवेल्थ कॉम्पिटिशन। वहां पे गोल्ड लाना पहली बार आ रहा था गोल्ड भारत को, विच इज गुड, अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है जूडो को लेके। और हम सबको ये समझना चाहिए कि हम बहुत पैसा कोई ऐसे खेल में लगाते हैं जहां पे ज्यादा मेडल्स हैं, जैसे एथलेटिक्स में 40 इवेंट है और फिर 120 मेडल तक आपको एथलेटिक्स में आप जीत सकते हैं, कोई भी देश जीत सकता है। वैसे ही जूडो में आपके अगर 10 इवेंट मेन के और 10 इवेंट वीमेन के, तो 20 मेडल आप जीत सकते हैं। तो ऐसे खेल को बढ़ावा देना शायद एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहा भारतीय खेल में, कि जूडो को आगे बढ़ाया गया। और फिर कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर्स आए हैं जो जूडो को अपनाए हैं और फिर वहां पे बेलारी में ट्रेनिंग करके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। भोपाल में एक बेहतरीन एकेडमी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वहां से भी बहुत बड़ा योगदान रहा।
1: आपकी नजर में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से ऐसे खिलाड़ी थे, भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने सबको चौंकाते हुए प्रदर्शन किया, जिसको हमें कहते ना ब्रेकआउट स्टार्स, जिन पर सबकी नजर आने वाले भविष्य पर रहेगी?
0: डिस्कस थ्रो सीमा जरूर मैं कहूंगा कि शी विल बी अ सुपरस्टार। कुछ साल पहले वो मां बनी, कुछ साल पहले वो खेलना भी बंद कर दी थी और फिर वहां से आना और अपना पढ़ाई करते हुए खेलना और फिर राष्ट्रमंडल खेल में मेडल जीतना और फिर गुलवीर का आगे बढ़ना, वर्ल्ड क्लास रेसिंग करके 2 मेडल हासिल करना, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर आप मुझसे एक मेडल की बात करें तो वो तेजस्वी शंकर वाला मेडल होगा, क्योंकि मुश्किल काम होता है। हमारी सबकी नजर 100 मीटर धावक पे हो जाती है, जैवलिन थ्रोअर पे होती है। ये खेलते हैं 10 अलग अलग इवेंट और हमें पता भी नहीं चलता कि लीड कौन है, कौन सेकंड चल रहा है, कौन थर्ड चल रहा है। सबसे बड़ा मेडल मैं मानता हूँ।
1: पूरे कैंपेन को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि इस ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारत की जो पारंपरिक ताकतें थी उससे आगे बढ़कर जो हमने गहराई दिखाई है, जहां सिर्फ कुछ खेलों पर निर्भर रहने के बजाय हमारी टीम्स ने कई अन्य खेलों में जो मेडल जीते हैं, इससे देश में बढ़ते हुए स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: पॉजिटिविटी फैलता है। हम सबको पता था कि बॉक्सिंग में कुछ अच्छे अंजाम आएंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट वेटलिफ्टिंग से आएंगे। हमेशा ये पीछे रह जाते थे क्योंकि हम शूटिंग के 15-20 मेडल देख लेते थे या फिर कुश्ती में 10 मेडल या 12 मेडल आ जाते थे, तो वो हमेशा पीछे हो जाते थे। उनके मेडल्स यही रहते थे, 7 या 8 मेडल होते थे उनके, लेकिन बाकी खेल आगे हो जाते थे। अब की बार फोकस उन पे रहा, सारा ध्यान उन पे रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव साइन ये है कि पिछले 10-12 साल में भारत सरकार बहुत पैसा लगाई है खेलों में और उन्हें प्रोत्साहित करेगा और ज्यादा पैसा लगाने में। 3 या 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है खेलो इंडिया मिशन को लेके, बहुत पैसे लगेंगे स्पोर्ट में और मुझे लगता है कि हर बच्चा इस देश में स्पोर्ट खेलने लायक हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद रहेगी कि हम खेलेंगे तो कुछ पैसा बना सकते हैं।
1: आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एशियन गेम्स अब सिर्फ 1.5 महीना दूर है, जहां पर चीन, जापान, साउथ कोरिया, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वहां के बड़े बड़े नाम होंगे और इन बड़े बड़े नामों के साथ भारतीय एथलीट्स का मुकाबला होगा, तो ग्लासगो में जो हमारे एथलीट्स की परफॉर्मेंस है उन्हें देश और खेलों की संख्या के हिसाब से इस बड़े स्टेज के लिए तैयारी में कितनी मदद मिली है?
0: मदद तो बहुत मिलनी चाहिए, लेकिन आप एथलेटिक्स में देखेंगे कम से कम 30 मेडल आएंगे आपको एशियन गेम में, और शूटिंग जब वापस आ गया है और हमारे कुछ पहलवान मेडल लाएंगे तो मुझे लगता है फिर एक बार हम 100 मेडल के आसपास आएंगे, 100 भी पार करेंगे। पिछले बार 100 पार कर गए थे हैंगजो में, और जापान में जब जाएंगे मुझे लगता है कि 100 मेडल के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं भारतीय टीम से। तैयारियां सही रही है, कुछ अच्छे एथलीट्स विदेश में ट्रेन कर रहे हैं, कुछ को अपने घर में अच्छी शिक्षा मिल रही है, ओवरऑल पॉजिटिव है और मुझे लगता है एशियन गेम्स में भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और 2 महीने बाद हम शायद सेलिब्रेट करेंगे कि एशियन गेम में अच्छा प्रदर्शन रहा।
1: जी राजारमन, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ इस विषय पर अपनी जानकारी साझा की, अपने विचार साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मेहताब आलम से आलमी खबरें सुनिए। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क जकरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कानकरी और अहम मादनियात के शोबों में अपनी कलीदी शराकतदारी को तौसी देने से इत्तेफाक किया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताशकंद के ठोस मौकफ की सताइश की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इत्तलात को गलत बताया है। और कोरिया मास्टर 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत ने अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। अब खबरें तफसील से। मवासलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो आर्जी तौर पर हटाए जाने के मामले पर नई दिल्ली में मेटा के अहदेदारों से बात की। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने वजीर आजम की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा इंडिया की नुक्ताचीनी की। मीटिंग के बाद नामाधिकारों से बात करते हुए जनाब दुबे ने कहा कि कंपनी कमेटी ने इस हरकत के लिए मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दफा 79 के तहत उन्हें हासिल कानूनी तहफ्फुज वापस लिया जाना चाहिए। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत के दौरान अहम मादनियात, कानकनी, तिजारत, तवानाई, बुनियादी ढांचे, दिफा और तालीम के शोबों में ताउन को मजबूत बनाकर अपनी स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजीद उसत देने पर इत्तेफाक किया। यह बातचीत उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा बख्तियार सईदोव ने भारत के चार रोजा सरकारी दौरे के दौरान हुई, जिन्होंने वजीर खारजा डॉ जयशंकर से मुलाकात की। उज्बेकिस्तान के वफद का खैर मकदम करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि उज्बेकिस्तान भारत के वसी हमसाया खित्ते का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील अरसे से कायम तारीखी, सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात को उजागर करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में बाहमी ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हुए हैं और इनका दायरा तामीरात, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तवानाई, सेहत और तालीम समेत मुताबिक शोबों तक फैल चुका है। वजीर खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक अब कानकनी के शोबे बिलखसूस अहम मादनियात और नायाब जमीनी मादनियात में बाहमी ताउन को मजीद उसत देने के ख्वाह हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 1 अरब अमरीकी डॉलर की दोतरफा तजारत का जिक्र करते हुए उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आने वाले वर्षों में दोनों ममालिक के दरमियान इकतसादी तबादले में नुमाया इजाफा होगा। डॉ जयशंकर ने 2026 में भारत की ब्रिक्स सदारत के दौरान भारत के इकदामात की हिमायत पर उज्बेकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने 2027 से 2029 की मुद्दत के लिए गैर वाबस्ता तहरीक की सरबराही के लिए उज्बेकिस्तान की उम्मीदवारी की हिमायत का भी इजहार किया। जम्मू कश्मीर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़िद होने वाली यौम आजादी की असल तकरीब की सदारत करेंगे और सलामी लेंगे। जनरल इंतजामिया महकमे की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर्स को जारी किए गए ऐलानिये के मुताबिक वजीर आला मौसम गर्मा की राजधानी श्रीनगर में तकरीब की क़यादत करेंगे। तफसीलात के मुताबिक नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू में होने वाली यौम आजादी की मरकजी तकरीब में सलामी देंगे, जबकि सकीना मसूद ईटू अनंतनाग की तकरीबात की सदारत करेंगी। काबीना वजीर जावेद राणा पूंछ में, जावेद डार बारामूला में और सतीश शर्मा कठुआ में यौम आजादी की तकरीब से सलामी लेंगे। वजीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, जिन्हें काबिनी वजीर का दर्जा हासिल है, अपने आबाई जिला कुपवाड़ा में मुनक़िद होने वाली यौम आजादी की असल तकरीब से सलामी लेंगे। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक बादल फटने के कम 35 वाकयात पेश आ चुके हैं, जिनमें तकरीबन 31 अफराद की मौत हो चुकी है और घरों, सड़कों, पुलों और सरकारी बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जम्मू के हमारे नामानिगार के मुताबिक सरकारी इदादो शुमार से मालूम होता है कि यकुम जून से जुलाई के वस्त तक बादल फटने के कम 22 वाकयात दर्ज किए गए, जबकि जुलाई के दूसरे निसफ और अगस्त के आगाज में मुसलसल मूसलाधार बारिश के सबब मजीद

रेडियो मिर्ज 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क जकरबर्ग से मुआफी का मुतालबा किया है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कानकुनी और अहम मादनियात के शोबों में अपनी करीबी शराकतदारी को तौसी देने से इत्तफाक किया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताशकंद के ठोस मौकिफ की भी सताइश की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इतलात को गलत बताया है और कोरिया मास्टर 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत ने अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

0: देख हमें आवाज न देना, हमने आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से साथियों आवाज तो दी है और ये खूबसूरत सा गीत अमरदीप फिल्म जो 1958 में आई उसका एक बेहद ही सदाबहार युगल गीत रहा जिसे मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया। राजेंद्र कृष्ण ने इसके गीत लिखे थे और संगीत सी रामचंद्र ने दिया था। इस खूबसूरत गीत को आज भी जब हमारे श्रोता साथी सुनते हैं तो उनका दिल झूमने पर मजबूर हो जाता है। और आज की हमारी ये खूबसूरत फिल्म जो है आकाश अमरदीप, इसकी जानकारी हम आपको देंगे अपने एक ही फिल्म से के कार्यक्रम में, लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं ये संदेश।
1: आज तो पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी, पिज्जा पार्टी। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: वेलकम बैक साथियों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर और आपका पसंदीदा कार्यक्रम चल रहा है आज का एक ही फिल्म से, और आपके साथी हूँ मैं मनीषा। तो आप हमें कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये बताना बिल्कुल ना भूलिए, और ये बताने के लिए जो रास्ता है आपके पास वो है हमारा मेल indraprasthdelhi@gmail.com, iprradiodelhi@gmail.com। आपको इस पर हमें बताना है अपने संदेश भेज करके आपको क्या जानकारी और चाहिए इस फिल्म से जुड़ी हुई, और फिल्म के ये गीत आपको कैसे लग रहे हैं जो आज के कार्यक्रम में शुमार है। शिवाजी प्रोडक्शन की शुरुआती हिंदी प्रस्तुति थी उसमें से एक ये फिल्म रही। फिल्म के छायांकन की जिम्मेदारी संभाली थी प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर ए विंसेंट ने, और कहानी में याददाश्त खो जाने के यानी स्मृति लोप के विषय को दर्शाना उस दौर की जो लोकप्रिय और संवेदनशील पटकथा का एक अंदाज था, जो शैली थी उसी का ही एक रूप था। तो चलिए हम सुनते हैं इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा नगमा जो आपको जरूर पसंद होगा। याद दिलाते हैं उस दौर की आपको।

निश्चित रूप से अमरदीप का ये खूबसूरत सा गीत हमारे बहुत सारे सुनने वाले श्रोता साथियों को पसंद है और हमारे बहुत सारे सुनने वाले लिसनर्स जो हैं उनके संदेश हमारे पास आ चुके हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं नितेश देवांगन जी, उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे एक श्रोता साथी जिन्होंने लिखा है कि एक फिल्म की जो कहानी है और उसके जो गीत हम सुनते हैं तो सच में हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल की फिल्मों से हमें वो आनंद नहीं मिल पाता है। और ये लिखने वाले हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। और एक ही फिल्म सुनने वाले हमारे अगले श्रोता साथी हैं इस कार्यक्रम को और उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, अमरदीप की जानकारी अच्छी लग रही है। और ये श्रोता साथी हैं हमारे दिग्दर्शन गौर मेरठ कैंट से और इनके साथ हैं कवि।

0: सकता गॉड। बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और हमारे अगले श्रोता साथी हैं धर्मेंद्र छीपा, इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और ये जानकारी भी अच्छी लग रही है। और 1958 की फिल्म का वो दौर इन्हें याद आ गया है और बोलते हैं कि इसमें जुड़े हुए जो किस्से, कहानियां और नगमे हैं, ये इस कार्यक्रम के द्वारा ही हम बेहतर तरीके से आनंद उठा पाते हैं, वरना आजकल पुराने गीत कहाँ सुनाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने सच कहा कि पुराने गीतों के लिए, इसलिए हम आपके लिए ऐसे कार्यक्रम और ऐसे गीतों की माला लेकर आते हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोम दत्त हैं, ये हैं पटियाला पंजाब से, इनके साथ हैं ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। बहुत शुक्रिया। और कमलकांत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कार्यक्रम सुनते रहिए, कार्यक्रम की जानकारी लेते हुए। और चूंकि हम आज की फिल्म के बारे में आपको बता रहे हैं, अमर दीप, और ये फिल्म 1958 में आई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में हमें नजर आए थे देवानंद, अशोक के रूप में वैजयंती माला थी जो अरुणा के किरदार में थी, पद्मिनी थी रूपा के किरदार में, और प्राण प्रमुख भूमिकाओं में दिखे, जिसकी कहानी एक संपन्न घराने की युवती अरुणा से शुरू होती है और वो अपने गुस्सैल और अंकुश में कसने वाले मंगेतर यानी कि प्राण से बचने के लिए अपना घर छोड़ देती हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है अशोक नाम के युवक से, जिससे आगे चलकर अरुणा को प्रेम हो जाता है, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से अशोक की याददाश्त चली जाती है और फिर यहीं से कहानी भावनाओं और संघर्षों के सैलाब के साथ आगे बढ़ती है। तो चलिए हम सुनते हैं फिल्म का अगला गीत।
1: ऐसे इनकार नहीं और देने को तैयार नहीं, ये ऐसी चीज है भाई, लेने से इनकार नहीं देने को तैयार नहीं, इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार नहीं।

0: यार नहीं, इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार नहीं, जो पैसे का यार नहीं।
1: अभिनेता देवानंद अपने सहज संवेदनशील और आकर्षक अभिनय के साथ अशोक के किरदार में इस फिल्म में भावनात्मक ताना बाना बुनते हुए नजर आते हैं। वहीं अभिनेत्री वैजयंती माला अरुणा के रूप में अपने आत्मसम्मान का परिचय देती हैं और प्रेम के दृढ़ता

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत रही दोस्तों संगीतकार सी रामचंद्र का संगीत और राजेंद्र कृष्ण के बोल। भले ही ये फिल्म मुख्य धारा की चर्चाओं में कम रही, लेकिन फिल्म का संगीत संगीत प्रेमियों को आज भी रिझाता है। अगर अमरदीप के गीतों की सूची बनाई जाए तो उसके गीत के बोल आज भी उतने ही ताजा महसूस होते हैं। फिल्म का हर गीत कहानी को आगे बढ़ता जाता है। यही उस दौर के संगीत की सबसे बड़ी खूबी रही।

सच्चे दोस्तों के जीवन की असल रोशनी धन से नहीं अपनेपन से आती है, इसीलिए फिल्म अमर दीप ऐसा दीप जलाती है जो दिलों में सदा के लिए अमर हो। दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि हिंदी सिनेमा की गरिमा, मधुर संगीत, उत्कृष्ट अभिनय और भावनात्मक कहानी का आनंद लेना है तो अमर दीप जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म तेज घटनाक्रम से नहीं बल्कि अपने पात्रों, अपने संवाद, अपनी कहानी और अपने गीत संगीत से दर्शकों के मन में जगह बनाती है। भले ही अपने दौर की बड़ी व्यावसायिक फिल्मों में ये शामिल नहीं थी, लेकिन फिल्म की कलात्मकता और संगीत इसे हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की ओर ले जाते हैं और ये फिल्म यादगार कृतियों में शुमार होती है।

आशा करते हैं एक ही फिल्म से के इस सफर को आपने भी जिया होगा। आज फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा के एक और सुनहरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए एक ही फिल्म से के इस कार्यक्रम से मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेट 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप पंजाबी में समाचार सुनेंगे।
1: आज के 50 मिनट ते उर्दू खबर सुनोगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं

0: मंगल मिलन कहा जाता है आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुई। वजीर आजम मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दाखिला राजनाथ, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर और दीगर रहनुमाओं ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। गुज़श्ता मीटिंग 28 जुलाई को हुई थी। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है, क्योंकि महानदी और दीगर बड़े दरियाओं का पानी मुसलसल कम हो रहा है। इसके बावजूद सैलाब से शदीद तौर पर मुतासर गांव में हजारों अफराद अब भी पानी भर जाने और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आइंदा दो दिन के दौरान मजीद बारिश की वार्निंग जारी की है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में सैलाब के बाद की सूरत हाल लगातार बेहतर हो रही है, क्योंकि पीर की रात से महानदी दरिया का पानी कम होना शुरू हो गया है, जिससे जगत सिंहपुर जिले की कई गांवों को जज़्बी राहत मिली है। ताहम नशीबी इलाकों से पानी मुकम्मल तौर पर न निकलने के बायस बहुत से कुंबे अब भी बेघर हैं। मौसमियात के महकमे ने रियासत के 7 जिलों में शदीद बारिश के लिए वार्निंग जारी की है और आइंदा दो दिन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने की पेशगोई की है। मयूरभंज जिले में सबसे ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर उदयनिधि स्टालिन को उनके एक मुतनाज़े बयान पर पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई कल डीएमके के किसानों की एहतजाजी रैली में कावेरी आबी तनाजों पर उनकी तकरीर के बाद की गई है। ये मामला थंजौर की एक खातून की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसमें खातून ने इल्जाम लगाया कि उनकी तकरीर में खवातीन के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में बढ़ती हुई बदामनी के दौरान मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी जेएएसी ने आज इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने बाग जिले में निहत्ते शहरियों पर बराह रास्त फायरिंग की और उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी ने यह दावा एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जमीनी सतह के मनाजिर की वीडियो जारी करते हुए किया। कमेटी ने यह भी इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने मुजफ्फराबाद जिले के मकदी इलाके में शहरियों की मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। ताबनाई हुरमुज में एक तजारती जहाज पर फिर से हमले और बहरे अहमर में एक तेल टैंकर का रास्ता बदले जाने के बाद दुनिया में तवनाई की सप्लाई पर फिर खतरा मंडराने लगा है। एक बार बरदार जहाज को अबनाए हुरमुज से गुजरते हुए निशाना बनाया गया। बरतानिया के बहरी तजारत से मुतालिक इदारे के मुताबिक इस जहाज को ओमान में अल खसाब के लगभग 20 बहरी मील शिमाल मशरक में निशाना बनाया गया और उसने एक हंगामी पैगाम भेजा। सरकार ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो को मनगढ़ंत करार दिया, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पुराने सिक्कों की नुमाइश के दौरान सरकार के बाख्तर खरीदारों की तौसीफ करते हुए दिखाया गया है। बैडमिंटन में भारत के तुषार सुवीर आज कोरिया मास्टर 2026 से बाहर हो गए और क्वालिफाइंग मैच में जापान के शोगो ओगावा से हार गए। बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 टूर्नामेंट आज जनूबी कोरिया के शहर आसान में शुरू हुआ, जो इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। खवातीन के डबल्स में प्रिया कोंजेन गम और श्रुति मिश्रा, जबकि मर्दों के डबल्स में कृष्ण प्रसाद गर्ग और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय आज अपनी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे। आखिर में खास खबरें एक बार और। कमीशन मेंबरों की तरफ से मुख्तलिफ मामलात पर दोनों ऐवानों में रुकावट डालने की वजह से पार्लियामेंट में तातील जारी है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, क्योंकि बड़े दरियाओं के पानी की सतह कम हो रही है। तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर उदयनिधि स्टालिन को मतनाज़े रिमार्क की वजह से पुलिस तहवील में ले लिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाग जिले में निहत्ते अफराद पर पाकिस्तानी फौज के गोली चलाने से

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाघ जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
2: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक

0: विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
1: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले एमएसएमई की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
2: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विश्वास बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
2: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
3: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 33 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुधीर कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
5: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज़ दरमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुस जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार यह घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर, वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और आप जानते हैं कि ये वक्त किस प्रोग्राम का है। जी हाँ, एक ही कलाकार।

0: चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आज हम उस महान कलाकार को जिनकी आवाज आज भी हर दिल की धड़कन में बसती है, जिनकी हंसी में शरारत थी, जिनकी उदासी में गहराई थी और जिनकी गायकी में भावनाओं का अथाह समंदर था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के अमर गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक और बेमिसाल मनोरंजनकर्ता किशोर कुमार, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जी 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में इनका जन्म हुआ था। ढेर सारी बातें होंगी और इन्हीं के गीत खूबसूरत से आप तक पहुंचाऊंगी, और आप भी सफर में हमेशा की तरह हमारे हम सफर बन सकते हैं मेल के जरिए। मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। तो बस बन जाइए इस खूबसूरत से सफर में हमारे हम सफर।

जी हाँ, आज भी हम उतना ही प्यार करते हैं इस खूबसूरत सी आवाज को जो उस दौर में करते थे। आभास कुमार गांगुली जी, यही नाम था किशोर कुमार का, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। अशोक कुमार और अनूप कुमार पहले से ही फिल्मों में थे, ये दोनों इनके भाई हैं, लेकिन किशोर दा ने अपनी अलग जगह बनाई और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। कहते हैं कि किशोर कुमार ने कभी औपचारिक रूप से संगीत की शिक्षा ली ही नहीं, लेकिन उनकी आवाज में जो जादू था वो सीधे दिल तक पहुंच जाता है, जो महसूस कर रहे होंगे आप इन गीतों को सुनकर। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत इनकी आवाज में।

0: बात है।
1: फिल्म चलती का नाम गाड़ी, जिसमें ये तीनों भाई नजर आए थे। किशोर कुमार सिर्फ गायक नहीं थे, वे पूरे के पूरे मनोरंजन का नाम थे। रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी शरारतें और उनके जो अनोखे अंदाज के जो किस्से हैं, वो आज भी मशहूर हैं। कभी योडलिंग, कभी हंसी, कभी दर्द, हर रंग उनकी आवाज में सुनाई देता है। 1969 में एक फिल्म आई थी, नाम था आराधना। उनकी गायकी इस फिल्म से नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इस फिल्म के गीत आपको याद होंगे, रूप तेरा मस्ताना, जिसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। फिलहाल तो हम आपको ये वाला गीत सुनवाते हैं, उसके बाद इसी गीत से जुड़ा एक किस्सा भी आपसे शेयर करेंगे। सुनिए इस खूबसूरत से गीत को।

किशोर दा का गाया ये गाना जो कि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था, ये गाना 3.5 मिनट का था और आपको बता दूं कि ये सिंगल शॉट में शूट किया गया था। स्टार्स को सिर्फ ये समझाया गया था कि उनको क्या करना है, ना उनको वक्त दिया गया रिहर्सल करने का और ना ही इस गाने के ज्यादा टेक हुए। गाना शूट किया और उसके बाद इस गाने ने धमाल मचा दिया। शक्ति सामंत निर्देशित फिल्म आराधना में किशोर साहब ने सिर्फ 3 गाने, कुल 3 ऐसे गाने गाए थे जिसमें था एक सपनों की रानी, कोरा कागज था, ये मन मेरा और तीसरा था रूप तेरा मस्ताना। ये गीत इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि किशोर दा को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और यहीं से उनके स्टारडम की भी शुरुआत हुई थी।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक अनेक सितारों की आवाज बनकर दर्शकों का दिल जीता। हर अभिनेता के व्यक्तित्व के अनुसार वे अपनी गायकी का रंग बदल देते थे।

0: फिल्म मंजिल से अभी आप एक खूबसूरत सा गीत सुन रहे हैं। अगर खुशी का गीत हो तो किशोरदा, अगर प्यार का इजहार हो तो किशोरदा, और अगर दिल टूटने की कहानी हो तब भी किशोर कुमार। किशोर कुमार को प्रकृति और अपने जन्म स्थान खंडवा से बहुत लगाव था। वे अक्सर कहा करते थे कि एक दिन वे वापस खंडवा जाकर सुकून की जिंदगी बिताएंगे। 70 और 80 का दशक किशोर कुमार के नाम रहा। लगभग हर बड़े संगीतकार ने उनकी आवाज का भरपूर उपयोग किया और उन्होंने हजारों गीतों को अमर बना दिया। किशोर कुमार जितने मस्त मौला थे उतने ही संवेदनशील भी थे। यही कारण है कि उनके दर्द भरे गीत आज भी लोगों की आंखें नम कर देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो अगला गीत हमने लिया है वो गीत है जिसने भी धमाल मचाया था फिल्म डॉन से, तो इस गीत को हम कैसे भूल सकते थे, सुनिए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आह

0: ओ खई के पहल बनाओ रसबाला, खुली जाए बंद अकल का ताला।
1: आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच गए हैं। दादा बाबू रोड गिरीहिट झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान साइमा जी परिवार के साथ हमारे साथ हैं। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित यशु निरंजन सौम्या हमारे साथ हैं। गुरनौर से आदिल कमर तस्दीक अली जी हमारे साथ हैं। मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति जी पदमपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार देवानगन दुर्गा प्रसाद पराग पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। अमर रमेश कुमार खत्री जी हमारे साथ हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र जी पर कपिल जी हमारे साथ हैं। बटिंगखेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली जी हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा जी जुड़े हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ हैं। चिरमिरी कुलासिया कार्ड से इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ जी हमारे साथ हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन बीना आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक अली खान हमारे साथ हैं। संदीप मक्कर जी जालंधर पंजाब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और ये संदेश हमारे पास कवि रेडियो श्रोता संघ डोली लोहारा से अजय देव तुषार डॉली बेबी पूजा जी का है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत परवीन शेनवास सरफराज और परिवार के सभी सदस्य हैं। वीरन गांव गुजरात से अजीत भापसर प्रमीला जी हमारे साथ हैं। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी और नंदा बोखड़े जी जुड़े हुए हैं। अगला संदेश जो है वो गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी जी का है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन अपार जी जुड़े हुए हैं। और सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी शांति नगर सोनीपत से जुड़े हुए हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारे साथ हैं। खरगोन से मास्टर अशोक वर्मा अर्चना अनुज और आयुषी जी हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेरी से मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम अशफाक और अफरीन जी का आया हुआ है। और आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे सफर में हम सफर बने हैं। कुछ और भी संदेश हैं जिन्हें हम कुछ

में शामिल करेंगे। फिलहाल आपसे हम चलते चलते यही कहेंगे कि आवाजें समय के साथ पुरानी हो जाती हैं, लेकिन कुछ आवाजें हमेशा के लिए अमर भी हो जाती हैं। किशोर कुमार उन्हीं अमर स्वरों में से एक हैं। उनकी गायकी ने हमें हंसाया, रुलाया, प्यार करना सिखाया और जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज भी दिया। तो अब इन्हीं के साथ कहने के लिए तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं किशोर दा के जो मेरा मन कर रहा है आप तक पहुंचाऊं, लेकिन वक्त की पाबंदी है। फिलहाल एक और मैंने खूबसूरत सा गीत चुना है किशोर दा की आवाज में, उस गीत को सुनिएगा और उसके बाद फिर किसी मोड़ पर आपकी और हमारी मुलाकात होगी। और हाँ, आपसे बता दूं कि आप 3 बजे का जो प्रोग्राम है उसको सुनना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम आपके लिए ऐसे गाने चुन चुन के लेकर आते हैं जो अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। तो फिर आपसे मैं अनुमति लेती हूँ, इस खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जाती हूँ।

0: मेरे एक 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मेहताब आलम से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाग जिले में निहत्ते अफराद पर पाकिस्तानी फौज के गोली चलाने से बेचैनी और बढ़ गई है। अब नए हुरमज में जहाजों पर फिर से हमले की वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग खत्म कराने से मुतालिक अमन बातचीत पर गैर यकीनी बढ़ गई है। जनूबी कोरिया में शदीद गर्मी पड़ रही है जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती और वहां दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। आज चीते के बैन अक्वामी दिन के मौके पर भारत ने इनके तहफ्फुज़ के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया है। और आसान में कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान के कब्जे वाले

0: कल दर्ज हरारत 41.2 रिकॉर्ड किया गया था। चीते को बचाने के बैन अक्वामी दिन के मौके पर भारत ने इनको बचाने और तहफ्फुज़ के लिए बहुत से इकदामात का ऐलान किया है। इन इकदामात में इन चीतों के लिए महफूज पनागाहें बनाना, जंगलाती राब्ते बहाल करना, साइंसी अंदाज में इनकी देखभाल और निगरानी और उन्हें बचाने के लिए मकामी अफराद को अख्तियार देना भी शामिल है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली से मुतल्लिक मौसमियात के महकमे ने आज आसाम, मेघालय, मगरबी बंगाल में हिमालय के जैली खित्ते और सिक्किम में तेज से इंतहाई तेज बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक अंडमान निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, साहली कर्नाटक, झारखंड, केरला, माही और कर्नाटक के जनूबी अंदरूनी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक इसी तरह के हालात रह सकते हैं। खबर मिली है कि इथोपिया के अम्हारा खित्ते में शदीद बारिश की वजह से मिट्टी का टोदा गिरने से 14 अफराद हलाक और 7 दूसरे जख्मी हो गए। बहुत से अफराद लापता बताए जाते हैं और उनकी तलाश जारी है। मकामी इंतजामिया की मवासलाती दफ्तर के मुताबिक आफात से निपटने वाले मकामी इदारे के माहरीन की टीमों को इमदादी और बचाव कामों में हाथ बटाने के लिए तैनात किया गया है। नौजवानों की उम्र और खेलों के मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में तमगा जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। तमगा जीतने वालों में सोने का तमगा हासिल करने वाली अनहद सिंह और कांस्य का तमगा जीतने वाले भारतीय मर्दों की जूनियर टीम के आर्यावीर दीवान, यूषा नफीस और गुरुवीर सिंह शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डॉ मांडविया ने नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि वह अपनी हालिया कामयाबी को एक तवील सफर की शुरुआत समझें, क्योंकि एशियाई खेलकूद 2026 और ओलंपिक गेम्स 2028 आने वाले हैं। 18 साल अनहद सिंह पिछले हफ्ते कनाडा में मुनक्किदा आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। इस मुकाबले में यह उनकी 5वीं शिरकत थी और आलमी चैंपियनशिप में यह उनका दूसरा तमगा है। अमरीकी छत्र डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमरीका के साथ मुआहदा करने के लिए एक आखिरी मौका दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान पर एक मनसूबाबंद हमला उस वक्त मुअख्खर कर दिया गया जब ईरान और खलीजी मुल्कों ने सिफारतकारी जारी रखने की अपील की। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान पर एक बड़ा हमला करने के लिए तैयार था, ताहम सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त मौसूल होने के बाद यह कार्रवाई मुअख्खर कर दी गई। जनाब ट्रंप ने मजीद कहा कि अबनाए हुरमुज को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने के लिए बातचीत जारी है और कल तक इसके मुकम्मल हो जाने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि यह पहले मरहले की बातचीत का हिस्सा है, जबकि दूसरे मरहले में ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने पर तवज्जो दी जाएगी। दूसरी तरफ ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बाग़ची ने अमरीका के साथ बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि ईरान अमरीका के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं कर रहा है। बैडमिंटन में भारत के तुषार सुवीर आज कोरिया मास्टर 2026 से बाहर हो गए। वो क्वालिफाइंग मैच में जापान के शोगो ओगावा से हार गए। भारत की मर्दों की जोड़ी कृष्ण प्रसाद गर्ग और पृथ्वी कृष्णामूर्ति राय ने इफ्ताहिया दौर का अपना मैच जीत लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार और। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाग जिले में निहत्ते अफराद पर पाकिस्तानी फौज के गोले चलाने से बेचैनी और बढ़ गई है। अब नए हुरमुज में जहाजों पर फिर से हमले की वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग खत्म कराने से मुतालिक अमन बातचीत पर गैर यकीनी बढ़ गई है। जनूबी कोरिया में शदीद गर्मी पड़ रही है जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती और वहां दर्ज हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। आज चीते के बैन अक्वामी दिन के मौके पर भारत ने इनके तहफ्फुज़ के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया है और आसान में कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। मेरी पसंद इस प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान नहीं।

दोस्तों, किशोरदा का असल नाम आभास कुमार गांगुली था और वो अशोक कुमार के छोटे भाई थे। बगैर किसी क्लासिकी मौसीकी की तालीम के, उसके बावजूद एक अपना अलग अंदाज, जिंदा दिल अंदाज और सहराफी आवाज के दम पर हिंदुस्तानी मौसीकी की दुनिया में एक अलग नाम अपना बनाया।

शुरुआत में वो गुलकार बनना चाहते थे, लेकिन उनके फिल्मी करियर का आगाज हुआ अदाकार के रूप में। ब्रेक मिला जिद्दी फिल्म में, जो सन 1948 में मंजरेआम पर आई थी, उसमें उन्हें गाने का मौका मिला। और आप देखें कि बगैर किसी शुरुआती तालीम के, मौसीकी के, फिर भी उनकी आवाज का कोई सानी नहीं था। उन्होंने गायकी के अलावा बेहतरीन अदाकारी, फिल्म हिदायतकार भी थे और मौसीकी भी तरतीब दी। और यही वजह थी कि अपनी सहर आफरी आवाज और नाखों के लिए उनको 8 बार फिल्म फेयर एजाज से नवाजा गया। और खंडवा से बहुत मोहब्बत थी उनको, इश्क था। वो हमेशा कहते थे, दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में।

0: सवरिया ओ सवरिया ऐ आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: अगोरी अगोरी बढ़ के बुदन चीर भी टकर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय

हो चल पीछा छोड़ हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनखट हो झटपट पहले तो बाधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे ना।

0: गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया।
2: ये था खराज अकीदत इस अजीम गुलकार को जिनको हम किशोरदा के नाम से जानते हैं। मेरी पसंद प्रोग्राम में ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम अदबनुमा।
3: अदबनुमा प्रोग्राम के तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

श्री रसकोता हूं, तबस्सुम बनके मैं जिंदा रहूंगा।

Michel Bocuse, वतन पर जानी सारी का ये जज्बा, वतन पर

शिरस किया है। दिनों में शक्ति गुंजाए से जब तक, दिलों में शक्ति गुंजाए से जब तक, ताल्लुक कोई मुस्ताह कम न होगा, ताल्लुक कोई मुस्ताह कम न होगा। गजल

शीरज करता हूं, खुलेंगे जब अलम इंसानियत के, खुलेंगे

और गजल का मतलब, ऐसा मंजर कभी तो पाऊं मैं, ऐसा मंजर

0: में अच्छी हो। जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो हर शय अच्छी लगने लगती है। मैं इसी तरह तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आरिफा, मेरी शरीके हयात बनोगी? इनायत के हाथों में एक अंगूठी थी जो वो मेरी तरफ बढ़ा रहा था। तो फिर आतिरा? मैंने हड़बड़ाहट में पूछा। आतिरा? आतिरा क्या? इनायत ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी शादी तो उससे होने वाली है, ऑफिस में सबको पता है। ये बात सच है कि हमारे घर वाले एक दूसरे को जानते हैं और इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ आरिफा। जब से मैंने तुमको देखा है तब से मेरी आंखों में तुम ही समाई हुई हो। मैंने अपने वालिदैन को तुम्हारे बारे में बताया है और वो राजी है। रहा आतिरा का सवाल, वो एक अच्छी दोस्त है और उसे तुम्हारे बारे में पता है। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, लेकिन मैं फौरन हाँ न कर सकी। मेरे कानों में आतिरा के गुण रोजी की आवाज में गूंज रहे थे। मैं बेयकीनी की हालत में इनायत को फटी फटी आंखों से देखते ही जा रही थी कि उनकी बातों का एतबार करूं या ना करूं, लेकिन इनायत के चेहरे की नूरानी चमक यकीन का एहसास दिलाने के लिए काफी थी। और न जाने कब मेरे हाथ इकरार में इनायत के हाथों में चले गए। उसने लम्स के एहसास से मुझे चौंका दिया।
1: आबे हयात, अभी आप मोहतरमा बीबी अविनाश से उनका यह अफसाना सुन रहे थे। और हज़्ब मामूल अब यानी कि वादे के मुताबिक एक गजल आप तमाम सामईन की समातों की नजर है। शहाब खान की आवाज में कलाम अमीर गजलबाश का है।

0: मंजूर
1: मंजूर काम तो बताइए।
0: जरा सोच तो लूं। हाँ। वो देखते हो वो।
1: हाँ हाँ
0: क्या
1: मुर्गी?
0: हाँ पकड़ लाओ
1: मुर्गी।
0: हाँ
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ, ये लीजिए।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। मदन मोहन की।

0: और ये है किशोर कुमार की आवाज में छुपा रुस्तम फिल्म का नगमा नीरज का लिखा हुआ, मौसीकी एस डी बर्मन की।
1: समल सुर पकड़ के

वाकई दोस्तो देश दी सेवा करन वाले ओ जेड़े योद्धा सन, जेड़े सूरमे सन, जेड़े देश लई बड़ी चंगी सोच रखदे सन, उन्हां ने जिंदगी दे विच अजिहे काम कीते कि अज असी उन्हां दीआं मिसालां अपनी आण वाली पीढ़ी नूं दे रहे हां। लंदन तो भारत परतन तो बाद इन्हां ने बॉम्बे नगर निगम दे विच सुधारक काम कीते, इतिहासिक योगदान पाया। जेड़ा बॉम्बे म्यूनसिपल एक्ट 1872 दा खरड़ा सी उन्हां ने आप तैयार कीता, इसे करके इन्हां नूं म्यूनसिपल गवर्नेंस दा पिता मां क्या जान लगा ते चार वारी ए मेयर भी चुने गए। दोस्तों साल 1890 दे विच कोलकाता दे विच छेवें अधिवेशन, कांग्रेस दे छेवें अधिवेशन दे विच इन्हां नूं राष्ट्रीय प्रधान चुनिया गया ते इन्हां दे भाषण अक्सर लोकां नूं लोक हित दी गल करन लई प्रेरित करदे सी। राजनीतिक हक्कां ते ब्रिटिश सरकार दीआं आर्थिक नीतियां दी तिक्खी आलोचना ए अपने तिक्खे ते त्रिशूल वर्गे शब्दां दे नाल करदे सन। नरम ख्याली इन्हां दे ख्यालां विच सी पर शब्दां दे विच इहो जिहा वेग सी कि सामने वाला सोचण लई मजबूर हो जांदा सी। इन्हां दा मनना सी कि संविधानक तरीके दे नाल, कानूनी बहस दे नाल ते शांति

0: ना मनुख ना, इंज ना कर। मेरे टाने ही तो मेरिया बावां ने, मेरे पत्ते मेरिया अखां ने, ते फुल मेरी औलाद ने। तेरे टहना कट्टन नाल मैं अनाथ अन्ना ते अपंग हो जावांगा।
1: जो मर्जी हो जे मैनू की, मैं इन्ना तनिया दा अपने घर लई वधिया फर्नीचर बनवावांगा, रोशनदान खिड़कियां ते दरवाजे लगवावांगा।
0: तू अपने स्वार्थ लई कई जीवां नाल जुल्म करेंगा मनुख। पंछियां दा मैं आसरा हां, किसे राहगीर दी मंजिल दा मैं पड़ा हां। महका भरिया खुशबोईयां दा मुफ्त खजाना हां मैं। तू इस खजाने दा लाभ क्यों नहीं उठाउंदा? बह जा मेरे वीर, मेरी छावें बह जा।
1: लाभ ही ता उठाउण आया बेवकूफा, तेरी पूरा पूरा लकड़ी मेरे घर दी सजावट बनेगी।
0: तेरी इस चाहत करके मेरी सजावट दा की बनेगा? कुदरत दा सारा दृश्य बदल जाएगा। जे वनस्पति मुक गई ताहे जगत भी मुक जाएगा।
1: वनस्पति ते रुख मनुख लई ता बने ने, की मनुख नू घर दी लोड़ नहीं? की घर विच वरते जान वाले बालन दी लोड़ नहीं? बेवकूफ दरखत, की मनुख ने आटा अच्छा ही अंदर लगाउणा है?
0: मैं एक कदों क्या मेरे वीर, जंगल ते रुख ता बने तुहाडी सेवा लई ने, पर फलदार रुखां नू कट के मनुखी सेवा तो क्यों वर्जदे पए हो? होर कई सुक्के ते कम आउण वाले दरख्त हन, मनुख उन्हां नू कट के अपनियां लोड़ां पूरियां कर सकदा है।
1: बल्ले ओए वड्डिया चलाका, कमजोर ते नकारा लकड़ी ला के की अपना कीमती घर दा सत्यानाश करां? मैं तेरे टाणे वड़ के लै जावांगा।
0: रहम कर, रहम कर, खुदा दे वास्ते मेरे ते रहम कर मनुख।
1: तेरे ते रहम करके अपने अरमाना दा गला घोट लवां? ए किवें हो सकदा, कोठी विच जदों तेरा बनिया फर्नीचर रखिया जावेगा तां मेहमान किन्ने खुश होणगे।
0: पर मैं ता दुखी हो जावांगा कि तू ऐ नहीं जानदा, जियो ते जीण दियो।
1: बहुती फिलोसफी ना झाड़, मैं बहुत तेरी चिड़चिड़ सुन चुकिया।
0: मैं ता बेबस हां, पर तू ताकतवर है, मेरे उत्ते जुल्म कर सकदा है। पर याद रखी है मनुख, जो दूजिया ले कबर खोदा है ओदे लई भी टोया तैयार हुंदा है।
1: अच्छा ये गल है, ले फिर।
0: ऐ जालम इंसान, तू पछताएगा, पछताएगा तू।

0: मैंने फिरा दिया, मेरा सब कुछ तबाह हो गया, मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरी हवेली डूब गई, मेरी पूंजी, मेरा कीमती सामान, सारे दशहरा नष्ट हो गया, मेरा इलाका हड़ा दिमार हिटा आ गया। हड़ा ने वो तबाही मचाई है कि सैकड़े मिला तक कुछ नहीं रहने देता, अनाज फसलां पशु सब डूब के मर गए। और मैं क्या करा, मैं भिखारी बन गया, मेरे को खाने कुछ भी नहीं रहा, मैं भुखा मर रहा, की खावा कितने जावा, हाय भुखना मेरा बुरा हाल हो रहा है, मैं अपने इस पेट की भुख कितना बुझावा, मेरे तेड़े कोई फलदार रुख होता तो मैं फल खा के ही अपना ढेर भर लेता, भुख हाय भुख।
1: मर मर हुण भुखा ही एदा ही, तेरे लिए एहो सजा है।
0: तू मेरी बेबसी का मुखा उड़ा पे टुंडे जिहा रुखा,
1: मेनू टुंड किने बनाया, तेरे वर्गे ही मनुख ने मेरा ये हाल कीता, जे मेरे फलां दा ओ मुल पौंदा तां मैं तेरी मदद करदा, पर हुण तां मैं आप ही नरक कट रहा ते तू भी भोग अपनी नरक भरी जिंदगी, तेनू खान नू कुछ नहीं मिलेगा इत्थे।
0: मैनू कोई राह दस, मैं इस पानी विचों निकल के कित्थे जावां।
1: राह हुण मैं तेनू केड़े राह पावां, सारे राह ते तू आप बंद कर लेने, जंगलां दी अन्ना धुंद कटाई ने हड़ां दा रस्ता साफ कर दिता, उन्हां नू कोई रुकावट ही नहीं रही, ये पानी हुण पिंडां शहरां नू बर्बाद नहीं करेगा ते होर कित्थे जाएगा।
0: मैं तेरे को बचा दा सुझाव पुछया, तेनु फिलासफी चाड़न लई नहीं कहा।
1: भई मैं कदों कहना कि तू मेरी फिलासफी सुन जां दुहाई पाई जा, हुण ते तेनू अपने कीते दी सजा भुगतनी पैणी है। तू नहीं बच सकदा।
0: हाय रब्बा मेरी मदद कर।
1: हां मार वाजा रब नू।

0: आए मर गया ही। मेरा शरीर चमड़ी के रोगों का पीड़ित है। मेरे पिंडे चो अग फुटदी पई है। अंगारिया का यह सेक मेरे अंदर मचिया होया। मेरे सारे शरीर चो बदबू आ रही है। कोई मेरे नेड़े नहीं बैठता। घर के मैंबर आस पड़ोसी मेरे को नफरत करते ने। कोई मेरे नेड़े नहीं टुकदा। मैं पीड़ नाल मर रहा। हाय मैं मर गया। हाय मैं मर गया।
1: मैनू पता सी, मैनू पता सी एक दिन तेरा एहो हाल होएगा।
0: पता सी तो फिर तू पहला क्यों नहीं दसिया?
1: दसिया सी मैं। खड़के दी चेतावनी दित्ती सी।
0: चेतावनी? कैसी चेतावनी?
1: याद कर मैं कह रहा सी कि जंगल कटे गए ता कार्बन डाइऑक्साइड दी मात्रा विच वाधा होएगा। कारखाने ते मोटर गड्डियां दा धुआं ओजोन दी पट्टी नूं पिघला देगा ते कैंसर वर्गे ते चमड़ी दे रोग होर फैलणगे।
0: पर मैनूं तां इह चेतावनी तूं नहीं दित्ती सी।
1: इसे मनुख नूं तां दित्ती सी मैं। उन्हें कदों सुनी सी? हुण ओहदा सिट्टा तां तैनूं ही भुगतना पैणा है।
0: मैनूं कोई उपराला दस।
1: पहला तां अपने पूर्वजां दी सजा भुगत। पर मरदे होए रौला पांदे जा कि जे जीना चाहुंदे हो लोको तां वणां नूं ना कट के प्रदूषण तो बचाओ करो। नहीं तां इहदे तो वड्डा खतरा आउण वाला है।
0: इस तो वड्डा होर केड़ा खतरा हो सकदा है?
1: इस नालों किते वड्डा खतरा। कन खोल के सुन लो। जे प्रदूषण एदा ही वधदा गया, कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीलियां गैसां वधदियां रहियां, तां आउण वाली पीढ़ी दी बहुत

कथा लोक रुख ते मनुख किन्नी सोहनी गल कही गई है ना इहदे विच कि जे रुख ही ना होणगे मनुख नूं कौण बचावेगा। ताही ता कविया ने शायरा ने रुखा नूं इन्ना अजीम थां दिता है अपनी शायरी दे विच अपनी सोच दे विच ताकि लोकां तक इह गल पहुंचाई जा सके। कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने कुछ रुख लगदे मामा कुछ रुख नूआ तियां लगदे कुछ रुख वांग परामा कुछ रुख मेरे बाबे वाकण पत्तर टामा टामा कुछ रुख मेरी दाढ़ी वर्गे चूरी पामा कामा। सो दोस्तो कथा लोक दे विच जिहड़ी कथा अज असीं सुनी रुख ते मनुख उहदा अंत किन्ना त्रासदीपूर्ण सी कि किस तरह मनुख बीमारियां दे विच घिरदा जा रहा है जे असी अपने चुर गिरदे दी जे असी अपने आस पास दी पर्यावरण दी संभाल ना कीती ते हालात बड़े माड़े हो सकते हैं। डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं होया लो जी असी लगाईए वध तो वध रुख सौण दे महीने दे विच तां कि साडे पंजाब दी धरती साडे भारत दी धरती इसे तरह हसदी वसदी रवे कुदरत मौलदी रवे ते रुख इसे तरह छां दे के फल फुल दे के साडी धरती नूं होर भी सोहना बनाउंदे रहण साडी धरती दा शिंगार करदे रहण।

लो जी दोस्तों, इस गीत की फरमाइश की सी राजपुरा तो हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह, जगसीर सिंह ते डॉक्टर परमवीर होरा ने। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चल रहा है प्रोग्राम नजराना, ते अज नजराना प्रोग्राम दे विच असी गल कर रहे हैं सौण दे महीने दी। वाकई जी सौण दा महीना बागां विच बोलण मोर वे, जां मैं नहीं सोहरे जाना गड्डी नूं खाली तोर वे, पर एदां नहीं हुंदा। जदों कंत वी नाल आ जांदा फिर सौण दे महीने दी होर वी खुशियां वध जांदियां, मेहंदी दा रंग गूढ़ा हो जांदा ते चूड़ियां दी खणक वी वध जांदी है। नीतू नच नच नच, नीतू हौली हौली नच, डिग पए ना गवांडियां दी कंध बलिए, तेरा गिद्दा सारे पिंड नू पसंद बलिए। बिल्कुल जी, हुण असी गल करदे हां अपने उन्हां दोस्तां दी जिन्हां ने श्री मुक्तसर साहिब तो सानू खत लिखिया है जी। सीताराम केसरी, सुखा सिंह, नीला सरां वाले, ए सारे सुनना चाहते ने जी एक प्यारा जा गाना पींग सरदूल सिकंदर होरां दी आवाज़ दे विच।

लो जी दोस्तों, इन्ना प्यारा प्रोग्राम असी हुने थी समाप्त करदे हां। उम्मीद करदे हां कि आज दा प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होगा। पसंद आया है ते खत जरूर लिखना प्रोग्राम देश पंजाब मार्फ स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी जलंधर। बाकी दे प्रोग्राम तुसी हुन सुनोगे आकाशवाणी जलंधर तो। कल सवेरे नवी सभा दे विच नवे प्रोग्राम लैके फिर तो हाजिर होवांगे। अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, जब रखा।

ले दे काकोरी रेलवे स्टेशन तो निकली 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन चेन खिंच के रोक लिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई विच अशफाक उल्ला खान चंद्र शेखर आजाद ते 6 होर साथियों की मदद नाल रेल गड्डी उपर तावा बोल के सारा खजाना लुट लिया गया। बाद विच अंग्रेज हकूमत ने क्रांतिकारियों की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दे कुल 40 क्रांतिकारियों उपर अंग्रेज हकूमत दे खिलाफ जंग छेड़न सरकारी खजाना लुटन ते मुसाफिरां दा कतल करन दा मुकदमा चलाया। इस मुकदमे दे फैसले दा दिन भी आ गया। जज वल्लों उही दमनकारी फैसला सुनाया गया जो अंग्रेज हकूमत दे हुक्मां दे अहम मुताबिक सी। फैसला सी राजेंद्र नाथ लाहड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान ते ठाकुर रोशन सिंह नूं सजाए मौत ते होर 16 क्रांतिकारी वीरां नूं काले पानी की सजा।

0: ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छुपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वो मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जायेगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों और बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत

करने को भी कहा। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डी वाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक लुढ़ककर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रूपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री मांडविया ने कहा कि 36,000 करोड़ रूपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापूल थोंगसांगना और चालू एम्पोन चारोइन केतमोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को सिद्धार्थ
4: और पूजा का प्यार भरा नमस्कार। सिद्धार्थ किसान वाणी में हम अपने श्रोताओं को खेती से संबंधित जानकारी तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उनके मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखते हैं।
3: जी हाँ पूजा, आज किसान वाणी के सफर में हमारे बीच खास विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे और जिनसे हम चर्चा करेंगे खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरह करें। और पूजा, हम अपने किसान भाई बहनों से ये भी साझा करेंगे मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह, साथ ही आपको बताएंगे मंडी का भाव। पूजा, भारत सरकार किसानों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है और किसान वाणी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो किसान भाई बहनों के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम, कीट एवं रोगों से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि पूजा, कई बार ऐसा होता था कि फसल जब खराब हो जाती है किसान की तो उसको बहुत घाटा होता था, तो ऐसे में ये योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है।
4: जी श्रोताओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर आपकी फसलों को नुकसान होता है तो पात्र किसान भाई बहनों को निर्धारित नियमों के अनुसार बीमा का दावा दिया जाता है।
3: और मुझे यहाँ पर ये भी अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि योजना के तहत

0: जो किसानों का प्रीमियम है उसे भी बहुत कम रखा गया है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी एवं व्यावसायिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम ही देना होता है, और जो बाकी प्रीमियम बचता है उसका वहन केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं।
1: ये तो बड़ी कमाल की बात है
0: जी।
1: और साथ ही साथ जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फसल का बीमा करा लेना चाहिए। इसका आवेदन बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत माध्यमों से किया जा सकता है। आवेदन के समय आपको अपना आधार नंबर, बैंक खाते का विवरण, भूमि और बोई हुई फसल की जानकारी उपलब्ध करवाना जरूरी होता है।
0: और पूजा, यहाँ पर एक खास बात यह है कि यदि बीमित फसल को किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो किसान को निर्धारित समय के भीतर इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों या बीमा कंपनी को देनी चाहिए ताकि दावा प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
1: बिल्कुल, इसलिए समय पर अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं और इस योजना का पूरा लाभ लें। और इस पर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो फिर अपने आसपास के कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, बैंक या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं।
0: और पूजा, साथ ही किसान भाई भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447, एक बार दोबारा सुन लीजिए, कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के व्हाट्सएप चैट बॉट नंबर 7065514447 पर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। खरीफ का मौसम हमारे देश की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि पौधों को सही समय पर, सही मात्रा में और संतुलित रूप से पोषक तत्व मिले। केवल उर्वरकों का अधिक प्रयोग ही समाधान नहीं है, बल्कि मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इससे उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहती है और साथ ही साथ खेती और अधिक लाभकारी भी हो जाती है।
1: जी हां श्रोताओं, खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तुलसाराम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम किसान वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहब, चर्चा का जो विषय है उसके अनुसार अपनी बातचीत को हम शुरू करते हैं। अक्सर किसान ज्यादा खाद डालने को ही अच्छी पैदावार का उपाय मानते हैं, क्या ये सोच सही है?
2: नहीं, ये किसानों का एक अपना बहुत ही गलत परंपरा या जिसको कहिए कि विचार है कि जितना फसल को आवश्यक हो उतना ही पोषक तत्वों को उसमें डालना चाहिए, और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सभी एरिया में पोषक तत्वों की आवश्यकता एक जैसी हो
1: जी।
2: जो हर खेत में या हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे उनकी आवश्यकता
1: बदल जाती है
2: और उसके अनुसार उनको प्रबंधन करना चाहिए। और इसके लिए किसान भाइयों को सबसे ज्यादा अपनी मृदा का सोइल हेल्थ कार्ड बनवा लेना चाहिए, और उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है स्टेट का, उससे या वहाँ पे जो केवीकेज है या जो ICR के संस्थान है या फिर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसमें काम करती हैं, वो मिट्टी की जांच करके उनको NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिन किसानों को लगता है कि उनको सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी है, तो वो उनका भी अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन सोइल हेल्थ कार्ड फ्री से बना के दिया जाता है, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, तो वो बनाना उनके लिए अति आवश्यक है। अगर वो फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग करेंगे तो हमारी जो फसलों की लागत है वो बढ़ती है और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होता है। इसमें आप जैसे नाइट्रोजन डालते हैं तो नाइट्रेट के रूप में सोइल के अंदर लीचिंग होता है, वो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट में लॉसेस हो जाते हैं तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट ही नहीं करते बल्कि ओजोन लेयर को डिप्लीट भी करते हैं, कुछ ये भी देखा गया है।
0: और डॉक्टर साहब, आपने भी बताया मृदा की जांच करानी चाहिए समय समय पर, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी की जांच किसानों के लिए कितनी आवश्यक है और इसे कितने अंतराल पर हमें कराना चाहिए?
2: मिट्टी की जांच बहुत

0: ही आवश्यक है। इसके बिना आज के समय में खेती करना कोई फायदे का सौदा हो ही नहीं सकता। लेकिन कितने अंतराल पे करवाए, ये एक बहुत बड़ा आपने प्रश्न पूछा है। इसके लिए लगभग ऐसा मानते हैं कि 2-3 साल के बाद में हमारे जो खेत है जहां हम काश्तकारी कर रहे हैं उसका फर्टिलिटी का जो स्टेटस होता है या कहिए कि पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, वो लगातार किस तरह की फसलें लेते हैं या उसके अंदर किस तरह के ऑपरेशन करते हैं किसान, या कितना हमारी सोयल बह रही है या बाहर से आ रही है, तो वो चेंज होती रहती है। तो से कम 3 साल के इंटरवल पे एक बार अगर उसको फिर से करवा ले तो बहुत ही बढ़िया रहता है।
1: डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सॉयल हेल्थ कार्ड है, जांच के लिए किसान को कहाँ जाना होगा?
0: सबसे पहले तो ये है कि जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं उनके पूरे देश में कवरेज है, हर स्टेट का है, केवीकेज हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, आईसीआर के अपने संस्थान भी हैं, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें काम करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो कहीं भी किसान अपनी सुविधा अनुसार इनसे मिल सकता है, इनसे मिल के अपनी मृदा की सैंपल और पानी के सैंपल उनको दे सकता है। तो उसके पास में एक अपना जो सॉइल का और पानी का ये रहता है कि हमारे यहाँ पे किस तरह का जो पानी है सिंचाई के लिए वो उपलब्ध है, और हमारी जो मृदा है उसका न्यूट्रिएंट या उसका पोषक तत्वों का स्टेटस क्या है, तो वो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने सॉइल टेस्टिंग के बारे में और सॉइल कार्ड के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। हम अपने श्रोताओं के लिए एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, ये विषय है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो हमारे सामने इस वक्त आता है डॉक्टर साहब, वो ये है कि हम अक्सर बात करते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, यानी कि एकीकृत रूप से अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन को एक समग्र विषय के रूप में लेकर चलें तो उसको किस तरह से हम देखते हैं। दरअसल अगर उसे हम आसान भाषा में समझाना चाहें तो वो क्या है और हमारे किसान भाई बहनों को उससे क्या लाभ मिल सकता है?
0: देखिए, जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसके अंदर हम करते क्या है कि उसमें जैसे हमारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर, और इन सब का जो हमारी सोइल के अंदर जिस पोषक तत्वों की हमारे पास सोइल हेल्थ कार्ड होता है जिनकी कमी होती है उसके अनुसार हमें कितना FYM या ग्रीन मैन्योरिंग या वर्मी कंपोस्ट या उसके साथ में सीड ट्रीटमेंट के रूप में बायो फर्टिलाइजर्स, या चाहे एजेटोबैक्टर है, फास्फोरस सोल्युबिलाइजिंग है, पोटास सोल्युबिलाइजर है, या माइकोराइजा है, या कुछ वाम वगैरह भी आती, तो उनका और प्लस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे आपका यूरिया, फास्फोरस, DAP या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनका एक समायोजन करते हैं कि ना उसको ज्यादा देते हैं ना कम देते हैं, ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और हमारी फसल भी एक कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा उत्पादन दे सके। इसलिए उनको एक समायोजित फॉर्म में हम लाते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो फर्टिलाइजर और ये सब का इंटीग्रेशन।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खरीफ मौसम में वर्षा अक्सर देखा गया है कि काफी ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा वर्षा होने की वजह से उर्वरकों के बह जाने की समस्या रहती है, तो इससे बचने के लिए किसान क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, उर्वरकों के बहने की जो ज्यादातर समस्या होती है वो नाइट्रोजन के केस में होती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटास की जो एप्लीकेशन है वो बुआई से पहले ही कर दी जाती है और उसका मृदा के अंदर ही ज्यादातर आज तक जितने भी किसान कर रहे हैं वो इनकॉर्पोरेशन होता है। लेकिन जो यूरिया वो बह के रन ऑफ के तौर पे भी चली जाती है या फिर उसका वोल्टिलाइजेशन भी हो जाता है, कई तरह के लॉसेज होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या है कि एक तो हम स्प्लिट डोज जिसको बोलते हैं कि एक साथ नहीं लगा के बार बार उसको लगाए, हर क्रॉप के लिए 1, 2, 3, 4 स्प्लिट में बांटा हुआ है, उसके बाद में हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि फोलियर एप्लीकेशन दें, जैसे यूरिया का छिड़काव करें उसके ऊपर, तो वो क्या है कि डायरेक्टली आपके पत्तों के ऊपर जाता है और वो अब्जॉर्ब हो जाता है और उसके लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं चाहिए उनको। क्या है कि अगर आपने अभी यूरिया की फोलियर एप्लीकेशन किया है और बारिश हो गई 5-6 घंटे बाद में, तो भी वो बेकार नहीं जाता है, ना ही वो धूप के जाता है, पूरा उसी ड्यूरेशन में पौधा उसको मैक्सिमम ले लेता है। उसके

0: बाद में जैसे नीम कोटेड यूरिया होती है तो उनमें क्या होता है कि स्लो रिलीज होता है, बाकी तो क्या है कि पोषक तत्वों को बैठे एक ही समय में वो रिलीज कर देते, लेकिन उनको स्लोली रिलीज करते हैं। तो जो पौधों का अब्जॉर्प्शन का टाइम होता है
1: जी,
0: जैसे आज लगाया एक तो 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, एक 5-7 दिन तक वो बने रहते हैं, तो उनको समय ज्यादा मिल जाता है तो वो ज्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब कर लेते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ यहाँ साझा की।
1: तो मुझे बात करते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: चला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
4: परम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। श्रोताओं, हम आज बात कर रहे हैं खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इस विषय पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं अपने आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ। डॉक्टर साहब, आपने नीम कोटेड यूरिया का जिक्र किया, तो एक सवाल मन में ये आ रहा है कि क्या नीम कोटेड यूरिया ज्यादा उपयोगी होती है, क्या इसका इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहता है? और साथ ही साथ चूंकि यूरिया का जिक्र हो ही गया है, तो ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि यूरिया का सही उपयोग के लिए आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: देखिए, इनका जो नीम कोटेड यूरिया है वो ज्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि उसके अंदर जो फर्टिलाइजर की रिलीज करने का जो टाइम है, उसकी जो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है सोइल के अंदर, वो उसके अंदर कुछ ड्यूरेशन बढ़ जाता है, उसका
2: स्लो रिलीज होता है,
0: स्लो रिलीज होता है, तो वही बेसिक उसका एक पर्पज होता है। तो जो भी किसान भाई, जैसे मान लो कि कुछ ऐसी फसलें हैं, स्पेशली धान है, जिनके अंदर वाटर रिक्वायरमेंट या जहां पे वर्षा ज्यादा हो रही है वहां पे इनका उपयोग करना चाहिए। लेकिन जिस एरिया में, जैसे खरीफ अपनी वर्षा आधारित होती है मोस्टली, कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और फिर भी उन सॉइल में थोड़ा बहुत यूरिया देना पड़ता है, क्योंकि वहां पे सैंडी सॉइल होती है तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। तो उस केस में क्या होता है कि उनको थोड़ा ही ड्यूरेशन मिलता है अब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो कंट्राडिक्टरी भी देखा गया, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये फायदेमंद ही होता है।
2: नीम कोटेड
0: यूरिया कुछ एरिया को छोड़ दे जिनमें बहुत कम बारिश होती है और इमीडिएट ड्यूरेशन के बाद में उनमें ड्राई स्पेल आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो खरीफ है इसके अंदर वर्षा आधारित ही एरिया होता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इसका, बाकी तो ये सबसे है। और आजकल तो इसके लिए नैनो यूरिया भी एक विकल्प आ गया है, जो बहुत ही फास्ट और डायरेक्टली प्लांट को अवेलेबल हो जाता है, तो किसान भाई उसका भी
1: और सब। एक पारंपरिक खेती तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ आजकल तकनीकी आधारित खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ऐसे में जो नई तकनीक आ रही है जैसे ड्रोन, सेंसर या डिजिटल कृषि, ये सब मिलकर पोषक तत्व प्रबंधन को और अधिक किस तरीके से प्रभावी बना रही हैं?
0: देखिए, ये बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि आज जितना भी हमारा जो फसलों का उत्पादन है उसके अंदर अगर हम उसको सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी लागत कितनी आ रही है। और ये सब जो तकनीक है, डिजिटल कृषि है, आपका ड्रोन है, इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे खेत के अंदर कौन सी समय किस पोषक तत्व की कमी है
1: जी।
0: और ड्रोन से हम कितने बड़े एरिया में तुरंत कॉलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं, दूसरी भी कई तरह की पेस्टिसाइड वगैरह भी हम उसमें डाल सकते हैं, इवन वीडिसाइड भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमारा डिजिटल मैप है, खेत का भी है, फसलों का है, तो हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं कि फसल का हमारे पास

0: ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें देखेंगे कि जिसका कलर ऐसा है तो ये पोषक तत्व की आवश्यकता है, तो हमें इस चीज का स्प्रे कर देना चाहिए, चाहे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हो।
1: डायग्नोसिस में आसानी रहेगी,
0: डायग्नोसिस में भी है, और हमारा जैसे ऑपरेशन करते हैं वो समय भी बचाएगी, कॉस्ट भी बचाएगी, लेकिन उनकी जो इनिशियली कॉस्ट होती है, जो उसको हम एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, जैसे ड्रोन है परचेज करना है या दूसरी, वो कुछ समय ज्यादा होता है। इसलिए किसान कुछ कर रहे हैं जो इनोवेटिव फार्मर हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ यहाँ साझा की।
1: हमने अपने श्रोताओं से वादा किया था कि आज हम उन्हें लोकगीत सुनवाएंगे, तो लगता है पूजा उसका समय आ गया है।
2: जी, तो आइए श्रोताओं सुनते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लोकगीत।

0: लोकगीत के बाद श्रोताओं आइए एक बार फिर से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो आजकल चर्चा में काफी छाया हुआ है, तो जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा की अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो ऐसे में पोषक तत्व प्रबंधन की जो हमारी रणनीति है उसको किस तरह बदलना चाहिए?
1: देखिए, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और हमारा अतिवर्षा या कम वर्षा की स्थिति भी पैदा हो रही है, उसके साथ में हमारा टेम्परेचर भी कभी ज्यादा कम भी हो रहा है, तो ऐसे में हमें पोषक तत्वों को पौधों को डालने के लिए या उनको उपलब्ध करवाने के लिए हमें एक बहुत ही सटीक निर्णय लेने पड़ते हैं। जहाँ पे ज्यादा वर्षा हो रही है वहाँ पे तो क्या करना होता है कि हमें पोषक तत्वों के अंदर कुछ जैसे नाइट्रोजन का ही ज्यादा रोल होता है, उनको बार बार अप्लाई करना कि जैसे हमें जितना भी डोज देना उसको नंबर ऑफ स्प्लिट बढ़ा देते हैं,
0: मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी
1: उसकी। और फोलियर एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, नैनो यूरिया पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और जहाँ पे सॉल्ट फॉल आ रहा है तो

0: इसमें हमारी रिकमेंडेड डोज होती है, जैसे हमें पता है कि अभी ड्रोट आने की स्थिति हो रही है, तो हमें जरूरी नहीं है कि पूरा जितना रिकमेंडेड नाइट्रोजन है उतनी लगाएं, क्योंकि अगर उतनी हम लगाएंगे तो उस एरिया में पहले से पानी की कमी है और हमारी फसलें जल्दी सूख जाएंगी। तो उस समय हमें जो रिकमेंडेड डोज या जिसको हम बोलते हैं जितनी चाहिए उतनी, उसे कम कर देते हैं, ताकि हमारी फसलें भले ही उससे जितना उत्पादन नहीं देंगी लेकिन कुछ समय लेट सूखेंगी। तो ये भी एक रणनीति होती है। अब हमें ये देखना होता है कि जिस एरिया में ड्रोट आने की संभावना ज्यादा होती है वहां पे हम ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट या जिसको हम बोलते हैं FIM ग्रीन मैन्योरिंग या कंपोस्ट है, ये सोइल के अंदर इनकॉर्पोरेशन ज्यादा करते हैं, तो इससे क्या होता है कि मृदा के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और ऑर्गेनिक मैटर भी सस्टेन रहता है
1: जी।
0: तो इसलिए इनका अगर समावेश करें तो ज्यादा अच्छा होता है।
2: डॉक्टर साहब, अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे कि खरीफ फसलों की अच्छी वृद्धि और अधिक उत्पादन के लिए आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: देखिए, सबसे अच्छा ये है कि किसान भाई अपनी फसलों को रेगुलर देखें। हमारे खेत में पोषक तत्वों की कमी है नहीं है, हमें यूरिया डालना है या नहीं डालना है। कई बार क्या होता है कि हम पड़ोसी लगा रहा है हम भी आके लगा देते हैं, नहीं, हमें ये देखना होता है कि अगर वाकई ही हमारी फसल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें LCC कार्ड भी होते हैं या हम कुछ और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं और उससे हमें पता लग सकता है।
2: जी जी, तो बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर तुलसाराम जी। आपने खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी सलाह किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने और बेहतर उत्पाद प्राप्त करने में निश्चित रूप से सहायक होगी।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ, अब हम अपने श्रोताओं को कृषि संबंधी सलाह भी दे देते हैं, क्योंकि कृषि परामर्श कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को दिया जाता है। तो उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का छिड़काव वे न करें और खड़ी फसलों और सब्जी की नर्सरियों में उचित प्रबंधन रखें।
2: बिल्कुल पूजा, और किसानों को सलाह दी गई है कि वर्षा मौसम में खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है, अतः सभी खड़ी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें तथा सभी फसलों में सफेद मक्खी तथा चूसक कीटों की नियमित निगरानी करें।
1: जी, और इसी के साथ इस मौसम में किसान भाई बहन स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जल निकास का उचित प्रबंध रखने की व्यवस्था उनको करनी होगी।
2: और साथ ही वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वे वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तो ये थी मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह।
1: अब हम जिक्र बाजार भाव का भी कर लेते हैं। सब्जियों और फलों के मंडी के भाव का जिक्र करें तो सबसे पहले सब्जियों की बात कर लेते हैं। आलू का बाजार भाव 18 रुपए प्रति किलो है और प्याज 30 रुपए प्रति किलो है। टमाटर 40 रुपए प्रति किलो, खीरा 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चल रहा है और शिमला मिर्च 60 रुपए प्रति किलो पर आगे चल रही है।
2: पूजा, अगर फलों के आज मंडी के भाव की हम बात करें तो आज सबसे पहले सेब की बात करते हैं जो कि 200 रुपए प्रति किलो का भाव रहा। केले की बात करें तो केला आज 25 रुपए प्रति किलो के भाव में चल रहा है। अमरूद की बात करें तो 80 रुपए प्रति किलो। पपीता की बात करें तो पपीता 30 रुपए प्रति किलो और तरबूज 22 रुपए प्रति किलो के भाव से मंडी में बिक रहा है।
1: तो श्रोताओं, ये है आज का बाजार भाव फलों और सब्जियों का। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है और सिद्धार्थ, अब हमें अपने श्रोताओं से अनुमति लेनी होगी।
2: तो लेते हैं किसान भाई बहनों से विदा। नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब गीत गजल के कार्यक्रम के अंतर्गत आनंद लेते हैं चंद खूबसूरत सी गजलों का।

0: श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे चंद खूबसूरत सी गजलों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दो?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया। मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन में 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की और युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी रहेगा। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र को भी भर सकते हैं। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 6ठा सत्र शुक्रवार को सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में प्रारंभ होगा। इसकी जानकारी आज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजयेंद्र गुप्ता ने दी। श्री गुप्ता ने कहा कि सदन की बैठकें 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगी और हर बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। उन्होंने बताया कि सदन के समक्ष उपलब्ध कार्य के अनुसार बैठक की अवधि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही नियमों के अंतर्गत आवश्यक सभी सूचनाएं नेवा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रस्तुत की जाएंगी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित DM कार्यालय में इस योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। इसी कड़ी में आज विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने कार्यालय में योजना की पात्र महिलाओं के आवेदनों का सत्यापन कर उन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह योजना महिलाओं के सम्मान, उनके आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राजधानी की महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक संबल को बढ़ावा देना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली सचिवालय में टीबी हारेगा भारत जीतेगा राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत आयोजित जनप्रतिनिधियों की सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा टीबी उन्मूलन अभियान से संबंधित विभिन्न सूचना और जागरूकता स्टॉलों का अवलोकन किया गया।
8: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष रूप से निक्षय मित्र अभियान से जुड़े स्टॉल का निरीक्षण करते हुए टीबी रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही पोषण सहायता, सामुदायिक सहयोग, जन भागीदारी, मरीजों के पुनर्वास और डिजिटल माध्यम से सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को प्रत्येक वार्ड, विधानसभा और स्थानीय स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि राजधानी में अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। साथ ही उनके सहयोग से 1,20,000 से अधिक पोषण आहार टीबी मरीजों को वितरित किए जा चुके हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि टीबी का समय पर पता लगने और उपचार पूरा होने पर इसका पूर्ण इलाज संभव है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जांच, उपचार तथा परामर्श से वंचित न रहे। श्री सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से टीबी उन्मूलन अभियान एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेगा। आदित्य के रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
7: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन ने 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये एक दिन में अब तक की सबसे अधिक यात्री संख्या है। इससे पहले इस साल 8 जून को 12 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम अकादमी ने आज शास्त्री पार्क कैंपस में कंक्रीट संरचना की मरम्मत, पुनर्वास और रेट्रोफिटिंग पर एक दिवसीय तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जयपुर मेट्रो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम तथा दूसरे प्रमुख अवसंरचना संगठनों सहित 35 बाहरी संगठनों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
9: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इसमें इंजीनियरों, शिक्षाविदों, इंडस्ट्री के जानकारों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल्स को एक साथ लाकर कंक्रीट की मरम्मत, सुधार और रेट्रोफिटिंग में हुई नई तकनीकी पर चर्चा की गई। साथ ही सीएसआईआर, सीबीआरआई रुड़की और आईआईटी मद्रास जैसे प्रमुख संस्थानों और उद्योग के बड़े संगठनों के जानकारों ने तकनीकी सत्र लिए। इस सत्र में संरचनात्मक मूल्यांकन, टिकाऊपन बढ़ाने, मरम्मत के आधुनिक और उन्नत पदार्थ, जंग से बचाव और रेट्रोफिटिंग की नई तकनीकों जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि सत्र में तकनीकी जानकारी साझा करने, पेशेवर नेटवर्किंग और उद्योग शिक्षा जगत सहयोग के लिए एक बेहतर मंच प्रदान किया गया, जिससे इंजीनियरिंग शिक्षा में क्षमता निर्माण के प्रति दिल्ली मेट्रो ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक ने किया। इस अवसर पर दिल्ली मेट्रो के निदेशक, कार्यकारी निदेशक, विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
7: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी, सराय काले खान नमो भारत स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चला रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नवनिर्मित और आधुनिक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को स्वच्छ, सुंदर और यात्रियों के अनुकूल बनाए रखना है। एक रिपोर्ट।
10: इस अभियान के दौरान यात्रियों को सार्वजनिक जगहों पर साफ सफाई बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक

0: किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के विरुद्ध लागू प्रावधानों के अनुसार जुर्माना भी लगाया जा रहा है। साथ ही 30 जुलाई 2026 तक सराय कालेखा FOB पर मेट्रो रेल अधिनियम 2002 की धारा 59 के अंतर्गत कुल 56 चालान काटे जा चुके हैं। NCRTC सतत जागरूकता अभियानों और स्वच्छता नियमों के प्रभावी परिवर्तन के माध्यम से यात्रियों में जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली नगर निगम के नेता सदन जय भगवान यादव और स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने आज दिल्ली नगर निगम मुख्यालय से दिल्ली परिवहन निगम DTC की एक नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नई बस सेवा निगम मुख्यालय से बांकनेर गांव तक आरंभ की गई है, जिससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। इस अवसर पर नेता सदन जय भगवान यादव ने कहा कि दिल्लीवासियों को सुलभ, सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना सरकार और संबंधित संस्थाओं की प्राथमिकता है। वह स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना एक विकसित और आधुनिक दिल्ली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर बायो माइनिंग कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान निगमायुक्त ने ओखला लैंडफिल साइट कचरे के निस्तारण की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की। श्री खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट पर बचे कुएं के शीघ्र निस्तारण के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लैंडफिल साइट के प्रवेश मार्ग को पक्का करने के आदेश दिए हैं, जिससे लैंडफिल साइट पर भारी वाहनों का सुगमता से आवागमन होता रहे। आयुक्त संजीव खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट पर हर रोज आने वाले नए कूड़े के निस्तारण कार्य में भी तेजी लाने के आदेश दिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देशभर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि यह योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, यह भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में राजस्थान और मध्य प्रदेश से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर लोगों से पैसे कमाने का लालच देकर ठगी करते थे।
2: कंपनी ने बताया था कि व्हाट्सएप पे उनके पास मैसेज आता है और कमीशन बेसिस पे अमेजन के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बताते हैं कि इसमें कमीशन बेसिस पे आपको टास्क दिए जाएंगे और आपको इसमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। हमने FIR रजिस्टर करी रिलेवेंट सेक्शंस में BNSS के और डेडिकेटेड टीम बनाई जिन्होंने फाइनेंशियल ट्रेल्स को देखते हुए CCTV में इसकी एनालिसिस करी और UPI ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए आइडेंटिफाई करा। इस पूरे प्रकरण में 6 मोबाइल फोन की रिकवरी हुई और बाकी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेज भी मिले हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक अभिनंदन समारोह में पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक के लिए 30 लाख रुपए, रजत पदक के लिए 20 लाख रुपए और कांस्य पदक के लिए 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए डॉ मांडविया ने उनसे अपने खेल करियर से आगे बढ़कर भारतीय खेलों की अगली पीढ़ी में योगदान देने का आग्रह किया।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आज जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना है।
1: दिल्ली के शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद ने नई दिल्ली में रायसीना बैडमिंटन अकादमी और पिकल बॉल एरेना का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व

दिल्ली विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश कर रही है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम अच्छा रहा और राजधानी के कई क्षेत्रों में तेज बारिश भी हुई। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया। मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन ने 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक 8:00, ये लीजिए पूरे हुए 15 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम आज आप सभी के लिए प्रयोग कर लाए हैं चंद खूबसूरत से फिल्मी गीत। आइए आगाज करते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की इस खूबसूरत सी आवाज के साथ।

जन्म देने वाला बाबा, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमालिका, जिसके अंतर्गत आज आपने सुने यह खूबसूरत से फिल्मी गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मोहित शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: अयोध्या को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर ने ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च

0: न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग भी मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
1: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कर्णांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.30 रूपये पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
2: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स में क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसारगा और चालो एंगपोन चारोएन किताओन को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनके समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिनभर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक

99 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में सामीन हम आपको सुनवा रहे हैं छाए गांगुली की गाई गजलें।

सर, इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में गजल सरा है छाया गांगुली।

0: अपनी गजलों के प्रोग्राम एक फनकार में आज गजल थी चाय गांगुली। इस गजल के साथ ही आज का गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार अब खत्म होता है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। शब के 9:45 बजे हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ نے پیدائش اور اموات سے متعلق اندراج کے ترمیمی بل 2026 کو منظور کر لیا ہے۔

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार एके भट्टाचार्य. एके भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार धन्यवाद.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया.
0: Before we move on to the stories, let's first take a look at the headlines for this evening. Benchmark domestic indices snap four-day gaining streak. Sensex drops over 200 points. Nifty settles at 24,615. Global crude oil prices decline and Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee to announce repo rate decision tomorrow.
1: घरेलू शेयर बाजार में पिछले चार सत्रों से जारी खरीदारी का सिलसिला आज थमा. सेंसेक्स 200 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी 24,615 दर्ज हुआ. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम नीचे आए और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति कल रेपो दर फैसले के बारे में घोषणा करेगी.
0: And Manoj, I feel before we move forward, we should also make something very important known to our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment before taking any financial decision.
1: और आइए अब शुरू करते हैं घरेलू बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में लगातार चार दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला आज थम गया और प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 210 अंक यानी 0.27% घटकर 78,439 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक यानी 0.64% नुकसान के साथ 24,615 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा जबकि खरीदारी से स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि देखने को मिली.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन नेगेटिव जोन टुडे स्नैपिंग अ फोर डे गेनिंग स्ट्रीक अहेड ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीट डिसीजन. The Sensex shed 210 points or 0.27% to close at 78,429. The Nifty dropped 159 points or 0.64% to settle at 24,615. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell by 0.3%, while the Small-Cap 100 Index gained 0.2%. Earlier, the markets opened on a mixed note following the implementation of the new closing auction session, which was introduced yesterday. The Nifty and Sensex witnessed divergent movements during the first half of the trading session. However, both indices remained under pressure in the latter half. The Nifty eased significantly in the final minute after the conclusion of the closing auction session.
1: आइए नजर डालते हैं सेंसेक्स पैक में सम्मिलित 30 कंपनियों के प्रदर्शन पर. आज 30 में से 16 कंपनियों के शेयर लाभ के साथ बंद हुए. सबसे अधिक बढ़त वाली कंपनियों में ट्रेंट और बजाज फाइनेंस के शेयर सम्मिलित रहे. इनमें 1.1% की वृद्धि देखने को मिली. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स को 0.9% का और टाटा स्टील को 0.6% का मुनाफा हुआ. उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसके शेयर 1.7% नीचे आकर बंद हुए. एनटीपीसी को 1.6% और एचडीएफसी बैंक के भाव 1.5% नीचे आकर बंद हुए.
0: विद दैट लेट्स आल्सो टेक अ लुक एट द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएससी. 19 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड इन नेगेटिव जोन. अमंग द टॉप अंडर परफॉर्मर्स इंश्योरेंस प्लंज्ड 2.1%. Realty as well as housing finance shed 1.2% and utilities dropped 0.6%. In contrast, capital goods gained 1%, metal rose 0.9% and industrials added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,128 companies declined. 2,108 advanced and 196 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 4 पैसे कमजोर हुआ, 95 रुपए और 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. एक भट्टाचार्य जी, सबसे पहले हम आज की जो गतिविधि रही है शेयर बाजार की, हलचल रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. खासतौर से हमने पिछले कुछ सत्रों से, विशेष रूप से कल भी देखा और आज भी देखा, कि अंतिम क्षणों में बाजार में अपेक्षा के बदलाव काफी तेज रह रहा है. क्या प्रमुख कारण रह रहे हैं इसके?
2: देखिए, जो मार्केट का जो जो ट्रेंड जो है, वो समझता हूं कि पिछले कई दिनों में, बल्कि कई सप्ताहों से, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के से काफी इन्फ्लुएंस्ड हुआ है. मैं समझता हूं कि जो कल का जो मार्केट जो था, उसमें जो चढ़ाव हुआ था, उसमें उसका कारण भी इंटरनेशनल था, क्योंकि ट्रंप साहब का ऐलान में एक आशा था कि शायद ये एग्रीमेंट, सीज फायर एग्रीमेंट अब पूरा हो जाएगा, उसी लिए कल मार्केट चढ़ा था. पर आज की तारीख में मैं समझता हूं कि उसमें दो प्रश्न उठ रहे हैं. एक तो है कि कितनी जल्दी ये सीज फायर एग्रीमेंट रेजोल्यूशन होगा इसका, और दूसरा है कि क्योंकि उसमें डाउट से क्रूड ऑयल प्राइस में इंक्रीज हुआ है, दाम बढ़ गए हैं उससे. और तीसरी बात जो है, डोमेस्टिक फैक्टर एक आया है उसमें, कि जो LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो जिसका लिस्टिंग हुआ था एक दो साल पहले, उसका जो गवर्नमेंट के पास अभी भी उसका 96.5% शेयर सरकार के पास है. और सरकार ने आज से चालू तय किया है कि करीबन 6.5% और LIC का शेयर वो मार्केट में उसका वितरण ऑफर फॉर सेल में जाएगा. उससे काफी LIC के ऊपर में प्रेशर आया, क्योंकि उनका दाम करीबन 7% नीचे आ गया, और जिस प्राइस में वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं शेयर्स, उस प्राइस में दाम वो आ गया है. और उसको खरीदने के लिए मैं समझता हूं कि काफी थोड़ा बहुत बिकवाली भी हुई है. सो ये विभिन्न कारणों के लिए मैं आज की तारीख में जो स्टॉक मार्केट में जो जो उतराव चढ़ाव जो हुआ है, इसका कारण ये है. और अंतिम आधे घंटे में जो हो रहा है, वो जैसे आपने भी कहा कि एक जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है, उसका हालांकि वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए है सिर्फ, पर उसका एक प्रभाव ओवरऑल ट्रेडिंग में भी आया है.
0: So would you identify any other triggers behind today's market movement in the benchmark indices, first of all? And second, perhaps now's the right time to simplify the closing auction session for our listeners. So if you can briefly explain it in one or two lines for our listeners to understand that better.
2: Well, you know, as far as what impacted the stock market today, I have already said, and it's essentially a combination of external factors and domestic factors. External factors being certain uncertainty over how the West Asian crisis will get resolved. And the domestic factors, there were two essentially. One was the offer for sale being starting for LIC, which is a huge big company, stocks. So 6.5% stocks going to be floated. That has put some pressure on the market. The second factor, domestic factor, is that tomorrow the Monetary Policy Committee will come out with its stance or rate decision. Although the market expects that there will be no rate increases, there is some sort of nervousness that has gripped the market. So these are the factors that influence the market developments today. As far as the closing auction session is concerned, this is a new device which is to ensure fair price discovery. That is one of the key objectives of the closing price auction system. Another is also to prevent market manipulation. And what used to happen earlier was that in the last 30 minutes of trading, there was a lot of fluctuations take place because the system was to arrive at the futures and option pricing and the based of average volume-based price. So the last 1 or 2 minutes, there will be a lot of orders will be placed at a certain price to influence, because the volumes will be high since it is a volume-based. Now that has been changed and it is an auction-driven, and a cap has been kept that the price to be determined will have a minus plus minus of 3%. So we were not seeing so much of fluctuation. There is transparent price discovery, and this benefits particularly the passive index funds. So it doesn't really impact the people, investors, retail investors who are coming into the market. It is largely aimed at addressing the day traders' concerns and convenience.
1: आपने बहुत अच्छी तरह जो ये एक नई कह लें कि प्रथा शुरू हुई है बाजार में, यह कुल मिलाकर बाजार में जो एक अनिश्चितता थी और मैनिपुलेशन हो रहा था उसको रोकने की ये कवायद है. इसमें जो नीलामी की प्रक्रिया होगी, कुल क्लोजिंग ऑक्शन, वो क्या दर्शाती है और उसका निर्णय कौन लेगा, कौन से पक्ष उसको तय करेंगे?
2: ये जो स्टॉक मार्केट जो है उनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उनको तय करना पड़ेगा. उनको ये जो आधे घंटे में जो सारी जो ट्रेड जो आएंगी उनकी एक एवरेज बनाया जाएगा. उसमें पहले जो वॉल्यूम बेस्ड जो एक एवरेज प्राइस निकालते थे वो वॉल्यूम बेस्ड नहीं होगा, और दामों की जो तय होगी वो 3% ऊपर या नीचे के अंदर ही रहेगा. इसका मतलब जो पहले जो होता था कि बहुत जो मार्केट में सारा दिन एक प्राइस गया और लास्ट मिनट में वो प्राइस बदल के जी, उसको इन्फ्लुएंस करता था मार्केट को, वो होना मैं समझता हूं कि वो कम हो जाएगा. और ये एक सुधार के तौर से, रिफॉर्म के तौर से एक एक, एक, एक, एक काफी अच्छा एक कदम है
1: जी. यहां पर हम ये भी समझना चाहेंगे कि बाजार में 4 दिनों से हम तेजी देख रहे थे, आज भी यदि हम देखें तो सेंसेक्स पैक की 30 में से 16 कंपनियां लाभ के साथ बंद हुई हैं. यदि हम नेशनल स्टॉक को देखें तो वहां पर मिड कैप 100 इंडेक्स में गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप 100 इंडेक्स थोड़ा सा बढ़त के साथ गया है, बंद हुआ है. तो कुल मिलाकर ये क्या दर्शा रहा जो बाजार है उसकी?
2: बाजार में सही प्रश्न किया आपने. बाजार में जो सेक्टोरल स्टोरी जो है वो ज्यादा लगता है कि इम्पोर्टेंट है. जैसे आपने कहा कि मिड कैप में थोड़ी बहुत दुर्बलता नजर आई आज, बस स्मॉल कैप में मजबूती दिखी. आईटी में बहुत धक्का पहुंचा क्योंकि आईटी में जो एआई और जॉब्स एंड अर्निंग्स के ऊपर जो लग रहा है, और जो ब्रॉड सेक्टर्स जो हैं अगर आप देखें, क्योंकि कॉरपोरेट अर्निंग्स जो अभी तक जो आई है अगर आप देखें तो कॉरपोरेट अर्निंग्स उतनी खराब नहीं आ रही है. हालांकि शुरुआती दौर में बहुत अच्छी थी पर पिछले एक हफ्ते में अच्छी नहीं आ रही है. पर जो कॉरपोरेट अर्निंग्स की कैसी जो डायरेक्शन होगी उसके ऊपर भी मैं समझता हूं कि अगले कई दिनों में इसका रुख इसके ऊपर निर्भर करेगा. और ऑफ कोर्स जो कल का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो निर्णय होगा उसके ऊपर भी मार्केट थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस तो जरूर होगा
1: जी.
0: Very well, and with that, let's take a look at the next story for this evening. Bharti Airtel Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose over 18% year-on-year to 58,539 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners increased over

0: श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि तेल के दाम बढ़ते हैं तो हमारी जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं एक और तो उसका असर पड़ता है, लेकिन हम जो तेल के प्रोडक्ट का निर्यात करते हैं उससे किस रूप में अर्थव्यवस्था को सहायता मिलती है या क्या परिणाम निकल के आता है?
1: फॉरेन ट्रेड में जरूर परिणाम मिलता है क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, उससे हमारा विदेशी मुद्रा की आय होती है। और दूसरी बात यह है कि जो हम तेल जो हमारे देश में भी जो खनन करते हैं जो बनाते हैं उसको हम इंटरनेशनल प्राइस में हम उसको बाहर बेच सकते हैं, तो एक तरफ फॉरेन ट्रेड में हमारी एक्सपोर्ट्स में इसकी सुविधा आती है और दूसरी तरफ हमारी जो डोमेस्टिक जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो डोमेस्टिक हम से बना के हम जो डोमेस्टिक जो डिमांड जो है उसको भी हम मीट कर सकते हैं।
2: Very well, and with that, let's take a look at the next story. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies, and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases.
0: यहाँ पर समझना चाहेंगे कि सरकार का जो ये कदम है इसके क्या आयाम निकलेंगे और किस रूप में फर्जीवाड़े को रोकने में या जो म्यूल अकाउंट है उनकी रोकथाम में सहायता मिलेगी।
1: देखिए ये जो कदम जो है ये जो हमारे देश की जो सबसे ऊंची जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट उनके ऑर्डर से आया है। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक डायरेक्टिव दिया है जिससे कि जो म्यूल अकाउंट जो है जैसे कि आपके अकाउंट में जैसे जनधन के बाद बहुत लोगों के पास बहुत सारे अकाउंट आ गए उन अकाउंट में लोग पैसे कम हैं आपके पैसे भी नहीं हो तभी वो अकाउंट है तो उन अकाउंट की जो दुरुपयोगिता बढ़ जाती है
0: जी।
1: बहुत लोग उन मूल अकाउंट्स को जो उनके अंदर कोई पैसे नहीं है पर उसका अकाउंट होल्डर है और वो अकाउंट है उसका दुरुपयोग करते हैं और जो फर्जी काम आपके किसी चोरी करना या आप जो ड्रग्स की जो पैसे होते हैं टेररिज्म के पैसे होते हैं वो आपके जो अकाउंट होल्डर हैं उनको वो जानते भी शायद नहीं होंगे पर उनके अकाउंट से का इस्तेमाल करके वो बैंकिंग सिस्टम से उसका फाइनेंसिंग होता है
0: जी जी।
1: तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से कड़ी शब्दों में ये कहा है कि उसको एक नया सिस्टम ऐसा चालू करना है जिससे कि जो ये म्यूल अकाउंट सिस्टम जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक रोकथाम हो सके और उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर बनाने का एक डायरेक्टिव दिया गया है
0: जी।
2: And our next story links to the mention of RBI's monetary policy meeting, which begins tomorrow. The meeting of Reserve Bank's Monetary Policy Committee began yesterday. My apologies. RBI Governor Sanjay Malhotra is slated to announce the policy statement tomorrow. We have a report on the same.
3: In the last Monetary Policy Committee meeting, the Reserve Bank of India kept the key repo rate unchanged at 5.25% for the third time in a row. At the same time, RBI revised its GDP growth forecast for the current financial year downward by 30 basis points BPS to 6.6% and raised its CPI inflation projection by 50 BPS to 5.1%, highlighting growing concerns over inflation risk. RBI's primary mandate is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. In the current context, India's retail inflation rose to 4.38% year-on-year in June, slightly above RBI's target of 4%, but still within its mandated tolerance band of 2% to 6%. With geopolitical tensions persisting and crude oil prices remaining volatile, the RBI's policy decision will be closely watched. Ayushi Singh for Market Mantra.
0: क्या आसार हैं कल की घोषणा में? क्या बाजार की अपेक्षाएं और
1: अपेक्षाएं हैं? ये हैं कि जो रेट जो है जिसे हम रेपो रेट कहते हैं जिस रेट से बैंकों को जो कॉस्ट ऑफ मनी होती है उसमें कोई परिवर्तन शायद ना हो पर इम्पॉर्टेंट चीज जो मार्केट जो देखेगी और या समझने की कोशिश करेगी कि आरबीआई की स्टेटमेंट के अंदर इकोनॉमी की जो ग्रोथ की जो आउटलुक जो है या इन्फ्लेशन की जो फोरकास्टिंग है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन आया है कि नहीं। जैसे आयुषी सिंह जी ने कहा कि पहले अभी तक जो इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट जो है वो अभी भी टॉलरेंस बैंड के अंदर है
4: जी, जी,
1: क्या इस वक्त इस कल की जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में आरबीआई अपना इन्फ्लेशन का आउटलुक में ऐसा परिवर्तन करता है जिससे कि वो बैंड के ऊपर जाए और ग्रोथ का जो असेसमेंट है रेट के हिसाब से मैं समझता हूं कि ज्यादा कोई अपेक्षाएं नहीं है, पर आरबीआई की असेसमेंट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन में कैसी होगी उसके ऊपर बहुत उनकी हमारी सबकी आंखें लगी रहेगी।
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर, जहां दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 1.6% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.3% की वृद्धि हुई है।
2: एंड लेट्स टेक अ लुक एट गोल्ड एंड सिल्वर। इन द इंडियन बुलियन मार्केट 24 कैरेट गोल्ड वॉज ट्रेडिंग 0.8% अप एट 1,44,170 रुपीज पर 10 ग्राम्स, वाइल सिल्वर वॉज ऑल्सो ट्रेडिंग 2.1% हायर एट 2,21,740 रुपीज पर किलोग्राम शॉर्ट वाइल अगो।
0: आइए श्रोताओं आपको हम लिए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी सोने और चांदी के मूल्यों में आज समाचार तैयार किए जाने तक तेजी दिख रही थी। अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 1% बढ़त के साथ 1,42,551 रूपये प्रति 10 ग्राम पर समाचार तैयार किए जाने तक कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध यानी सितंबर में आपूर्ति वाली चांदी भी 2% बढ़त के साथ 2,21,448 रूपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से एके भट्टाचार्या जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
1: नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे मिस्टर भट्टाचार्य। एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस स्नैप 4-day गेनिंग स्ट्रीक, सेंसेक्स ड्रॉप्स ओवर 200 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,615, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी टू अनाउंस रेपो रेट डिसीजन टुमारो। विद दैट इट्स अ रैप ऑन टुडेज मार्केट मंत्रा। वी सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्र, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

ट्रैवल फिल्म ग्रामा तमिल इशार प्रोग्राम की पहली पेशकश आशा भोसले की आवाज में थी। मेहमान गाते साहिर मौसीकार रवि। सोने के ख्वाहिशमंद थे जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सरफराज अब्बासी। मजूगढ़ टिल्ला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। भट्टापारा से हरिंदर चावला, सोहन जोशी और शिव कुमार शर्मा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी और रियाज रिफाकत। अम्बाला कैंट से सोनाली नारंग, पथिक वसीन और कृष्ण। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग और विनोद पुरी। भट्टापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। नई दिल्ली से इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और रविंदर सिंह छाबड़ा। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब। संबल से छोटे अंसारी। मारा गेट एटर से नवेसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी और नवेद सुहेल अब्बासी। किशोरनगर अमरावती से हीरावन शिंडे, शैलादेवी शिंडे और सिद्धार्थ गोंडानी। कस्बा बिल्दाम से इशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम जैनब। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। और जनाब ये हैं मोहल्ला शेरकोट हवायान, जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्तार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी और सितारा बेगम। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय। और समझ लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में। नूर जहां फिल्म का नगमा, नगमा निगाह शकील बदायनी, मौसीकार रोशन। सुनने के ख्वाहिशमंद है बिहार छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। आकिल दीवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी और काजल। राजधानी रायपुर।

विजय सरकटी और मिलिंद सरकटी, सबरबाजार कुड़ावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा, कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शब्बीर बनाटी और आसिफ इकबाल, बाराकुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और उत्कर्ष चौहान, और ये हैं जी जनाब पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग और गोविंद चुग, गांधीनगर यवतमाल महाराज से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे, बरीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और भाव्य कुमारी।

हमारी बिहार से इकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम और रोमिना वसीम, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी और मायरा सुरोशी, अजमेरी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, और ये जनाब कुमार हेड़ा सहारनपुर से सईद मसरूर, शाइना हसन और नाजिया इब्राहिम।

पास भारत लाया गया है। खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है। और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गारागा और पृथ्वी कृष्णा मूर्ति राय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को आज मंजूर कर लिया, जिसके बाद इस कानून को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। दाखिले उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने ऐवान बाला में इस बिल को पेश किया, जिसका मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन के कानून 1969 में तरमीम करना है। बिल को मंजूर करने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णा ने अपोजिशन अराकीन के हंगामे के दरमियान वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। कुछ अराकीन ने सवाल पूछे जिनका वज़रा ने जवाब भी दिया। ताहम अपोजिशन अराकीन की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी के बाद चेयरमैन ने राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे पहले जब ऐवान बाला की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई तो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की मुबैना चोरी का मामला उठाया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की मुखालफत की थी अब अवाम को चढ़ावे की मुबैना चोरी के मामले में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब रिजिजू ने कहा कि ऐवान सभी का है और हम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस उसे तफवीज किए गए वक्त का गलत इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा ने आज तख्सीस बिल 2026 को मंजूरी दी है। इस बिल को मंजूरी देने के बाद ऐवान ज़ेरी की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 पेश किया। अपोजिशन अराकीन नीट पेपर लीक मामले पर तलबा एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई पर बार बार ऐवान ज़ेरी की कार्रवाई में रखना डालते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से मुंसलक बैंक खातों से निपटने के सिलसिले में कामकाज के मेयारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी है। अदालत आलिया ने रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों और बैंकों को भी सिलसिलेवार हिदायत जारी की हैं ताकि शिकायत के एजाले को मुस्तहकम किया जा सके, धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम की बहाली में तेजी लाई जा सके और डिजिटल धोखाधड़ी मामलों से निपटने में बेहतरी पैदा की जा सके। अदालत उज़्मा ने आरबीआई से सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एसओपी की कॉपी फ्राहम करने को भी कहा है और रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो शिकायत के अजाले और रकम की बहाली के तरीके कार को यकीनी बनाने में तेजी लाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नाम निहाद बल्दियाती इंतखाबात को ढोंग करार देते हुए कहा कि इस तरह के दिखावे से हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि असल हकीकत वहां अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से बिला वजह हलाकतें हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में कम अज कम 90 शहरियों की जान जा चुकी है। सितंबर में दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए दावतनामे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल फरवरी में अपना ओहदा संभालने के बाद बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान को भारत के दो तरफा दौरे के लिए बाजाब्ता दावतनामा दिया गया है। उन्होंने मतलब किया है कि जहां तक ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस का सवाल है, भारत ने नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए बिम्सटेक के मौजूदा सदर की हैसियत से बांग्लादेश के वजीर आजम को अलहदा से एक दावतनामा भेजा गया है। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम शेख हसीना की मीडिया से बातचीत के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इसका एहतमाम एक निजी मीडिया कंपनी ने किया था।
انہوں نے کہا کہ اس سے حکومت کا

लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म का नगमा। नगमा निगार थे शकील बदायनी, मौसीकार नौशाद। सुनने के ख्वाहिशमंद थे शमसुल कमर राही, शाहीन फातमा और अदनान खान। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाहजहांपुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत और राशि दीक्षित। निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर और मोहम्मद फसी। आदर्श नगर मरोड़ पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और निवान शर्मा। बेगमगेट कासगंज से एम असलम सैफी, जबनिसा बेगम और सद्दाम सोनी। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम और मोहम्मद अशफाक। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया विशाल सपकाल। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर और तुषार सिंह। अमरावती महाराष्ट्र से श्याम किटे, वंदना किटे और कार्तिक किटे। विलमगाम गुजरात से अजीत भावसार, परमिला भावसार और भावेश सनी। गांव नयवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वैदमीदा और अलकामीदा। पटनखेला पंजाब से थॉमस, मिंटू थॉमस और पिंकी अरोड़ा। रघुनाथपुरा सिली गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी और हेमलता। पुराना तालाब बुमराव से वलियुल अंसारी, सुल्तान अंसारी और असमानाज अंसारी। और समझ लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश।

मुकेश की आवाज में रानी रूपमती फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है एस एन त्रिपाठी ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। कुमार गली कालेगांव से पानु चंदन, उषा चंदन और प्रथमेश चंदन, महाराणा प्रताप हाउसिंग सोसाइटी सीट को संभालीकर महाराज से सुनील सामक और अंजलि सुनील, गांव लोडड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती और भुवनेश्वरी देवी, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा जी, जुम्मनगर खंडवा से अल्तमश समीर और मुदस्सिर, आवास विकास कॉलोनी काजगंज से पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़ और सुयेश आशीष गौड़, छत्तीसगढ़ खोखा भिलाई से प्रताप पांडे और रेखा पांडे, और ये जनाब भाटापारा देवरी से केआर साहू, आकाश कमलेश और गन्नूलाल रजक, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बीबी शालिया खत्री, बीबी हलीमा खत्री और बीबी जिकरा खत्री, छोटी बलिया कदियत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले और जूही इकबाल फूल वाले, और उनके साथ उनके अहले खाना भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और जनाब ये हैं भोपाल कल राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार।

0: कोर्ट के प्रोसेस में सालों लगते थे एक लीगल प्रोडक्शन के लिए, तो चार जो है और कैश फ्लो का जो पूरा परिस्थिति पैदा हो जाती थी क्योंकि पेमेंट्स ब्लॉक हो जाते थे, तो इन चार चीजों को सॉल्व करने में एक ये बहुत बड़ा कदम है।
1: तो जैसे आपने कहा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि कोई भी विवाद है उसका समाधान, उसमें बहुत समय लगता था, तो अब जो टाइम बाउंड उन्होंने बताया है, साइकिल बताई है कि पहले मध्यस्थता होगी, मीडिएशन होगी जो 90 दिन के अंदर खत्म होनी है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो 30 दिन में अपील

0: स्टेजेस है, ये किस तरह से एक जो कॉमन एमएसएमई ओनर है, एक मान लीजिए माइक्रो एंटरप्राइज का ओनर है, वो कैसे इन स्टेजेस को समझे?
1: तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है, और अगर आप देखें तो कोई लीगल डिस्प्यूट होता है तो सबसे कम जो खर्चा होता है और सबसे कम टाइम में जो रेजोल्यूशन हो सकता है वो मीडिएशन द्वारा, और वो एक उसमें लॉयर्स की जरूरत नहीं है, आप आपस में बैठ करके एक मीडिएटर के द्वारा बैठ करके आप अग्री कर सकते हैं, और अगर आप दोनों ने मीडिएशन अग्रीमेंट को अग्री कर
0: दिया कोर्ट से बाहर,
1: कोर्ट से बाहर, और मीडिएशन सेंटर्स कोर्ट्स के साथ भी लगे हुए हैं, जैसे अगर दिल्ली में तो हर कोर्ट के साथ लगा हुआ है, तो वो मीडिएशन अग्रीमेंट अगर आप साइन करते हैं तो वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर जो लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मीडिएशन में नहीं होगा, तो जो आर्बिट्रेशन है, और उन्होंने नया आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट लेके आए थे, उसको मीडिएशन एक्ट के अंदर ही एक आर्बिट्रेशन एक्ट है और एक मीडिएशन एक्ट है। सो आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि अगर आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो आप ज्वाइंटली एक आर्बिट्रेटर या तीन आर्बिट्रेटर, डिपेंड करता है, उसको अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन जो है एक कोर्ट के द्वारा फंक्शन करता है, लेकिन एविडेंस रूल और सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं, तो सिंप्लीफाइड सिस्टम है, लेकिन वो एक जजमेंट है और वो जजमेंट बाइंडिंग है, उसको अपील करना मुश्किल है, अगर कोई प्रोसीजरल गैप है या नॉर्मली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसके जो तीन जो आंकड़े बोले थे, पहले तो मीडिएशन, अगर मीडिएशन ना हो तो फिर आप आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो आर्बिट्रेशन जो है ये बिल कहता है कि 30 दिन के अंतर्गत ही आर्बिट्रेशन शुरू हो जाना चाहिए, और अगर आर्बिट्रेशन शुरू हो गया, जब आर्बिट्रेशन शुरू हो गया 90 डे में उसका अवार्ड आना चाहिए, तो यानी कि 120 या 6 महीने में, और मीडिएशन के 2 महीने लगा लो तो 8 महीने में कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल कमर्शियल कोर्ट में भी जाए तो 8 महीने में या 6 महीने में आपको 2 तारीख मिलेंगे और कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो ये सालों चलते थे वाले डिस्प्यूट, तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और टाइम की बचत है, सबसे ज्यादा बचत टाइम है। और नॉर्मल केसेस में तो एडजमेंट होते हैं, कुछ होता है, नॉर्मली मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में एडजमेंट नहीं होते।
0: सो इस तरह से जो कह रहे हैं कि एकदम टाइम बाउंड कर दिया है कि इतने समय में समाप्त होना ही होना है विवाद और उसका कुछ निर्णय निकलना है, तो ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है, बिकॉज नॉर्मली जैसा कह रहे हैं कि कई बार बहुत लंबे चलते हैं केसेस, आगे बढ़ते जाते हैं। सो इसको आप इस अमेंडमेंट बिल का एक बहुत बड़ा एक पहलू कहेंगे?
1: हाँ, वो तो एक बड़ा पहलू है, लेकिन एक इसके बाद एक बहुत ही और छुपा हुआ एक पहलू है। ये उन्हें बिल ने ये कहा है कि आप इसको ऑनलाइन मीडिएशन या ऑनलाइन आर्बिट्रेशन और डिजिटल प्रोसेसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर 2 घंटे लगाते थे आर्बिट्रेशन सेंटर पहुंचने में या कुछ, वो आपका टाइम बच जाता है, और इससे अच्छा है कि अगर 6 महीने से ज्यादा आपका केस पेंडिंग है तो 50% अवार्ड अमाउंट जो है वो एमएसएमई को मिलना चाहिए। तो ये पूरा एक सिंप्लीफाई कर दिया है और एक प्रोसेस बना दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा पहलू है।
0: सो ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक जो आपने पहलू डिस्कस किए हैं कि ये एमएसएमई फ्रेंडली अमेंडमेंट बिल है, ताकि एक कोलैबोरेटिव आपको लगता है अप्रोच लिया है सरकार ने?
1: बिल्कुल कोलैबोरेटिव अप्रोच लिया है, एमएसएमई फ्रेंडली अप्रोच है, लेकिन आप एमएसएमई की भूमिका जो देश की इकोनॉमी में है इतनी बड़ी है कि इकोनॉमी फ्रेंडली एक बिल है, और इसमें उन्होंने एक अच्छी चीज भी की है जो खासतौर लोग ध्यान ही देते हैं। जो पहले अगर आपको एमएसएमई की डेफिनेशन अमेंड करनी होती थी ना, तो आपको एक्ट में अमेंड करनी चाहिए, इस बिल में उन्होंने बोला कि एक्ट के बाहर आप उसको अमेंड कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है।
0: सो ये फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात करें वो बहुत जरूरी भी है, जैसा हम जानते हैं कि आजकल जो हमारा पूरा वातावरण है खासकर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत तेजी से बदल रहा है। सो जरूरत अनुसार जो एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू कहेंगे
1: आप? बिल्कुल सही। तो आप देखें तो पहला जो है लिक्विडिटी इम्प्रूव होगा, दूसरा जो एमएसएमई के पैसे हैं उनको बहुत जल्दी मिलेंगे, तीसरा अगर उनको पेमेंट मिलेंगे तो बैंक के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा, चौथा तो बेटर वर्किंग कैपिटल जो मैंने आपको कहा था, और जो अभी जो है एमएसएमई में लोग काम करने से थोड़े से हिचकिचाते थे क्योंकि ये डिलेड पेमेंट्स के सैलरीज टाइम पे नहीं मिलते थे, रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते, जीएसटी में डिफॉल्ट हो जाता था, और ये पूरा लोअर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, और न्याय का ये एक फास्टर रूट है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस जो है अनसर्टनिटी निकाल देते हैं, और सप्लायर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस होगा कि लार्जर सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग से सप्लाई करे और लार्जर कंपनीज से सप्लाई करे, तो ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था।
0: और एक डिक्रिमिनलाइजेशन के ऊपर भी सरकार ने हमेशा, वर्तमान सरकार ने बल दिया है, तो यहाँ पर जो प्रावधान लाए गए हैं ग्रेडेड सिस्टम ऑफ वार्निंग्स एंड मॉनिटरी पेनल्टीज, आपको लगता है

0: है कि ये भी जो डर का एक अभी आपने डर शब्द यूज किया वो कम होता है और ज्यादा एक फ्रेंडली एनवायरमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलता है?
1: डिक्रिमिनलाइजेशन का एक पहलू बहुत आगे पहले से चल रहा था, जन विश्वास 1.0 और जन विश्वास 2.0 हमने उस पर भी चर्चा की थी। तो अगर आप देखें तो इसमें जो है डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, बट वो ऐसे इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम और नॉन पेनल्टीज और वार्निंग्स जो लार्जर कंपनीज के लिए है वो एक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सिग्नल जो क्या है ना, सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना चाहिए। अगर आपने किसी सप्लायर ने माल बेचा है और आप उसको पैसा देना है, आप प्लीज उसको पैसा दीजिए, क्योंकि एमएसएमई होगा। दूसरा है कि डिले तो अनएक्सेप्टेबल है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस टाइम में, ठीक है, पहले ये नहीं था। और तीसरा है जो एमएसएमई का जो कमर्शियल जस्टिस है वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए, श्योर होना चाहिए, अश्योर होना चाहिए, और मिनिमम इनकन्वीनियंस से डिजिटल मीडिएशन, डिजिटल आर्बिट्रेशन। तो ये अगर आप तीन इम्पोर्टेंट चीजें इस बिल को ले जाए, और जो एमएसएमई के डेफिनेशन में ही फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है।
0: तो डिजिटलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन जो करनी होती है एमएसएमई को, उसमें भी वो उनको सहूलियत होगी, अब एक इंसेंटिवाइज होंगे कि और एमएसएमई भी उभर के आए। एक आपको लगता है कि ग्रोथ ऑफ एमएसएमई या स्केलिंग अप जो है एमएसएमई की, उसको भी बढ़ावा मिलेगा?
1: पहले जो है अगर आप देखें तो एमएसएमई का जो डेफिनेशन बढ़ा गया है, पहले लोग छोटा रहते थे और छोटा से ग्रो करने से हेजिटेट करते थे क्योंकि कंप्लायंस ज्यादा है। तो वो डेफिनेशन चेंज करने का एक बहुत बड़ा ग्रोथ पैटर्न है। दूसरा जो आपने कहा था कि आप पूरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एमएसएमई बिजनेस नहीं कर सकते थे, और एमएसएमई को कहां रजिस्टर करें, तो एक उद्यम पोर्टल रजिस्टर किया था, अभी उसमें 8.9 करोड़ लगभग एमएसएमई रजिस्टर्ड है। और अभी कंपनीज एक्ट में भी अगर आप देखें, आप लार्ज कंपनी और मैं आप एमएसएमई आपके साथ रजिस्टर्ड हूं, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हमारे पास ड्यूज नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा जो आप देखें तो जिम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, उसमें एमएसएमई बिजनेस कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट परचेसेस में। ट्रेड ई फाइनेंसिंग के लिए ट्रेड्स है, तो ये अलग अलग ई प्लेटफॉर्म, अगर वहां देखें तो ई नैम भी है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है ओएनडीसी भी आ रहा है। तो डिजिटल इकोनॉमी, और सबसे बड़ा जो फायदा है एमएसएमई के लिए यूपीआई है, और ये हमारा फाइनेंशियल स्टैक है। तो डिजिटली एमएसएमई को काफी अच्छा होना चाहिए, और अब एआई आ रहा है तो गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए एआई के भी काफी एक सुविधा की है, तो वो डिजिटली अवेयर रहे और डिजिटली उसको यूज कर सके।
0: सो एमएसएमई जो सेक्टर है उसका बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है पिछले 12 वर्षों में। आपको लगता है कि ये जो विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक, उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है?
1: देखिए, अगर एमएसएमई 31% ऑफ द इकोनॉमी है, और अगर हमें ग्रो करना है, तो अगर ये 31% ग्रो नहीं करेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य बिल्कुल असंभव है। और ये 31% को वो दूसरे परसेंट से ज्यादा ग्रो करने का एक सुविधा दे, तो विकसित भारत का लक्ष्य आगे सामने नजर आता है।
0: सो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये जो संशोधन बिल आया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, आपको लगता है कि ये समय की मांग है और बहुत ही उपयुक्त समय पर ये लाया गया है?
1: बिल्कुल उपयुक्त समय पर लाया गया है, और गवर्नमेंट जो है निरंतर एमएसएमई सेक्टर के लिए स्टेप वाइज प्रोग्रेस कर रही है। और ये जो अभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे है, शायद ये आगे जाके स्टेट अंडरटेकिंग्स पे लागू करे और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू करे, तो ये स्टेप वाइज एक इंटीग्रेशन और एक डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा कदम है।
0: दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमएसएमई इकोसिस्टम के लिए जो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है उसके विभिन्न पहलुओं पर हमसे बात करने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम बज़्मे मौसीकी। बज़्मे मौसीकी प्रोग्राम में आज सुनिए पंडित गणेश चंद्र बहरे बुआ से राग बिहाग में ख्याल।

कार्रवाई में कम से कम 90 शहरियों की जान जा चुकी है। सितंबर में दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए दावतनामे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल फरवरी में अपना ओहदा संभालने के बाद बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान को भारत के दो तरफा दौरे के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा दिया गया है। उन्होंने मुतला किया कि जहां तक ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस का सवाल है, भारत ने नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए बिम्स्टेक के मौजूदा सदर की हैसियत से बांग्लादेश के वजीर आजम को अलहदा से एक दावतनामा भेजा गया है। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम शेख हसीना की मीडिया से बातचीत के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इसका एहतमाम एक निजी मीडिया कंपनी ने किया था। उन्होंने कहा कि इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है और न ही इस फोरम पर किए गए इजहार ख्याल के सिलसिले में वो किसी नजरिए की तौसीक करती है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कल बिहार के साबिक गवर्नर डी वाई पाटिल के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डी वाई पाटिल अपनी इंसान दोस्ती और बिलखसूस तालीम के जरिए समाज की खिदमत करने में हमेशा पेश रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गमजदा खानदान के तहीं ताजियत का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में उनके लिए हौसले की दुआ की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल उड़ीसा के गंजम जिले के तापातापानी में पवित्र मां कानभूनी देवी गई और वहां पूजा अर्चना की। ये उनकी आबाई रियासत के जारी 3 रोजा दौरे का एक हिस्सा था। भारत ने साल 2019 से 2026 के दरमियान 36 मुल्कों से 274 मफरूर मुजरिमीन को वतन वापस लाया है। वजारत दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने मफरूर अफराद के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम करने के लिए साल 2018 में माशी जराइम में मुलविस मफरूर अफराद का कानून नाफिज किया। वजारत ने मजीद कहा कि भारत ने मफरूर मुजरिमीन से निपटने के लिए मुनज्जम इंटेलिजेंस की क्यादत वाला और टेक्नोलॉजी पर मबनी मॉडल तैयार किया है। वजारत दाखिला ने कहा कि साल 2014 से पहले भारत के सिर्फ 37 ममालिक के साथ हवालगी माहदे थे और इकतसादी जराइम में फरार लोगों से निमटने या उनके इमलाक जब्त करने से मुतालिक कोई मखसूस कानून नहीं था। वजारत ने वाजे किया कि साबिका हुकूमतों ने मफरूर अफराद को वापस लाने के लिए सियासी अज़्म का फुकदान था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मफरूर अफराद की हवालगी को कौमी तरजीह बनाया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मफरूर अफराद के खिलाफ 3 नुकाती हिकमत अमली जैसे आलमी रसाई, मजबूत तालमेल और सूझबूझ पर मबनी सफारतकारी को अपनाया है। जनाब शाह ने मफरूर मुजरिमीन के मामले को मुल्क की सालमियत, माशी इस्तेहकाम, अमन व कानून की सूरत हाल और कौमी सलामती से वाबस्ता इंतहाई अहम मामला करार दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी के से मुंसलक बैंक खातों से निपटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी है। अदालत आलिया ने रियासतों, मरकज के जर इंतजाम इलाकों, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों और बैंकों को भी सिलसिलेवार हिदायत जारी की हैं ताकि शिकायत के एजाले को मुस्तहकम किया जा सके, धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम की बहाली में तेजी लाई जा सके और डिजिटल धोखाधड़ी मामलात से निपटने में बेहतरी पैदा की जा सके। अदालत उज़्मा ने आरबीआई से सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एसओपी की कॉपी फराहम करने को भी कहा है और रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी है कि वह शिकायत के एजाले और रकम की बहाली के तरीकेकार को यकीनी बनाने में तेजी लाएं। खेल और नौजवानों के उमूर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दौलत मुश्तरका खेलों में तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद मुल्क लौटे भारतीय खिलाड़ियों का कल खैर मकदम किया। इन खिलाड़ियों में मुक्केबाजी, जोडो और पैरा एथलेट्स शामिल हैं। नई दिल्ली में मुनक़दा इस्तकबालिया तकरीब के दौरान सोने के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 30 लाख रुपए, चांदी के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपए और कांसे के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। एथलेट्स
से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने

0: उनसे खेल के कैरियर से आगे सोचने और भारतीय खेल की अगली नस्ल तैयार करने में ताउन करने वाले बनने की अपील की। जनाब मानविया ने 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बेहतर की गई खेलो इंडिया स्कीम को उजागर किया। उन्होंने कहा कि यह पहल आने वाले वर्षों में भारतीय खेलों में बढ़ती हुई सरमायाकारी के मुआफिक होगी। कल फुकेट से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की परवाज AI-2379 में परवाज के दौरान मुख्तसर तौर पर खराब मौसम के सबब असर पड़ा, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए उसकी सतह परवाज में तब्दीली करनी पड़ी। बहरहाल परवाज दिल्ली में बहिफाजत उतर गई और सभी मुसाफिर और अमला बहिफाजत बाहर आ गए। इस तैयारे में 137 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद सवार थे। एयर इंडिया ने कहा है कि इनमें से 13 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद को चोटें आई हैं और उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उसने इस बात की भी तस्दीक की है कि किसी को कोई संगीन चोट नहीं आई है। एयरलाइन कंपनी ने कहा है कि मुसाफिरों और अमले की हिफाजत और सलामती मुसलसल उसकी अव्वलीन तरजीह है। एयर इंडिया ने यह भी मुतला किया है कि वो मुतासिर हुए लोगों को सभी जरूरी मदद फराहम कर रही है और तहकीकात के लिए मुतल्लिका एहलकारों के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही है। बैडमिंटन में आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद और पृथ्वी कृष्णा मूर्ति राव की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड के 6ठे दर्जे के चोडोमपोन चारोनिकेतामोर और वारपोल तशानंग को 21-16, 21-18 से शिकस्त देकर मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। अगत्या अरुतिया राव और अर्जुन रेड्डी पोचना पर मुश्तमिल मर्दों की डबल्स की दूसरी भारतीय जोड़ी कोरिया के चाओ सोल गई और मलेशिया के गो वी शेम से 3-21, 10-21 से हार गई। खवातीन के डबल्स में प्रिया कनोजेबम और शरावती मिश्रा जापान की दूसरे दर्जे की रेना हरामोटोवार और कोकोना इशिकावा से 15-21, 13-21 से हार गई। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बलदियाती इंतखाबात को ढोंग करार दिया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि 2019 और 2026 के दरमियान 36 ममालिक से इक्तसादी जराइम के मुर्तकिब 274 मफरूर अफराद को वापस भारत लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से मुंसलिक बैंक खातों से निपटने के सिलसिले में कामकाज के मेयारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी है। खेलों के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है। और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। क्लासिकी म्यूजिक प्रोग्राम में सामीना सुनी पंडित विष्णु प्रसन्ना से शहनाई पर बजाया राग भैरवी और राग विभास। पहले समाप्त फरमाइए राग भैरवी।

क्लासिक की मौसीकी के प्रोग्राम में सामने भी आप सुन रहे थे पंडित विष्णु प्रसन्ना से शहनाई पर बजाया राग निभास। इससे पहले आपने सुना इन्हीं का शहनाई पर बजाया हुआ राग भैरवी। इसके साथ ही आज का क्लासिक की मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब। प्रोग्राम की पहली पेशकश चार दिन फिल्म का नगमा सुरैया की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाए श्याम सुंदर ने।

और समझ लीजिए, अब सुनिए आखिरी शब्द प्रोग्राम की अगली पेशकश प्रदीप की आवाज में शिवराम की मौसीकी सजाए नगमा फिल्म है शंकर सीता अनुसुईया।

Yeah.

सॉन्ग अब सुनिए, सुमन कल्याणपुर और श्याम कुमार की आवाजों में तिलसमी दुनिया का ये नगमा, मुसिकारी सुरेश तलवार।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से सामने इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब। प्रोग्राम की अगली पेशकश चंडी दास फिल्म का नगमा, केएल सहगल की आवाज में, मौसीकार हैं आरसी बुराड़।

0: नचे हर बार एलओपी के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलैया पर हुए हमले की निंदा की है। हमले के बाद पोत डूब गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रूपये पुरस्कार प्रदान किये गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रूपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays and encourage timely registration of births and deaths. If a birth or death is reported to the registrar between 1 and 2 years late, it requires the approval of a district, subdivisional or executive magistrate for registration. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. With this, the lower house was also adjourned for the day. The Supreme Court has directed the central government to develop a pilot project linking fuel sales to valid third-party motor insurance, proposing that uninsured vehicles be denied fuel. Justices Sanjay Karol and Prashant Kumar Mishra noted that nearly 56% of vehicles on Indian roads are uninsured, calling the situation shocking. The court directed the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Centre to pilot automated number plate recognition, that is ANPR-based insurance verification, to identify uninsured vehicles and improve compliance with the Motor Vehicles Act. The court also asked the centre to launch pilot projects on selected national highway corridors to replace conventional toll plazas with automatic vehicle detection systems to reduce congestion and improve traffic flow. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Olia, which sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It stated

फिल्म भक्त सूरदास से ये गीत अभी आपने सुना केएल सहगल साहब की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म तानसेन से खुर्शीद की मधुर आवाज में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुनते हैं पुरानी फिल्म गीतों के मधुर गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अनोखी अदा से, मुकेश और शमशाद बेगम की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम में हमारी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश होती है कि हम आपको पुराने समय के बेहतरीन से बेहतरीन गीत सुनवाएं। इसी श्रृंखला में हम आइए सुनवाते हैं हम आपको फिल्म बरसात से ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ये सुनहरे, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म बूट पॉलिश से

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बूट पॉलिश से मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म आर पार से गीता दत्त की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। चलते चलते आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत फिल्म सीआईडी से, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की मधुर आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी के नाम से
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दो दिन की इस बैठक में 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ

0: समझौता होने पर एक से दो दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलैया पर हुए हमले की निंदा की है। हमले के बाद पोत डूब गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले दो से तीन दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Abhineet Shukla. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays and encourage timely registration of births and deaths. If a birth or death is reported to the registrar between 1 and 2 years late, it requires the approval of a district, subdivisional or executive magistrate for registration. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. With this, the lower house was also adjourned for the day. The Supreme Court has directed the central government to develop a pilot project linking fuel sales to valid third-party motor insurance, proposing that uninsured vehicles be denied fuel. Justices Sanjay Karol and Prashant Kumar Mishra noted that nearly 56% of vehicles on Indian roads are uninsured, calling the situation shocking. The court directed the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Centre to pilot automatic number plate recognition, that is ANPR-based insurance verification, to identify uninsured vehicles and improve compliance with the Motor Vehicles Act. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Olia, which sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It stated that the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities to ensure the crew's safety and security. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. Expressing concern over the ongoing attacks on commercial shipping in the region, the ministry emphasized that such targeting must end. An Air India flight AI-2379 operating from Phuket to Delhi yesterday experienced brief in-flight turbulence, resulting in a momentary change in altitude. The aircraft landed safely in Delhi and all 137 passengers and 8 crew members disembarked safely. 13 passengers and 4 crew members sustained injuries and were taken to the hospital for medical evaluation. Air India confirmed that there have been no serious injuries as of now. Union

मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन, वो भी ऐसा करते जाए कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिविजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिविजन करूंगा। लेकिन कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिविजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिविजन बताते थे और उस शॉर्ट डिविजन से गाना निकलता था।

0: इसी के साथ श्रोताओं आज का गीत बाहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 3 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा जांच की मांग की और कहा कि उन्हें अब चल रही अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार जांच को सीआईडी को सौंपकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग दोहराई। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

0: गीत और गजलों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। ज्यादा है 4 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अभी आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुना रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। प्रातः 4:20 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुश्री उषा विजय कुमार का रागम चारुकेशी में गोट्टू वाद्यम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त 2026। सुबह के 4:56 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे योग दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन के बारे में। पांच बजकर 20 मिनट पर देशभक्ति गीत, 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी, 6:10 का वक्त रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, 6:40 पर आप सुन सकते हैं चिंतन, 6:45 पर श्री रामचरितमानस से पाठ होगा। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 8।

पे 7:10 पर संगीतिका प्रसारित किया जाएगा। 7:30 पर आप सुन सकते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, इसका वक्त रहेगा प्रातः 8:45। नौ बजकर पंद्रह मिनट पर आप सुनेंगे साइंस मैगजीन। प्रातः 9:30 पर मिट्टी दी महक, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 10:10 का वक्त रहेगा कार्यक्रम आपकी पसंद का, और 11:10 पर सबरत प्रसारित किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

विसाह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान सिर अमृत सारन साहेब जी दर्शन इशनान

तन सुमन स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मुलड़ाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्रह्म दिया।